खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर 2026। सुबह के 5:53 और 13

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आपके साथ रहेंगी कोमल भारती। सुबह 7:02 पर राजेश कुमार के साथ सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 8:02 पर कोमल भारती आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुबह 9:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल की तरह ने गाने नए पुराने राजेश कुमार के साथ, इसमें आप 90s के और कुछ पुराने गीतों का आनंद ले सकते हैं। सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे हिमानी दत्ता के साथ अंग्रेजी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर। सुबह 11:02 पर सृजन राजपूत आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड गलियारों से खबरें बॉलीवुड ट्रेल्स में। दोपहर 12:02 पर हिमानी दत्ता के साथ सुनिए वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम प्ले इट कूल, इसमें श्रोता अंग्रेजी में गीतों का आनंद ले सकते हैं। दोपहर 1:02 पर आप सुनेंगे रिक्वेस्ट बेस्ड पर आधारित कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग, जिसमें सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगे। दोपहर 2:02 पर आप सुनेंगे शालिनी सिंह के साथ कार्यक्रम आशियाना। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, इसमें सुनीता शबादी आपके साथ रहेंगी। इसमें आज का विषय रहेगा प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स, एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर एस के सिंगला। शाम 4:02 पर आप सुनेंगे शालिनी सिंह के साथ कार्यक्रम अल्फा जैन। शाम 5:02 पर सुनीता शबादी आपके लिए लेकर आएंगी कार्यक्रम सिटी लाइट्स, इसमें दिल्ली शहर की जानकारी आप सुन सकते हैं, साथ ही बेहतरीन गीतों का आनंद आप लेंगे। शाम 6:02 पर निखिल वर्मा के साथ आप सुनिए कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। शाम 7:02 पर देवर्षि रावत आपके लिए लेकर आएंगी अंग्रेजी कार्यक्रम फ्राइडे फिएस्टा। रात्रि 8:02 पर आप सुनिए कार्यक्रम

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। सुबह के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती भी मनाई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों के तेजी से विस्तार पर बल दिया है। उन्होंने अमेरिका के विस्कॉसिन स्थित मिलकोवी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों देशों के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने कहा है कि कनाडा और भारत व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $30 अरब से बढ़कर करीब $70 अरब का करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा के दौरे पर हैं। वे पौंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1,000 क्विंटल तय कर दी गई है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है, ताकि ये अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो सके। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है। वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के तबूक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबूधाबी स्थानांतरित किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम फाइनल में पिछले चैंपियन चीन से भिड़ेगी। और 2027 आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। तो ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल।

0: आइए सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, FM रेनबो पर फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम मनुष्य कल की चिंता करके स्वयं अपने लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जैसे आग में तपकर सोने में निखार आता है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को मजबूत और आत्मविश्वास से भर देती हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, ईश्वर का दामन थामे रहने से चेहरे पर रौनक बनी रहती है और मुस्कुराहट हृदय को प्रफुल्लित करती रहती है।

दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा प्रभु इतना सामर्थी और सर्वशक्तिमान है कि शैतान भी उसके सम्मुख आने से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु के नाम से असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जो मनुष्य एक बार प्रभु के प्रेम को चख लेता है और उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है, तो हमारा प्रभु उसके जीवन को संपूर्ण रूप से न सिर्फ बदल देता है बल्कि अपनी आशीषों से उसका जीवन भी भर देता है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताएं। मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी रेनबो पर। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

सुप्रभात। जी हाँ, यही है इस प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है, एक नई शुरुआत का वक्त, और आज की इस सुबह में एक छोटी सी लेकिन दिल को छू जाने वाली बात करते हैं, क्षमा। लेकिन जरा सोचिए, क्या फॉरगिवनेस सिर्फ सामने वाले के लिए होता है? शायद नहीं। कभी कभी किसी की कही हुई कोई बात, कोई पुरानी शिकायत, कोई अपना ही फैसला हम बहुत समय तक अपने भीतर कैरी करके रखते हैं। सामने वाला शायद आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन हम उसी बात को रिप्ले करते रहते हैं। तो आज की सुबह एक खूबसूरत सा थॉट, किसी क्षमा किसी और को देने से पहले, किसी और को फ्री करने से पहले खुद को फ्री करने का नाम है। जी हाँ, आपने कभी नोटिस किया है, जब मन में शिकायतें कम होती हैं तो सांस थोड़ी आसान लगती है, दिन थोड़ा हल्का लगता है। आज इसी पर करेंगे बात, किसी और को माफ करना जरूरी है या खुद को फॉरगिव करना? इतना मुश्किल क्यों होता है, और क्या हर बात को भूल जाना ही फॉरगिवनेस है? तो चाय की पहली सिप के साथ डीप ब्रेथ लीजिए और चलिए आज मन को थोड़ा सा, जो उस पर एक्स्ट्रा बैगेज है, उसको भी कम करते हैं। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6।

कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा पीस तब मिलता है जब हमें एहसास होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। किसी ने कुछ कहा और हमने जवाब दे दिया, फिर उसने जवाब दिया, फिर हमने जवाब दे दिया, और देखते ही देखते 5 मिनट की जो बात है वो 50 मिनट की आर्गुमेंट्स बन जाती है। नॉट एवरी सिचुएशन डिजर्व्स योर रिएक्शन, याद रखिए। कुछ बातें वहीं छोड़ देना भी मैच्योरिटी होता है, और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब बस इतना सा होता है कि आपने डिसाइड किया है कि मेरी मेंटल पीस हर किसी बहस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज अगर कोई छोटी सी बात आपको इरिटेट करे तो तुरंत रिएक्शन देने से पहले 2 सेकेंड रुकिएगा और कहिएगा, इज दिस रियली वर्थ माई पीस? हो सकता है आंसर नहीं हो, और फिर आगे बढ़ जाइए। सुबह सुबह मन को भी थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए ना। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की गलती देखकर बड़ी आसानी से कह देते हैं उसे समझाने के लिए कि कोई बात नहीं, गलतियां आखिर इंसान से ही हो जाती हैं। लेकिन जब कोई गलती हमसे हो जाती है तो हमारी सोच, हमारे डायलॉग्स, हमारी बातें, सब कुछ बदल जाता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूं आपके साथ, आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। प्रोग्राम चल रहा है सुप्रभात। और दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं अगर कोई गलती हो जाए कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, या मैंने इतना गलत डिसीजन कैसे ले लिया। यानी दूसरों के लिए तो हम अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अपने लिए फुल टाइम क्रिटिक। खुद के साथ भी थोड़ी सी दोस्ती रखिए जनाब। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख कर आगे कैसे बढ़ना है ये हमारे हाथ में है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप अपनी गलतियों से जब आप सीखते हैं। तो मिस्टेक को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, उसे अपना एक्सपीरियंस बनाइए। आज खुद से बस इतना ही कहिए कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैंने अपनी उस गलती को सुधार लिया है और उससे आगे कैसे बढ़ना है मैं ये सीख चुका हूँ। और ऑनेस्टली, कभी कभी खुद को इट्स ओके कहना भी बहुत हीलिंग होता है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ कोमल।

और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, अक्सर हम सोचते हैं कि किसी को माफ़ कर दिया तो जो हुआ उसे भूल भी जाना चाहिए, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं होता। आप किसी घटना को याद रखते हुए भी उससे जुड़ा हुआ गुस्सा छोड़ सकते हैं। फॉरगिव डजंट मीन फॉरगेट। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूँ आपके साथ कोमल। अगर किसी अनुभव ने आपको कुछ सिखाया है तो उस लेसन को याद रखना बिल्कुल ठीक है और बहुत ज़रूरी भी है। बस फर्क इतना है कि पहले वही याद आपको परेशान करती थी, अब वही याद आपको समझदार बनाएगी। और हाँ, फॉरगिवनेस का मतलब बाउंड्रीज खत्म करना भी बिल्कुल नहीं होता। किसी को माफ़ करके भी आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपको माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी पीस के लिए थोड़ी सी दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी

एक हेल्दी चॉइस ही तो है, क्योंकि दिल में बिटरनेस रखना और अपनी बाउंड्रीज को संभाल कर रखना, ये सब संतुलन बनाना आप ही के हाथ में है। तो दिल में अगर कोई कड़वाहट है तो उसे दूर कीजिए और अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, और जो भी आपके आसपास है उन सभी को माफ़ करते हुए चलिए।

0: जी हाँ, दिल है छोटा सा और छोटी सी आशाएं। हाँ, कभी कभी हमारी आशाएं थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती हैं। तो चलिए आज की सुबह एक छोटा सा इमोशनल रीसेट करते हैं। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ 3 लोगों के बारे में सोचिए। पहला, जिससे आपको कोई शिकायत है, और दूसरा वो व्यक्ति जिसे आपने जाने अनजाने कभी ना कभी हर्ट किया हो, और तीसरा आप खुद। पहले व्यक्ति से कहिए कि मैं तुम्हारे लिए जो मैंने किया था वो मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन अपने मन को इससे आज़ाद कर रहा हूँ। और दूसरा जो व्यक्ति है उससे कहिए कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई दुख पहुँचा है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और तीसरा अपने आपसे कहिए कि मैं सीख रहा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ और मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त है। बिल्कुल, आप ये सब सोचेंगे तो देखिए आपका दिल कितना हल्का हो जाएगा। दिल हल्का होगा तो दिन अच्छा हो जाएगा, और जब दिन अच्छा होगा तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही होता चलेगा। बस कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ लेसन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कम गुस्सा, थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अपने लिए थोड़ी सी काइंडनेस। नया दिन, नई शुरुआत और ज़िंदगी का एक नया पेज जिस पर आप नई कहानियाँ लिख सकते हैं। तो आज के दिन को कुछ इसी तरह से शुरुआत कीजिए। खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए और अपने दिन को खूबसूरत बना लीजिए। शायद आज के दिन इसी छोटे से रीसेट के साथ आपका दिन जो है वो खूबसूरत बन जाए। मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम सुप्रभात। तो चलिए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा प्रमोशनल ब्रेक।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात। और सुप्रभात में मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। तो दोस्तों, जब आप आज अपने काम पर निकलें, अपने घर के कामों में बिजी हों, या ट्रैफिक में हों, या अपनी मॉर्निंग रूटीन में, बस एक बात याद रखिए, जो मन में बहुत दिनों से रखा हुआ है, हर चीज़ हमेशा साथ लेकर चलना जरूर।

नहीं है। कुछ शिकायतें जाने दीजिए, कुछ गलतियों से सीख लीजिए और कुछ रिश्तों से बात कर लीजिए और खुद को भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करती। वो हर सुबह हमें एक नया चांस देती है। इसी उम्मीद और पॉजिटिविटी और हल्के मन के साथ आज के सुप्रभात कार्यक्रम से कोमल को दीजिए इजाजत। मैं हूं ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम सुप्रभात। याद रखिए, दिल में जगह बनानी है तो शिकायतें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी और शिकायतों वाली जगह जो है वो थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी। आपका दिन शांत हो, सुंदर हो और अपने लोगों के साथ थोड़ा और प्यार भरा हो, बस इसी कामना के साथ कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार और स्टे हैप्पी स्टे काइंड।

एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती भी मनाई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों के तेजी से विस्तार पर बल दिया है। उन्होंने अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग दोनों देशों के मंत्रियों के साथ बैठकें की। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा और भारत व्यापक व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 70 अरब डॉलर का करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा के दौरे पर हैं। वे पोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबूधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में आज महिला हॉकी फाइनल में भारत का मुकाबला पिछली बार की विजेता चीन से होगा। पुरुष हॉकी में कल मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। और अगले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को ग्रुप ए में पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। FM रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। सुप्रभात आप सभी को, मेरा नाम है राजेश कुमार और दोस्तों इस मॉर्निंग मैगजीन शो में आपके लिए है बहुत कुछ। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ही खास है क्योंकि आज के दिन से जुड़ी हुई हैं कई ऐसी बातें, कई ऐसे लोग, कई ऐसी घटनाएं जिन्होंने आज के दिन को बनाया बहुत ही खास। तो कहते हैं ना कि जब हम शुरुआत करते हैं तो एक विचार के साथ, एक अच्छे विचार के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर चीज़ें धीरे धीरे हमारे लिए और बेहतर होती जाती हैं। तो आज क्योंकि गांधी जयंती है, समाचार में आपने सुना, तो आज क्यों ना हमने सोचा कि गांधी जी का ही एक विचार आपस में साझा किया जाए। गांधी जी ने कहा था कि जिसे प्रगति करनी है वह अन्य लोगों की अपेक्षा मुझ में कम दोष है ऐसा अभिमान नहीं करता, वह तो निरंतर अपने दोषों का ही अध्ययन करते रहता है और उसे अपने में जो दोष दिखाई देते हैं वह उन पर शर्मिंदा होता है, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है। यदि लोग परस्पर एक दूसरे की आलोचना करने की अपेक्षा अपने अपने दोषों का अवलोकन करने लगें तो धरती का बहुत सारा बोझ हल्का हो जाए। बिल्कुल, हमें अपने जो दोष हैं उनको देखना, उनको दूर करना और हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाते जाना, इस दिशा में जब हम काम करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बेहतर होने लगती हैं। तो इसी विचार के साथ आपका स्वागत करते हैं इस गीत से। नमस्कार।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ राजेश। और देखो ना, जब हम कहते हैं ना, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें अपने इतिहास में। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन घटनाओं की कहानी है जिन्होंने दुनिया को अलग अलग दौर में नई दिशा दी। तारीखें बदलती हैं और हर दिन अपने साथ ऐसी घटनाओं और हस्तियों से जुड़ी दास्तान लेकर आता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो आइए, क्यों ना आज की तारीख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें। इतिहास में क्यों है आज का दिन खास, इसके बारे में आपको बताएं। तो आज का दिन खास है क्योंकि आज ही के दिन सन 1835 में 2 अक्टूबर 1835 को टेक्सस क्रांति की पहली लड़ाई हुई, बैटल ऑफ गोंजालेस, जब मैक्सिकन सैनिकों और स्थानीय टेक्सस विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ। इसे टेक्सस क्रांति की पहली सैन्य मुठभेड़ माना जाता है। और इस संघर्ष के बाद मैक्सिको और टेक्सस के विद्रोहियों के बीच लड़ाई तेज हुई, जिसने आगे चलकर टेक्सस की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा आज का दिन खास है हमारे रेलवे के लिए भी, क्योंकि 2 अक्टूबर 1955 को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF का उद्घाटन हुआ और इसी अवसर पर पहला कोच तैयार किया गया। ये भारत में आधुनिक यात्री रेल डिब्बों के स्वदेशी निर्माण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आगे चलकर ICF भारतीय रेलवे की प्रमुख कोच निर्माण इकाइयों में शामिल हुआ। और आज ही का दिन था, साल था 1958, जब पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। अहमद सेको तौरे देश के पहले राष्ट्रपति बने। गिनी ने फ्रांसीसी समुदाय में शामिल होने के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता का विकल्प चुना। और ये घटना अफ्रीका में उपनिवेशवाद से मुक्ति के दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल हुई। तो क्यों है ना, आज का दिन बहुत ही खास, और भारत के इतिहास में तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल एक और गीत आपके लिए।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और दोस्तों, अब समय आ गया है उस विषय पर बात करने का जिसको हम आज खास तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज के दिन से जुड़ी कुछ जो ऐतिहासिक बातें थी वो तो हमने आपको बताई हैं, लेकिन भारत से जुड़ी जो बातें हैं अब शुरू हो रही हैं, और वो ये कि आज का दिन यानी कि 2 अक्टूबर भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। तारीख महत्वपूर्ण है और इसका महत्व भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। इसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ये तारीख दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को केवल व्यक्तिगत आचरण का सिद्धांत नहीं माना, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बनाया। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने ये विचार सामने रखा कि अन्याय का विरोध दृढ़ता से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हिंसा को अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह तक गांधी जी के नेतृत्व में अनेक आंदोलनों ने जन भागीदारी और अहिंसक प्रतिरोध को एक नया रूप दिया। उनके विचारों में सत्य, आत्मानुशासन, सहिष्णुता और मानव गरिमा का भी बहुत बड़ा स्थान था, और यही कारण है कि गांधी जी के विचार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से आगे बढ़कर विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को प्रस्ताव पारित कर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिवस का जो उद्देश्य है, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा का संदेश फैलाना तथा शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज ये दिवस हमें अहिंसा को केवल इतिहास के एक पन्ने के रूप में देखने के बजाय उसके व्यापक अर्थ पर विचार करने का अवसर देता है। मतभेदों का समाधान बातचीत से हो, संघर्षों में आपसी जो गरिमा है वो बनी रहे, शांति की जो संस्कृति है उसको और हम मजबूत करें, गांधी जी ने यही कहा था। और हाँ, स्वच्छ भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो गांधी जी का जिक्र ज़रूर होता है, तो स्वच्छता के प्रति भी उनका एक विशेष लगाव था। और हम जब ये सोचते हैं कि आज हम गांधी जी के विचारों को आत्मसात कर क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहे किसी भी स्तर पर हों, हम अगर उनको अपने जीवन में उतारें तो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो आज गांधी जी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।

बिल्कुल, साबरमती के संत ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया देश की आज़ादी के लिए, और उनका योगदान जो है हम सब लोग हमेशा महसूस करते हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन जुड़ा हुआ है एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने गांधी जी की ही तरह देश के लिए बहुत कुछ किया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम मनाते हैं, साथ ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी

आज जयंती है और उनका जन्म हुआ सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में। बचपन आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता और उनके बचपन की तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही प्रेरित करती हैं, खासकर विद्यार्थियों को। बड़े होने पर वे देश के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रभावित हुए, महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ दी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और कुल मिलाकर लगभग 7 साल उन्होंने कारावास में बिताए। आज़ादी के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में काम किया और केंद्र में रेल, परिवहन एवं संचार, वाणिज्य एवं उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारियां भी संभाली। 9 जून 1964 को शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल खाद्य संकट और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के दौर में आया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों और किसानों की भूमिका को खास तौर पर रेखांकित किया और एक नारा दिया जो आज भी हम सभी लोग इस नारे को जीते हैं, जय जवान जय किसान। और उन्होंने देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उसने देश को एक नई ऊंचाई दी। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात आती है तो किसान याद आते हैं, वो खेत याद आते हैं और याद आता है देश को आगे ले जाने का वो जज्बा। एक बार फिर से देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। NACO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
8: तो सुनिए

0: जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ आपके साथ राजेश। और दोस्तों, आज के दिन से जुड़ी कुछ हस्तियों के बारे में हमने बात की, और आज के दिन की अगर हम बात करें तो कई मायने में और भी खास है। बल्कि ये दिन ही नहीं, ये हफ्ता भी खास है, क्योंकि इस हफ्ते कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी बातें होने वाली हैं, हो रही हैं, जो हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है, उसमें हिस्सेदारी ज़रूरी है, और उनको अपने जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। ये जो सप्ताह है कई मायने में ख़ास है, और इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये सप्ताह जो है एक और चीज़ के लिए मनाया जा रहा है, वो है अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह। यानी कि जो इस सप्ताह में हम चीज़ें करते हैं उसके बारे में अगर आपको बताएं तो अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह हमें जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ जागरूक होने और समानता का संदेश देने का अवसर देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप को व्यवहार में जो है निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के खिलाफ सामाजिक जागरूकता का इतिहास भी बहुत पुराना है। गांधी जी ने इसके विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाया, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता और सभी के लिए समान अधिकारों की मजबूत पैरवी की। आज सरकार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 सहित अलग अलग कानूनी प्रावधानों के माध्यम से अस्पृश्यता और भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन ये चीज़ें हैं ऐसी, जब हम अपने इतिहास और समाज पर सोचते हैं तो लगता है कि बहुत सारी बातों पर हमें गर्व है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको हम बुराई के तौर पर जानते हैं, और अस्पृश्यता एक ऐसी ही बुराई है जिसका समूल नाश होना बहुत ज़रूरत है। पहले की तुलना में अब सुधार आया है और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना है कि जब हम एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां सभी लोगों को बराबर का हक हो और सभी लोग आगे बढ़ने के लिए बराबर कार्य कर रहे हों, तो उसमें इस तरह के जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और इस दिशा में हम अपने स्तर पर काम कर सकते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पर बता सकते हैं कि इस बुराई से वो दूर रहें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। और दोस्तों, ये हफ्ता एक और ख़ास चीज़ के लिए जाना जाता है, और ये है वन्य जीव सप्ताह। जी हाँ, 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है लोगों को वन्य जीवों, उनके प्राकृतिक आवास और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। हमारे जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि वे बाघ, हाथी, हिरण, पक्षियों और अनगिनत छोटे बड़े जीवों का घर है। ये सभी मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वन्य जीवों की रक्षा करना हमारे पर्यावरण और आने वाले भविष्य की रक्षा करना भी है। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार और समाज दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सहायता देती है, और बाघ और हाथी जैसे उनके संरक्षण जैसी कुछ योजनाएं हैं जिनके माध्यम से उन पर काम किया जा रहा है, और मानव और वन्यजीवों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए भी कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। लोग भी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पक्षी और प्रकृति भ्रमण, स्वच्छता अभियान, स्कूल प्रतियोगिताएँ, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इस तरह से वन्य जीव सप्ताह में वन्य जीवों के संरक्षण में अपनी हिस्सेदारी अपनी भागीदारी निभा रही हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या कर सकते हैं हम? आप जंगल में नहीं जाते हैं लेकिन यहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? जब हम कहीं भी जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों पर घूमने जाते हैं, तो हम कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, वन्य जीवों को परेशान ना करें और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करें। साथ ही अपने परिवार और बच्चों को प्रकृति और वन्य जीवों के बारे में बताएं। और ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि वन्यजीव केवल जंगलों की संपत्ति नहीं है बल्कि हमारी साझा प्राकृतिक विरासत है। उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जो हम देख रहे हैं ना प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया को, वो देख सकें, समझ सकें और उसके साथ तालमेल बिठाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर सकें।

बिल्कुल बूटा बूटा उगने दें और नए पेड़ पौधे हम लगाएं, प्रकृति के साथ जो हमारा सामंजस्य है उसको और बेहतर करते चलें, इसी का संदेश देता है ये सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह। और दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आज का दिन खेलों की दुनिया में भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एशियन गेम्स चल रहे हैं और उसमें एशियाई खेलों में भारतीय जो अलग अलग टीम्स हैं उनका प्रदर्शन भी देखने लायक होगा। और बात करें अगर कुछ खिलाड़ियों की, तो भारत के फ्रांसिस और नोबल ने पुरुष स्किफ में रजत पदक जीता और नौ स्पर्धा के बाद कुल 23 अंक जुटाए। चीन की जोड़ी ने स्वर्ण जीता। इसके अलावा नितेश स्वर्ण पदक से चूके और ग्रीको रोमन में रजत पदक दिलाया। मानसी हारी। और आपको बताते चलें कि नितेश सिवाच के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन वो गुरुवार को स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। हालांकि उन्होंने 1962 के बाद एशियाई खेलों में ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत को पहला रजत पदक दिलाया, जबकि मानसी अहलावत महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक के प्लेऑफ में हार गए। वहीं अगर बात करें क्रिकेट की, तो श्रीलंका को हराकर भारत फाइनल में पहुंच चुका है और पाकिस्तान से होगा मुकाबला, और वो मुकाबला स्वर्ण पदक के लिए होगा। पदक तालिका की तरफ नजर डालें तो पदक तालिका में भारत के अब तक हो गए हैं 63 पदक, 10 स्वर्ण पदक, इसके अलावा 22 रजत पदक और कांस्य पदकों की संख्या हुई है 31। तो इस तरह से कुल 63 पदक भारत की झोली में आ चुके हैं। एक बार फिर से आज के दिन की तरफ रुख करते हैं, और हमने इतिहास में आज का दिन क्यों है खास आपको बताया, और आज के दिन से जुड़ी कुछ खास हस्तियों के बारे में भी बताया, तो कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने आज के दिन को खास बनाने में खास योगदान दिया है। और ऐसे ही लोगों का जब हम जिक्र करते हैं, तो देश की आज़ादी के बाद हमने बात की कि किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को आगे ले जाने का कार्य किया, देश को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर उन्होंने बहुत खास तौर पर काम किया। एक ऐसा ही नाम है जो आज के दिन से जुड़ा हुआ है, आज उनकी पुण्यतिथि है और उनका नाम है के कामराज। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज जी की आज पुण्यतिथि है। कामराज कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। आज़ादी के बाद 1954 में वे मद्रास राज्य यानी वर्तमान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और करीब 9 वर्षों तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में शिक्षा के विस्तार, नए स्कूलों की स्थापना, सरकारी स्कूलों के जो मध्यान्ह भोजन योजना है और सिंचाई और औद्योगिक विकास पर खास बल दिया गया। और उनका जीवन जो रहा संघर्ष, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा से जुड़ा रहा। उनके निधन के बाद सन 1976 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और आज का दिन खास तौर पर उन्हें याद करने के लिए जाना जाता है। तो आज के दिन हम के कामराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, इस घंटे में तो आपके साथ कई महत्वपूर्ण बातें हुई, लेकिन अगला घंटा जो है उसमें भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाएंगी कोमल भारती। थोड़ी देर बाद यानी कि 8 बजे से आप इस प्रोग्राम को उनके साथ सुन पाएंगे, और 9 बजे से एक बार फिर मैं और आप होंगे एक दूसरे के साथ। प्रोग्राम होगा दिल के तराने, गाने नए पुराने। और इस बीच आपकी जो बातें हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो हम तक लगातार पहुंचते हैं, अच्छा लगता है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखकर अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। डॉली का दिल्ली से मैसेज आया है, साथ ही साथ मैसेज हमें कुछ और हमारे साथियों ने किया है। धर्मभाटिया जी का, मिसेस धर्मभाटिया जी का मैसेज आया है रोहतक से। और राजेश भल्ला जी हैं, हमारे पुराने लिसनर हैं, एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ से, इन्होंने भी लेकर अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं। और मैसेज किया है हमें राजकुमार के संतानी ने भी महाराष्ट्र के अकोला से, और इन्होंने भी अपनी बातचीत हम तक पहुंचाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आप सभी का। अब

अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कुछ और जानकारियां हैं जो अब तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और आज के दिन से जब हम जुड़ी बातें कर रहे हैं, तो आज का दिन कई फिल्मी कलाकारों के लिए भी खास है। आज वर्सेटाइल एक्टर के मेनन का जन्मदिन भी है, तो हम उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ आज जन्मदिन है एक ऐसी अदाकारा का जिन्होंने बीते दौर में कमाल का परफॉर्मेंस दिया, कमाल की फिल्में दी, और उनका नाम है आशा पारेख। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के उस दौर की बात हो जब संगीत, नृत्य और कहानी के साथ अभिनेत्री की अपनी अलग पहचान बनती थी, तो आशा पारेख का नाम बहुत ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1942 को उनका जन्म हुआ और 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सिनेमा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया। उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, अगर फिल्मों का हम जिक्र करें उनके, तो दिल देके देखो, जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, और ये वो ऐसी फिल्में हैं जो ख़ास तौर पर सराही गई उनकी अदाकार, जो उनकी अदाकारी थी। उपकार, कटी पतंग, कारवां, यानी कि फिल्मों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और उन्होंने जो कार्य किए वो भी कमाल के हैं। तो आज उनको भी हम जन्मदिन की देते हैं शुभकामनाएं। और उनकी एक फिल्म आई थी आन मिलो सजना, चलिए उससे गाना सुनते हैं और उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं।

सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग की छूट वैधता 5 साल तक के लिए बढ़ा दी है। फ्लाइट दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबू धाबी भेज दिया गया है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने आज विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। अगले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए आईसीसी ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे अगले कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ, कल था पेडे और आज है फ्राइडे और कुछ लोगों का लॉन्ग वीकेंड भी शुरू। तो प्लान्स तो फुल ऑन होंगे, ट्रिप, शॉपिंग, फूड, फैमिली या फिर बस घर पर चिल। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। आज के गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपको मिलेंगी दिल्ली की जरूरी अपडेट्स, फायर रिस्पांस बाइक्स और QRV से जुड़ी हुई जानकारियां, सेवा संकल्प और डिजिटल इंडिया की बात होगी और साथ ही मौसम, ट्रैफिक और वीकेंड से जुड़े हुए यूजफुल अपडेट्स भी। यानी फ्राइडे मूड तो रहेगा ऑन, साथ ही इन्फॉर्मेशन भी रहेगी ऑन। तो बस पे डे की खुशी, फ्राइडे की वाइब्स, लॉन्ग वीकेंड के प्लान्स, बस ट्रैफिक ही है जो कह रहा है कि इतनी जल्दी भी क्या है, कहाँ भाग रहे हो। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाइए और जुड़े रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। लेट्स मेक दिस फ्राइडे शानदार।

जी हाँ, पार्टी तो बनती है, लेकिन पार्टी के मूड में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक का भी कुछ अपना मूड होता है। बिल्कुल। और आज है 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 122वीं जयंती के अवसर पर जो है आज राजघाट और विजय घाट पर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे डेलीगेट्स वहाँ पर आएंगे, बहुत सारे आमंत्रित अतिथि हैं जो वहाँ पर पहुँचेंगे, और साथ साथ आप जैसे हम जैसे लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तो वहाँ पर ऐसे में ट्रैफिक का थोड़ा सा जो हालचाल है थोड़ा सा टाइट रहने वाला है। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने जो है विशेष यातायात व्यवस्था भी कर ली है। सुरक्षा और यातायात का जो संचालन है उसके तहत आज सुबह 5 बजे से और सुबह 11 बजे तक जो है बहुत सारे डाइवर्टेड किए गए हैं रूट्स, जैसे कि ITO चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांति चौक, राजघाट जो डिपो है बस डिपो, IP फ्लाईओवर, सलीमगढ़ वाई पॉइंट, इन सब जगहों पर जो है थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्ट मिलने वाला है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। तो आप अगर घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से निकलिएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलिएगा। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है ट्रैफिक को देख करके, क्योंकि हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि ट्रैफिक कहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो या तो 11 बजे के बाद कीजिए, या अगर उससे पहले कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक के लिए समय ज़्यादा निकाल करके चलिएगा। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और मैं हूँ आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। आप हमसे जुड़े हुए हैं दिल्ली NCR में 102.6 FM पर, और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमसे देश और दुनिया के किसी भी कोने में जुड़े हुए हैं, और साथ साथ वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपसे जुड़े हुए हैं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे,
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय गजब का स्वाद।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और दिल्ली में अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम साफ और धूप वाला रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान जो है 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन भर धूप खिली रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है।

जी, अगर जादू की बात हो रही है तो चलिए आपको बताते हैं कुछ जादू भरी इवेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आजकल के समय में कोई डांस का स्टेप वायरल हो जाए तो रील्स पर छा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की लाइव परफॉर्मेंसेस का जादू करीब से महसूस किया है? जहां आंखों की एक अदा और हाथों का एक इशारा पूरी कहानी बयान कर देता है। तो दिल्ली वालों, इस वीकेंड कुछ अलग और कुछ खास करने का मौका है। 2 से 4 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव। दिल्ली पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय उत्सव में कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और ओडिसी जैसे नृत्य, यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां पर ये सब प्रस्तुतियां होने वाली हैं। और खास बात ये है कि मंच होगा ऐतिहासिक पुराना किला, यानी कल्चर, आर्ट और हेरिटेज का शानदार कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, इस वीकेंड प्लान सिर्फ कैफे हुपिंग या स्क्रोलिंग तक सीमित मत रखिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को करीब से देखने का आपके पास मौका है और इस खूबसूरत अनुभव का हिस्सा बनने का भी आपके पास अवसर है। तो जल्दी से डिटेल्स नोट कर लीजिए। 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर पुराना किला दिल्ली, शाम 6:30 बजे से, और प्रवेश जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। रील्स पर डांस तो बहुत देखा होगा, अब क्लासिकल का लाइव मैजिक भी देख लीजिए इस वीकेंड। स्क्रोल लेस, एक्सप्लोर मोर। तो दिल्ली एनसीआर अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस सांस्कृतिक उत्सव को एक्सप्लोर करने का एक प्लान बनाएगी, क्योंकि अपनी विरासत को जानना भी अपने शहर से जुड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे हुनरमंद कारीगर होते हैं जिनके हाथों का हुनर साधारण सी चीज़ को भी उस कला का बेजोड़ नमूना बना देता है। जी हाँ, लेकिन सवाल है कि क्या उसके हुनर को वो पहचान और सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? इसी दिशा में दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग की एक खास पहल है, राज्य शिल्प पुरस्कार एवं राज्य दक्षता पुरस्कार 2025। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आपके साथ हूं मैं, आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और दोस्तों, अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो अगर आप हस्तशिल्प कारीगर हैं, अपने काम में नए डिज़ाइन और विचार लेकर के आते हैं या हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ कोई स्टार्टअप चला रहे हैं तो ये अवसर आपके लिए है। जो चयनित प्रतिभागी हैं उन्हें नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। और इसके लिए आवेदन जो है आपको ऑनलाइन करना होगा, जिसकी वेबसाइट है www.industries.delhi.gov.in, या फिर इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं handicraftsworld.gnctd@gmail.com के माध्यम से, या फिर उद्योग विभाग का जो कार्यालय है वहां पर जाकर आप ऑफलाइन भी अपने पंजीकरण को करा सकते हैं। और इसके आवेदन की बात करें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, अगर आप में हुनर में है, आपके हुनर में है कुछ खास, तो उसे पहचान दिलाने का ये जो मौका है इसे हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। और इस जानकारी को उन कारीगरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि हुनर सिर्फ रोजगार नहीं, हमारी विरासत और हमारी पहचान भी है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आपके साथ हूं मैं कोमल।

0: में।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
3: इस शुक्रवार 2 अक्टूबर को सुबह 9:15 बजे से 9:30 बजे तक,
2: और जानिए SOL के कोर्सेज से जुड़े सवालों के जवाब।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

दोस्तों जरा सोचिए, पहले किसी सरकारी काम के लिए दफ्तरों के कई कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज कई सेवाओं की जानकारियां और सुविधाएं जो हैं वो आपके मोबाइल पर उपलब्ध हैं। यानी तकनीक सिर्फ हमारा समय नहीं बचा रही, बल्कि नागरिकों और सरकारी सेवाओं के बीच की जो दूरी है उसे भी कम कर रही है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, जिसका उद्देश्य तकनीक के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना और नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त करना है। ऑनलाइन सरकारी सेवाएं हो, डिजिटल भुगतान हो या सरकारी योजनाओं की जानकारी, ये सब कुछ इनमें शामिल होता है। और वहीं आजकल जो है हमारे देश में चल रहा है सेवा संकल्प अभियान, जन भागीदारी और जन सेवा की भावना को प्रोत्साहित करता हुआ। इसी के तहत लोगों को सामाजिक कार्यों, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या कनेक्शन है? बहुत आसान है। डिजिटल माध्यम से किसी सरकारी योजना की सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाना, किसी जरूरतमंद को ऑनलाइन आवेदन करते समय उसको मदद करना या किसी बुजुर्ग को डिजिटल सेवा इस्तेमाल करना सिखाना, ये छोटे छोटे से प्रयास जो हैं ये भी तो जनसेवा कहला सकते हैं। जी हाँ, और कहला कह सकते हैं, बल्कि है। स्मार्टफोन हाथ में है तो क्यों ना इसे सिर्फ स्क्रोलिंग छोड़कर किसी की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे, डिजिटल जानकारी साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचेंगे और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तो कहा है कि जो हमारे युवा हैं वो खुद तो डिजिटल साक्षर हैं, लेकिन वो ये जिम्मा लें कि अपने आसपास के कम से कम 10 लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे बड़े हैं जो इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो उन्हें डिजिटली जो है हमें साक्षर बनाना है। तो ये भी एक जनसेवा हुई। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आप सभी से करनी है।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और आपके साथ हूँ मैं कोमल। और दोस्तों, कई बार हमारे आसपास जो है ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें देखकर और जिनके बारे में सुनकर हमें लगता है कि अगर थोड़े से समय पहले अगर इस पर कोई कार्यवाही हो जाती या मदद समय पर पहुंच जाती तो जान माल का नुकसान नहीं होता या कम होता। सोचिए, किसी संकरी गली में जब आग लग जाती है और बड़ा फायर टेंडर अंदर पहुंचने में समय लेता है तो ऐसे में हर एक सेकंड जो होता है वो कीमती होता है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में अब फायर रिस्पांस मोटरबाइक और क्विक रिस्पांस व्हीकल्स यानी QRV को सेवा में शामिल किया गया है। कल ही जो है दिल्ली में मालवीय नगर में गीतांजलि फायर स्टेशन के उद्घाटन के साथ साथ 20 फायर बाइक्स और 26 QRVs को हरी झंडी दिखाई गई। और इनकी खास बात यह है कि ये संकरी गलियों में, भीड़भाड़ वाले बाजारों में और घनी आबादी वाले इलाकों में जो है वो जा सकती हैं। खास तौर से उसी के लिए इन्हें डिज़ाइन किया गया है। इनमें वाटर मिस्ट, कंप्रेस्ड एयर फॉर्म्स सिस्टम जैसे उपलब्ध हैं जिससे कि फायरकर्मी जो हैं वो बड़े वाहन के पहुंचने से पहले ही मौके पर पहुंचकर शुरुआती कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। वहीं नए QRVs की बात करें तो यहाँ पर हाई प्रेशर पम्प्स यानी इसके साथ साथ पानी फॉर्म और लंबी हाई प्रेशर हॉर्स जैसी सुविधाएँ इसमें होंगी। यानी गाड़ी तो छोटी है लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस में बड़ा काम करने वाली है। तो अब की बार कहीं पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, आग लगे और रास्ता छोटा हो या बड़ा, रिस्पांस टाइम से पहुंचेगा ये जो है उम्मीद है और इसी आशा के साथ इसे शुरू किया गया है। याद रखिए, फायर सेफ्टी में सबसे पहला कदम घबराना नहीं होता, तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना देना और सुरक्षित जगह पर पहुंचना होता है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इमरजेंसी में हर सेकंड मायने रखता है।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी एफ एम रेनबो। और दोस्तों, आप मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही, लेकिन आपकी सुबह और संगीत का साथ जो है वो आकाशवाणी के साथ अभी भी जारी है, क्योंकि अब बारी है राजेश की, जो अपने खास अंदाज में लेकर आ रहे हैं दिल की तरह ने गाने नए पुराने। जहाँ होंगे कुछ नए नगमे, कुछ पुराने गीत और ढेर सारी खूबसूरत यादें। तो चाय की आखिरी चुस्की हो जाए, यादों का एक सिलसिला शुरू हो जाए और संगीत के साथ दिल भी थोड़ा सा गुनगुना जाए। राजेश के साथ सुनिए दिल के तराने, गाने नए पुराने, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी एफएम।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित हो रही है। राष्ट्र आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मना रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबुधाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने

एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। अगले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए आईसीसी ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा और मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: सुनिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोजित कार्यक्रम
2: इस शुक्रवार 2 अक्टूबर को सुबह 9:15 बजे से 9:30 बजे तक
1: और जानिए SOL के कोर्सेज से जुड़े सवालों के जवाब।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने। मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार और दोस्तों इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं हम नए और पुराने दोनों तरह के गीत लेकर आते हैं आपके लिए और साथ ही कुछ काम की बातें भी आप तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले और इसके साथ ही इसके फॉलो में भी कुछ गीत होंगे तो इसके साथ आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। और दोस्तों अब समय है कि हम आप तक पहुंचाएं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम SOL। तो चलिए मिलकर सुनते हैं ये प्रोग्राम हम और आप।

0: नमस्कार, मैं हूं कुशाग्र और आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के आज के इस कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं विद्या।
0: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स की परेशानियों और उनके सवालों को हल करने के लिए हमने ये खास कार्यक्रम तैयार किया है। अभी तक के अपने एपिसोड्स में हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी कुछ शंकाएं और सवाल अभी भी बचे हुए हैं और हम उनका भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस एपिसोड के द्वारा। इसलिए अपने आज के इस एपिसोड में हम वो सवाल ले रहे हैं जो आपने हमें ईमेल के जरिए पूछे थे, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो मैम। पायल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: थैंक यू।
1: हमारे आज के प्रोग्राम का पहला सवाल हमें भेजा है माही सिंह जी ने। माही सिंह जी पूछ रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो अभी बीए कोर्स कर रहे हैं, क्या वो साथ ही साथ एसओएल से दूसरा कोर्स कर सकते हैं?
2: बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दूसरा कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने ड्यूअल डिग्री की परमिशन दी हुई है। तो आप ड्यूअल डिग्री के उसके नाते आप ये दूसरा कोर्स कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं हमारे किसी कोर्स के लिए।
0: मैम, एलिजिबिलिटी से मतलब अगर हम स्पेसिफिकली जानना चाहें तो क्या है?
2: परसेंटेज आपकी है, और जो भी पर्टिकुलर आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए जो सब्जेक्ट्स पढ़े होने चाहिए, जैसे आप कंप्यूटर साइंस करना चाहेंगे तो उसके लिए मैथ्स कंपल्सरी है, बीकॉम करना चाहेंगे तो मैथ्स कंपल्सरी है, और बाकी बीए प्रोग्राम में कुछ सब्जेक्ट्स लेने चाहेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप बीए प्रोग्राम का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं।
1: हमारा अगला मेल आया है साहिल कुमार जी से, और साहिल कुमार जी हमसे पूछना चाहते हैं कि उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो क्या एसओएल उन्हें फोटोकॉपी के बेसिस पर एडमिशन दे सकता है जब तक कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी ना निकलवा लें?
2: अभी आप अपने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन विद इन अ मंथ आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे तो वो जो प्रोविजनल एडमिशन होगा वो कंफर्म्ड एडमिशन हो जाएगा।
0: पायल मैम, अगला सवाल है सोना सिंह जी का। उनकी एजुकेशन तो पूरी हो गई है, लेकिन वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए जानना चाहते हैं कि एसओएल से एमबीए करने की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें कहां से मिल सकती है?
2: एमबीए की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट से मिल सकती है। हमारा जो एमबीए का पूरा ब्रोशर है वो वेबसाइट पे है। दो तरह का एमबीए हम करते हैं, एक एमबीए जो जनरल एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और दूसरा एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। दोनों जो एमबीए हैं, जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, सेम करिकुलम वही हम फॉलो करते हैं, और इसमें सिंपल है एडमिशन कि आपको कैट नहीं देना है, बिना कैट का आप भरे, अगर बिना कैट एग्जाम दिए भी अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ब्रोशर आप देखिए। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो ब्रोशर आपको मिलेगा एमबीए का और हेल्थ केयर मैनेजमेंट का, उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एक परसेंटेज रिक्वायर्ड है, मिनिमम परसेंटेज अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग परसेंटेज है। यूआर कैटेगरी के लिए 55% है और बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ी सी लोअर परसेंटेज है, और इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है आपका वो भी काउंट होगा इसके अंदर आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट निकलती है। और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसके रिलेटिव आपको कुछ पॉइंट्स आपकी जो ऑलरेडी स्कोर्ड मार्क्स हैं उसमें ऐड हो जाएंगे।
0: अगला प्रश्न निखिल चौहान जी ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि एडमिशन की इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है?
2: वेबसाइट हमारी sol.bu.ac.in है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको एडमिशन के लिए एक लिंक मिल जाएगा।
0: और पायल मैम, अगर इन कोर्सेज से रिलेटेड फी की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी?
2: वो भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारा पूरा एक ब्रोशर है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, उसके अंदर किसी भी कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्ड फीस और डिटेल्स उसकी कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है वो, और कितनी एलिजिबिलिटी है आपकी वो आपको मिलेगा। आपको यूजी का, पीजी का और एमबीए के अलग अलग ब्रोशर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे।
1: अगला मेल हमें भेजा है सूती सिंह जी ने, और वो बता रहे हैं कि वो पहले तो दिल्ली में रहते थे, अब वो कुछ समय एमपी में रहेंगे, लेकिन एसओएल से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि एमपी में क्लासेस कहाँ पर होती हैं और वो ये क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं?
2: नहीं, एमपी में कोई भी हमारी फिलहाल के लिए क्लासेस नहीं है। अगले साल से हम ऑनलाइन क्लासेस इसमें कुछ कोर्सेज में शुरू करेंगे, लेकिन अभी अगर आप एमपी में रह के और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना करना चाहते हैं, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन, पोर्टुगीज, जापानीज, चाइनीज, इस तरह की लैंग्वेजेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स में, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लैंग्वेज कोर्सेज हैं, 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स है जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
0: अगला प्रश्न है अश्विनी कुमार जी का। वो जानना चाहते हैं कि SOL में अगर वो जर्नलिज्म से कोई स्किल कोर्स करते हैं तो क्या उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज या प्लेसमेंट मिलेगा।
2: SOL में हमारा प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल प्लेसमेंट ड्राइव्स अरेंज कराता है। उस प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान अगर कोई कंपनी आपको लेती है या कोई ऐसा बिजनेस हाउस या न्यूज़पेपर हाउस आपको लेता है तो उस प्लेसमेंट ड्राइव में आप अपीयर हो सकते हैं।
0: पाल मैम, अगला सवाल है सुरेंद्र शर्मा जी का। वो यूके में रहते हैं और कह रहे हैं कि मैं यूके में रहता हूं लेकिन मैं दिल्ली से ही यूके आया हूं और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं। यहां यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी है, तो मैं किस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूं और मैनेज कर सकता हूं, मुझे जरा इसके बारे में बताइए।
2: अगर आप अपना ऑनलाइन फिल करते हैं एग्जाम PG कोर्स के लिए और आपका उसमें एडमिशन हो जाता है तो

0: आपको हम स्टडी मटेरियल जो है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। हमारी जो रिविजन क्लासेस हैं और कुछ और भी क्लासेस हैं वो आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए इस सेशन का तो दिल्ली में आना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर बाहर नहीं है। लेकिन आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जैसे लैंग्वेज कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, तो वो आप कोर्स ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। उसका एग्जामिनेशन भी हम आपका वहीं से मैनेज करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम मैनेज करें आपका यूके से या ऑनलाइन एग्जाम मैनेज करें। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप वेट करेंगे तो हम इसमें बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, एमबीए और साथ ही साथ इंग्लिश ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन लाने की सोच रहे हैं।
1: क्या हुआ अश्विनी, इतने उदास कैसे लग रहे हो?
2: बच्चों की पढ़ाई के खर्चे और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, मगर इस जॉब में फाइनेंशियल ग्रोथ ही रुक गई है। कहते हैं एमबीए किया होता तो ग्रोथ मिलती, काम बढ़ रहा है लेकिन सैलरी नहीं।
1: तो एमबीए की डिग्री ले लो।
2: किस यूनिवर्सिटी से करूं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भारी भरकम फीस कहां से लाऊंगा और जॉब के बिना खाऊंगा क्या?
1: प्राइवेट यूनिवर्सिटी से क्यों? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉम्पिटिटिव फी में जॉब के साथ साथ एमबीए की डिग्री ले लो।
2: जी हाँ, स्टूडेंट्स का भरोसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जहां हर साल एमबीए में तकरीबन 3,500 स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर अपने करियर को देते हैं एक नई दिशा। मैम, अगला सवाल जो आया है वो स्किल कोर्स से रिलेटेड है। मैम, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी कराते हैं अपने स्किल कोर्सेज में?
0: नहीं, इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स हम नहीं कराते हैं स्किल सेंटर में, लेकिन जो एसी रिपेयरिंग, आरओ रिपेयरिंग, ये सारे कोर्सेज हम कराते हैं, उसके साथ में बेकरी, जर्नलिज्म और बाकी कोर्सेज हैं।
2: मैम, अगला सवाल है नीतिका भटनागर का। वो जानना चाहती हैं कि मीडिया स्टडीज और जर्नलिज्म में क्या क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन ही होती हैं या ऑफलाइन भी होती हैं?
0: नहीं, इसमें हाइब्रिड क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और कुछ जैसे प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी होती है।
2: पायल मैम, अगला सवाल है राहुल का। वो जानना चाहते हैं कि जब हम किसी प्राइवेट या सरकारी इंस्टीट्यूट से एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कोर्स करते हैं तो हमें वहाँ से सपोर्ट भी मिलता है अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, तो क्या ऐसा कोई सपोर्ट SOL से भी मिलता है?
0: जी, इसमें हम अपना इंक्यूबेटर हमने शुरू किया है। इंक्यूबेटर में हम बिजनेस आइडिया कॉम्पिटिशन करते हैं, उस बिजनेस आइडिया में आप अपना बिजनेस आइडिया दे सकते हैं SOL के जो भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका बिजनेस आइडिया हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्लिक करता है कि हाँ ये अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हम आपको इंक्यूबेट करते हैं फॉर 3 इयर्स।
2: तो मैम, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है?
0: स्टार्टअप का आइडिया हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस SOL के स्टूडेंट्स हैं, बाहर के लोगों को भी हम ये फंडिंग कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द फंडिंग जो भी हमारी बचती है।
2: पायल मैम, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लोन किस तरह का है, क्या उन्हें इस लोन के ऊपर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट देना होगा, तो मैम प्लीज इस कंफ्यूजन को थोड़ा स्पष्ट कीजिए ताकि स्टूडेंट्स बिना किसी झिझक के अपने आइडियाज SOL को प्रेजेंट कर सकें और यहां से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकें।
0: इसमें ये लोन नहीं है। जब आप अपना आइडिया, बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते हैं और आपका बिजनेस आइडिया एक्सेप्ट हो जाता है तो हम आपको मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी जो कंपनी है वो एस्टैब्लिश हो जाए, और आपको स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं कि उस स्पेस से आप अपना जो पूरे आइडियाज हैं उसको मैच्योर कर पाए, आप मार्केटिंग रिसर्च कर पाए, अपना जो आपका प्रोटोटाइप है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए, और ये सब करने के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ नॉट अ बिजनेस फंडिंग। और फाइनली जब आपकी कंपनी पूरी एस्टैब्लिश हो जाती है तो जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी होगी उसमें से जो आपके बिजनेस की इक्विटी होगी 2% की या 3% की, वो इक्विटी हमारे इंक्यूबेटर के पास भी आपके बिजनेस की रहेगी।
2: क्या मैम वो इक्विटी हमेशा रहेगी?
0: हाँ, हमेशा।
2: मैम, कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास सवाल आए हैं कि क्या SOL ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा कुछ नया भी लॉन्च करने वाला है?
0: हम कुछ नए कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, स्पेशली स्किल का एक नया कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं जो कि AI एंड फिल्म डायरेक्शन का कोर्स होगा, और इसके अंदर आप AI के माध्यम से कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे, AI फिल्म मेकिंग में या AI एडवर्टाइजमेंट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर, उसका करिकुलम अभी फाइनल स्टेजेस के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और ये स्किल कोर्स होगा और हैंड्स ऑन कोर्स होगा।
2: तो इसमें स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस करेंगे या फिर ऑनलाइन?
0: इसमें हाइब्रिड मोड में क्लासेस करेंगे, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन करना होगा तो आपको सॉफ्टवेयर पे काम

0: करने के लिए यहाँ आना होगा। कुछ क्लासेस ऑफलाइन होंगी, कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी।
1: पायल मैम, चलते चलते हमारे जो SOL के नए स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में अगर पढ़ाई के साथ साथ अपने कैरियर को भी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, चाहे वो किसी स्किल को अर्न करके या कोई बिजनेस शुरू करके, और अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव कैरियर्स, कुछ अल्टरनेटिव स्किल्स करना चाहते हैं, तो SOL से बेटर ऑप्शन आपको कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको वीक में 2 दिन या 3 दिन आकर अपनी पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स देने हैं, आपकी जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और जो SOL है वो DU का ही पार्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, लेकिन आपके पास इतना समय बच जाता है कि आप नई स्किल्स अर्जित कर पाएँ, या आपको कोई जॉब तुरंत करनी है आप वो कर पाएँ, या आपको कोई ड्यूअल डिग्री करनी है, मान लीजिए आपको BCom हमारे साथ करना है और CA करना है, या CS करना है, या आपको रेगुलर में जाके ड्यूअल डिग्री करनी है, तो ये सब काम आप SOL में बहुत आसानी से कर पाते हैं। और इसके साथ साथ हमने एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक माइनर जो शुरू किया है, बहुत सारे कोर्सेज के साथ में आप माइनर सब्जेक्ट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं और अपना बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। इनक्यूबेटर हमने एस्टैब्लिश करने का सोचा है और उस इनक्यूबेटर में आप अपने बिजनेस आइडियाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो SOL से बेहतर जगह अपने कैरियर को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए शायद और कोई आपको नहीं मिलेगी।
1: थैंक यू सो मच मैम, आपने वाकई बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर दिए। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के मन में जो भी शंकाएं रही होंगी, जो ईमेल के थ्रू हमें क्वेश्चंस मिले, उनके तो जवाब आपने दिए ही दिए। इसके अलावा भी आपने ऐसे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर दिए जो बच्चों के मन में आ सकते थे या जिसके बारे में वो सोच सकते थे। तो वाकई मैम, आपने जिस विश्वास के साथ उनके डाउट्स को क्लियर किया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों के मन में भी एक दृढ़ विश्वास जागेगा, वो SOL से कोर्स करने के लिए, डिग्री करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे और जरूर एडमिशन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पायल मैम आपका।
0: थैंक यू।
1: सवाल तो बहुत सारे हैं, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो ये था नए विद्यार्थियों के लिए SOL के द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम, जिसमें कोशिश की गई थी कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जा सकें। और अब आपने अपना मन भी पक्का कर लिया होगा SOL में एडमिशन लेने के लिए, तो फिर देर किस बात की। SOL की वेबसाइट sol.du.ac.in पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें, क्योंकि SOL आपको देता है डिग्री के साथ साथ वक्त भी और हुनर भी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: FM रेनबो पर अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के लाइव अपडेट्स ऑन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और आज के दिन की शुरुआत एक शानदार गोल्ड के साथ हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक गोल्ड के साथ दोस्तों। दिस केम इन द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट द एशियन गेम्स, विनिंग गोल्ड इन द वुमेन्स रिकर्व टीम इवेंट आफ्टर डिफीटिंग द ह्यूज giant South Korea in a thrilling final. We also saw Kumkum Mohammed was the star of the final, showing remarkable composure under pressure. The 17-year-old repeatedly delivered crucial tens when India needed them most, including the decisive shot that sealed the gold medal. Ankita Bhagat provided valuable experience and consistency, while Kirti had moments of pressure during the final, but India's collective effort proved decisive when this was the first time in history that India ever reached the final of this event. Anupam,
6: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और जैसा कंपाउंड आर्चरी में किया था वैसे ही आज रिकर्व में भी हो रहा है। रिकर्व थोड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म है और आप तो बता ही चुकी हैं स्वर्ण पदक आ गया और एक और स्वर्ण पदक पर पूरी पूरी निगाहें हैं। यह है मिक्स्ड इवेंट जिसमें आज भारत की टीम ने बहुत ज़बरदस्त खेला, सेमीफाइनल में जापान को 5-3 के स्कोर से हराया और इसी वक्त चल रहा है उसका फाइनल और इसमें पीछे है भारत चीन से और ये बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। और बल्कि इसमें सारे शूट्स हो चुके हैं, सारे तीर मारे जा चुके हैं और लगता है भारत इसमें अब पीछे रह गया है। 2-4 से पहले पीछे था और अब 3-5 से पीछे हो गया है, यानी रजत पदक, फिर भी एक स्वर्ण पदक एक रजत पदक और इसके अलावा अभी मेंस टीम तो बाकी है।
5: करेक्ट एंड कमेंडेबल स्टार्ट टू द डे। इनफैक्ट भारत के एंगल से रग्बी सेवंस के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इंडिया प्रोड्यूस्ड अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस टू डिफीट मलेशिया 26-5 इन द वुमेन्स रग्बी सेवंस पूल ई मैच एट द एशियन गेम्स। भूमिका शुक्ला स्कोर 3 ट्राइज व्हाइल टुडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री ओवर मलेशिया।
6: बिल्कुल, और अब हम इसके रिजल्ट को थोड़ा सा आपको और भी बता सकते हैं। इसमें धीरज देव बुमरा जो विश्व में नंबर 1 की पदवी रखते हैं वो थे और साथ में कुमकुम महोत थी। बहुत लड़ाई की, बहुत अच्छी लड़ाई की और हम कहेंगे सेमीफाइनल तक पहुंचना और फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक स्वर्ण पदक और दूसरा रजत पदक। इसके अलावा कुश्ती में हम बात करते हैं, कुश्ती में आज बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। फ्री स्टाइल के मुकाबले थे, भारत के 4 पहलवान थे। सबसे पहले प्रिया 60 किलोग्राम में कजाक की काइजी मेडट से हार गई और ये चित होकर हारी, यानी कि विक्ट्री बाई फॉल मिली मेडट को। और 50 किलोग्राम में दीपांशी वो जापान की यूई सुशाकी के विरुद्ध थी और ये भी टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर यूई ने मुकाबला जीत लिया। और इसके बाद 125 किलोग्राम में रजत राहुल, ये कुश्ती जरूर थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया लेकिन अंततः वो हार बैठे मुकाबला पॉइंट्स अंकों के आधार पर। लेकिन 65 किलोग्राम में जिस पर सबसे अधिक उम्मीदें थी सुजीत, उन्होंने अफगानिस्तान के उमर सैयद को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर परास्त किया और इस समय उनका मुकाबला चल रहा है ईरान के अब्बास इब्राहिम के साथ और ये पहला राउंड है और देखते हैं इसमें क्या होता है। बस इसकी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में।
5: राइट, गुड न्यूज, वन गुड न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग। नाउ लुक, लेट्स हैव अ लुक एट वॉलीबॉल आल्सो। इंडिया डिफीटेड साउथ कोरिया 3-1 इन द मेंस वॉलीबॉल 5th-8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच। इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23। इंडिया देन क्लोज्ड आउट द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23।
6: बिल्कुल, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर आई है। वॉलीबॉल में भारत ने अपने पूल में सारे मैच जीते थे। भारत वॉलीबॉल में एक अच्छी टीम है, हालांकि 3 कांस्य पदक आते रहे लेकिन इधर करीब पिछले 20 साल से कोई पदक नहीं आया है। और अब वो हार गए थे उसके पश्चात पाकिस्तान से और अब वो 5वें से 8वें स्थान के लिए क्लासिफिकेशन मैच खेल रहे हैं जिसमें से पहला मैच उन्होंने दक्षिण कोरिया को 3-0 से यानी लगातार सेट्स में हरा दिया है। अब 5वें और 6ठे स्थान के लिए उनकी लड़ाई होगी, अगला मैच होगा।
5: राइट, एंड मूविंग ऑन टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट वेयर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू 3rd प्लेस आफ्टर चाइना हु वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस। इंडिया हैड इनिशियली फिनिश्ड 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स स्किफ इवेंट टीम आल्सो।
6: बिल्कुल, समय कम है लेकिन इतना बता दें सबको इंतजार है आज हॉकी का जिसमें भारतीय लड़कियां स्वर्ण पदक पर निशाना साधेंगी। चीन के विरुद्ध मैच होगा। इसके अलावा बॉक्सिंग में 3 फाइनल्स हैं तो हमारी अपडेट्स के साथ बने रहिएगा।
5: जी, और जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज भारत की पोजीशन क्या है दिन की शुरुआत पे ऑन द मेडल टेबल बिकॉज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इंडिया हैज मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द 7th स्पॉट। जी हाँ, 7वें स्थान पर अब भारत आ चुका है। कुल मिलाकर भारत के पास इस समय 67 मेडल्स हैं जिसमें 11 गोल्ड, 23 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज है। ऑल थैंक्स टू द फैक्ट दैट आज शूटिंग ने सुबह सुबह हमें एक और गोल्ड दिला दिया। और आपको बता दें सिर्फ शूटिंग आर्चरी ने हमें एक और गोल्ड दिला दिया। और आपको बता दें कि आर्चरी में इसके साथ अब 4 गोल्ड हो चुके और 1 ब्रॉन्ज विच मेक्स इट 5 मेडल्स। और शूटिंग की अगर हम बात करें तो 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 15 मेडल। यानी सुबह सुबह जो आर्चरी ने हमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर दिलाया है उसकी बदौलत भारत अब 8वें स्थान से 7वें स्थान पर आ चुका है मेडल टेबल पर। और हमारे टोटल मेडल्स भी फिलहाल अब 67 हो चुके हैं विच इंक्लूड्स 11 गोल्ड। होपिंग दैट द डे टर्न्स आउट इवन मोर बेटर फॉर इंडिया। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। विल जॉइन back at 10:30 a.m. with the live updates of the ongoing Asian Games 2026.
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों अब समय है कि ज्यादा इंतजार ना करवा

जाए, कुछ और गीतों को आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं मौसम का हाल। दिल्ली और इसके आसपास के अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम थोड़ा धूप छाओं का खेल चलता रहेगा और मौसम धीरे धीरे अब जो है बदल रहा है, तो बदलते मौसम में कुछ सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी चाहिए ताकि हम अपने आप को रखें स्वस्थ, और स्वस्थ रखने में मदद करता है हमें अच्छा संगीत भी। तो एक पुराना गीत आपके लिए अब हम लेकर आए हैं, और ये गीत आज खासतौर पर इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि आज है आशा पारेख का जन्मदिन, तो उन पर फिल्माया गया ये गीत आपके लिए।

0: फिल्म लव इन टोक्यो से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, गीतकार हसरत जयपुरी साहब, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार जॉय मुखर्जी साहब और आशा पारे। क्या कमाल की फिल्म थी और क्या कमाल के इस फिल्म के सभी गीत थे। तो अब आपको बताते चलें कि आप चाहें तो ट्रैफिक का अपडेट हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है कहीं पर, तो आप वो बातें हम तक पहुंचाएं और हम ट्रैफिक का अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं वो है 9868107070 9868107070।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6

0: इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
7: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
6: पताका चाय, गजब का स्वाद।
8: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब की मेलोडियस वॉइस में आपने ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, फिल्म बहारें फिर भी आएंगे। इस फिल्म से संगीतकार थे ओपी नैयर साहब और अनजान के बोल थे, और कमाल की ये फिल्म थी और इस गीत का जो पिक्चराइजेशन था वो भी कमाल का था। क्या तीनों ही कलाकार धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा इस गीत में दिखाई देते हैं, और प्रकृति के जिस तरह से बिंबों का इस्तेमाल इस गीत में अनजान साहब ने किया है वो बस सुनते ही बनता है, देखते ही बनता है। खैर, ये तो बात रही गीत की, इसी तरह से देखते ही बन रहे हैं आपके जो बातें। हमने आपसे कहा था कि आप ट्रैफिक का अपडेट दे सकते हैं, कोई बात आप कहना चाहते हैं वो भी आप हम तक पहुँचाते हैं। डॉली का दिल्ली से मैसेज आया है, इसके अलावा राजेश भल्ला जी ने भी हमें मैसेज किया है, एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से, और मैसेज भेजा है हमें, हमारे साथी हैं, इनका नाम मैं ढूंढ रहा हूं, राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, लिख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, रास्ता साफ है, बस स्टेटेड कॉर्मल स्कूल कोर्ट और बीच में ये आते हैं, लास्ट में रेलवे स्टेशन, किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक नहीं है, रास्ता क्लीन है। ये तो इन्होंने बता दिया अपने जगह का हाल, अकोला का, महाराष्ट्र का। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी ट्रैफिक जो है आज ज़्यादातर जगहों पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर विशेष रूप से छुट्टी है कई जगहों पर। तो जो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है उसके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर, वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सदर बाज़ार की तरफ मिठाई पुल के पास भी थोड़ा ट्रैफिक है, और ज़्यादातर जगहों पर थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है। ये सलाह दी जाती है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो घर से समय से निकलें ताकि आप समय से वहाँ पहुँचें। और समय की तरफ तो जब मैं देखता हूँ तो समय कह रहा है कि बस अब आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद हिमानी दत्ता होंगे आपके साथ, प्रोग्राम होगा मैचलेस म्यूजिक आवर, और 11 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसमें हम बताते हैं आपको बॉलीवुड की तमाम बातें, बॉलीवुड ट्रेल्स, सृजन राजपूत उस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुँचेंगे। और एक बार फिर से 12 बजे होंगी आपके साथ हिमानी दत्ता, प्रोग्राम होगा प्ले इट कूल, जो कि हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम है, और 1 बजे से होगा प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, सृजन राजपूत होंगे इसमें। और इस प्रोग्राम में, मेरा वाला सॉन्ग में, आप अपनी पसंद के गीत सुन पाते हैं, और हमारे उन लिसनर्स के लिए खास तौर पर जो हमें अलग अलग प्रोग्राम्स में मैसेज भेजते हैं, कहते हैं कि हमारी पसंद का ये गीत आप हम तक पहुँचाइए, तो आप 1 बजे से 2 बजे के बीच में प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं, और आज उस प्रोग्राम में आपके साथ होंगी सृजन राजपूत। तो अब राजेश को दीजिए अनुमति, चलते चलते आपके लिए एक और गीत, और वो गीत है ये वाला, नमस्कार।

0: It's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
2: आज दिन की दूसरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। 20वें एशियाई खेलों में दिन क्या शानदार है रहा है भारत के लिए अब तक। मैं हूं अनुपम पाठक अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। पहली अपडेट में हमने बताया कि आर्चरी की रेंज से स्वर्ण पदक आया, रजत पदक आया और उसके बाद अब बॉक्सिंग का रिंग लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और क्या शानदार जीत है उनकी। पिछली बार भी उनके पास पदक था, वो सिल्वर था। इस बार उन्होंने चीन की जी बाओ को परास्त किया। उनके मुक्कों का दम देखा सारी दुनिया ने। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में ज़रूर थोड़ा मुश्किल से उनको हुई थी, लेकिन आज वो पूरे फॉर्म पे थी और स्वर्ण पदक एक और भारत को।
3: जी, और अगर रेसलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसी न्यूज़ को आगे बरकरार रखते हैं। भारत के सुजीत कलकल ऑल्सो एडवांस टू द मेन्स फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल विद अ डोमिनेटिंग 10-0 विक्ट्री ओवर ईरान्स अब्बास इब्राहिम जदे सवादो की बाय टेक्निकल सुपीरियोरिटी। सुजीत को सिर्फ 30 सेकेंड चाहिए थे ऑफ द सेकेंड पीरियड टू फिनिश द क्वार्टर फाइनल, एडिंग 2 मोर पॉइंट्स टू कम्प्लीट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन। और इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अब प्रवेश कर लिया। और आपको ये भी बता दें कि सेमीफाइनल का बाउट भी शुरू हो चुका है, जिसका हो सकता है हम आपको अपडेट इसी अपडेट
2: के अंदर। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ इसके लिए।
3: जरूर,
2: ये उनका मुकाबला हो रहा है जापान के कोतोरो कियोका से। और पहला पीरियड में अब बहुत बढ़िया दाम लगाए वहां पर सुजीत ने। एक समय तो 5-2 की बढ़त ले ली, लेकिन वहां पर चैलेंज किया जापान के पहलवान ने और वो 2 अंक चैलेंज को मान लिया गया, वापस कर दिए गए। 3-2 से बढ़त थी। इसके बाद जापानी ने एक बढ़िया दाम लगाया, 3-3 की बराबरी। मुकाबला बस अभी ख़त्म हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है अंकों के आधार पर सुजीत अब फाइनल में पहुंच गए हैं। कन्फर्मेशन बस होने वाली है।
3: चलिए, थोड़ा इंतजार रहेगा कन्फर्मेशन का उसका। लेकिन टैक्वांडो की दुनिया से आपको बता दें कि भारत का सफर इसके अंदर आकर आज समाप्त हो गया। इंडियाज कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान्स रीता बक्शेवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स। मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच्ड बिटवीन द 2 कॉम्पिटिटर्स।
2: और इसके अलावा साइकिलिंग में आज तमाम मुकाबले हैं। सुबह से ही वेलोड्रोम जो है गुलजार हो

0: जाता है। आज भारत कई स्पर्धाओं में महिलाओं के ओमनियम में हर्षिता जाखड़ वो 12वें स्थान पर रहीं और कुल 13 लोग ही थे तो वो क्वालिफाइड नहीं कर सकी। अब पुरुष कीरिन में रोनाल्डो सिंह थे, वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई वो भी नहीं कर सके, लेकिन डेविड बेकहम उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया, उन्होंने क्वालिफाई किया और वो पहुंच गए हैं अगले चक्र में। लेकिन इसके बाद रिपेचेज में डेविड ने क्वालिफाई किया है और रिपेचेज में रोनाल्डो को भी मौका मिल गया और रोनाल्डो ने यहाँ पर बढ़िया खेला, छठे स्थान पर आए और अब वो सेमीफाइनल चक्र के लिए पहुंच गए, यानी उनकी साइकिल के पैडल अभी चलने वाले हैं भारतीय साइकिलिस्ट के।
1: उम्मीद करते हैं कुछ अच्छी खबर लेकर आए वो भारत के लिए। आगे बढ़ेंगे सेपेक्तक्रो की तरफ भी दोस्तों। आनंद ग्रुप ए मैच ऑफ द सेपेक्तक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट, थाईलैंड हैव एब्सोल्युटली डेसिमेटेड इंडिया। जी हाँ, दे टुक द सेकंड सेट बाय अ मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। दे वर ड्राउन 13-15 by their opponents in the first set as they lost it earlier. India have thus bowed out of the event after losing all three of their group games. जी हाँ, भारत का सफर इसके अंदर भी समाप्त हो ही गया।
0: और रेसलिंग में एक खबर और भी है, अच्छी खबर है। दीपांशी हार गई थी 50 किलोग्राम भार वर्ग में आज, लेकिन उनको मौका एक और मिल गया है रेपचेज में और कंबोडिया की पहलवान के साथ उनका मुकाबला बस इस समय शुरुआत हो गई है। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है।
1: जी, और आपको याद दिला दें कि आज के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ हुई थी, जहां पर आर्चरी ने हमें आज गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रदान किया। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो पहली बार आर्चरी की हिस्ट्री में एशियन गेम्स में ऐसा हुआ है कि भारत की टीम फाइनल के अंदर पहुंची। और हम बात करें वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, जिसने आज हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग द गोल्ड, thereby defeating South Korea in a very thrilling final. वहीं पर अगर हम रिकर्व मिक्स टीम के फाइनल उसकी भी बात करें, फाइनल्स की भी, तो उसमें भी हमने देखा कि भारत ने आज हमें उसके अंदर भी एक सिल्वर पदक ला के दिया। सो रिकर्व मिक्स टीम के अंदर वी वर एबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स विद अ सिल्वर।
0: और ये और खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कोरिया जो है वो पावर हाउस है, कोरिया 10 बार चैंपियन रहा है, उस टीम को परास्त करना और इस अंदाज से परास्त करना बहुत ही शानदार, लड़कियों ने गजब करके दिखाया।
1: जी, और मिक्स टीम सेमीफाइनल, मिक्स टीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वी गॉट द सिल्वर आउट देयर डेफिनेटली। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर गुड न्यूज ऑफ द डे आल्सो, और शुड आई से a nice news that's coming up away, which is in rugby sevens, where India produced a dominant performance to defeat Malaysia 26-5 in the women's rugby seven pool E match at the Asian Games. Bhumika Shukla scored 3 tries, while Tudu Sandhya Rani and Kumari Aarti also crossed the line as India secured a comfortable victory.
0: साक्षी, बहुत अच्छी बात इसलिए भी है ये क्योंकि रग्बी सेवन का पहला मैच जो कल भारत ने खेला था बहुत बुरी तरह हारे थे, उसको देखते हुए आज उतनी ही अच्छी जीत है। 26-5 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर होता है।
1: राइट, मेडल टेबल पे हो सकता है थोड़ी सी हलचल जरूर मचे, लेकिन द लास्ट अपडेट दैट वी हैड वाज दैट इंडिया वाज स्टिल एट द सेवंथ पोजीशन। लेकिन क्योंकि अब ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि रेसलिंग के अंदर भी हो सकता है मेडल्स आए, तो मेडल टेबल में थोड़ी बहुत हलचल तो मचेगी। हम आपको वो अपडेट अगले अपडेट में लाकर देंगे कि भारत की पोजीशन में क्या उत्थान हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ऑन द मेडल टेबल। फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक सेइंग गुड बाय, विल बी जॉइनिंग बैक अगेन इन द नेक्स्ट अपडेट एट 11:30 AM।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: You were listening to the Asian Games 2026 update. Absolutely musically yours, Akashwani Rainbow, and the music here never stops. One thing that makes all of us smile is sports. And yes, we at Akashwani Rainbow are bringing you regular updates from Aichi Nagoya in Japan, where the Asian Games are on. We all know that. Well, there is great news coming in from the football world, and all the football fans, this should make you smile. Argentine professional football manager and former star forward Carlos Tevez is planning a star-studded farewell at La Bombonera in December. The treat here for all the football fans is that he has invited both Messi and Ronaldo, and he wants them both on the same team. Oh my God, imagine the fun! So yes, it seems that this is going to be a win-win situation for everyone. And historic, of course.

0: The lyrics by Majroo Sultanpuri, music by R.D. Barman, sung by Mukesh from the film Dharm Karam, released in 1975.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में

0: आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: वेलकम बैक, योर विद अस ऑन आकाशवाणी रेनबो। एंड एवरी डे व्हेन वी लीव होम फॉर वर्क, our family knows when we will be returning. But there is one member of the family who has absolutely no sense of time whatsoever and begins to wait for us the moment we vanish from their sight. They spend every moment and all of those hours waiting for us. Every sound at the door makes them hope that it is us. And when they finally see us, for them, every single moment, every single time, every single day is the best for them. Any guesses who I'm talking about? And in the meantime, that you let me know about your guesses, well, let's celebrate. Of course, it was yesterday, the birthday of Julie Andrews. You remember her, The Sound of Music? Yes, yeah, so wishing. Okay, of course, she was, she did a beautiful job in the movie, and Sound of Music is a movie which is just etched in our hearts, and this track I just have to put out.

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। लीजिए प्रस्तुत है सुबह 11 बजे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मना रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा दौरे पर हैं। वे पौंडा में आयोजित एक कार्य में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्ट टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला रिकवर तीरंदाजी टीम ने आज विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता। अगले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, लेकर मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार के साथ ही मैं नमन करती हूं हमारे प्रिय बापू को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी 157वीं जयंती हम इस वर्ष मना रहे हैं। और बापू जो हैं, जिन्हें जब भी याद किया जाए तो वे हमें एक नया पाठ पढ़ाते हैं। उनका जीवन जो है हम सभी के लिए एक आदर्श है। और सिर्फ बापू ही नहीं, आज हम नमन करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी। उनकी भी जयंती आज के दिन ही मनाई जाती है। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं बापू को याद करते हुए।

ग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। अगर बापू की बात करें तो एज अ किरदार, जी हाँ, एज अ कैरेक्टर वो फिल्मों में भी नजर आए हैं। उन फिल्मों की बात करें तो गांधी, जो कि 1982 में आई थी, जहां बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया था। उसके बाद आई 1996 में द मेकिंग ऑफ द महात्मा, जिसे श्याम बेनेगल ने जो है डायरेक्ट किया था, और ये फिल्म भी अपने आप में बेहद प्रसिद्ध रही और बापू का किरदार यहाँ पर जो है हमें नजर आता है। उसके बाद 2000 में आई फिल्म हे राम और लगे रहो मुन्ना भाई, जिसका ये गाना आपने सुना, और गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न ऑडियंस के कंसेप्ट में देखा जाए तो उन्हें टारगेट करते हुए आपको इस फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा और वो सब जो कि एक आइडल फिल्म में चाहिए, क्योंकि बापू की जब बात होती है तो हमारे प्रिय बापू अपने आप में एक आदर्श हैं हम सभी के जीवन के लिए। गांधी माय फादर 2007 में आई, और उसके बाद गांधी गोट से एक युद्ध 2023 में राजकुमार संतोषी की भी एक फिल्म आई। और अगर आज के दिन हम जिक्र करें लाल बहादुर शास्त्री जी का, जी हाँ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो अपनी सादगी, ईमानदारी और जय जवान जय किसान के नारे के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आज के दिन हमारी जो बॉलीवुड हस्तियाँ हैं जिनका कि आज बर्थडे आता है उन्हें भी जान लेते हैं। आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं आशा पारेख, जी हाँ, 60-70 के दशक में जिन्हें जुबली गर्ल और हिट गर्ल कहा जाता था, वे भी आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। माँ एक फिल्म आई थी 1952 में, जहां पर कि 10 वर्ष की थी आशा, और यहां से उन्होंने बिमल राय के इस फिल्म से डेब्यू किया था। और इसके बाद बाप बेटी, जो कि 1954 में आई, इसमें भी आशा पारेख नजर आती हैं। और बतौर अगर नायिका देखा जाए तो वो नजर आती हैं दिल देके देखो फिल्म में, जी हाँ, फिल्म सुपरहिट रही और रातों रात स्टार बन गई आशा। आशा पारेख इसके बाद कई फिल्मों में नजर आई और उन्होंने अपने करियर में 85 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। दिल देखे देखो, जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कटी पतंग, कारवा, कारवा जी हाँ, बेहद सदाबहार फिल्म रही। चलिए इसी का गाना एक मैं आपके लिए प्ले करती हूँ और फिर अपनी बातों को लेकर चलेंगे आगे। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स। आप जानते हैं इतना ही नहीं, पद्मश्री, फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और अन्य कई अवार्ड से सम्मानित हैं आशा पारेख। आशा जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ दिल्ली के चाशनी कुरेश रेनबो 102.6 से। आज यानी 2 अक्टूबर के दिन कोई और भी हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये कौन है? ये जनाब हैं के मेनन। जी हाँ, जिन्हें की हिंदी फिल्मों और ओटीटी पर अपनी बेहतरीन अदायगी के लिए हम सभी पहचानते हैं, कृष्ण कुमार मेनन उर्फ के मेनन। जी हाँ, ये वैसे तो महाराष्ट्र में ये पले बढ़े और उसके बाद मुंबई आ गए। फिजिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन की और मार्केटिंग, एमबीए इन मार्केटिंग, और उसके बाद ये शुरुआत करते हैं अपने थिएटर और फिल्मी करियर की। और देखिए, फिल्मों का नाम ले तो ब्लैक फ्राइडे, सरकार, शौर्य, गुलाल, हैदर, बेबी, ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें कि आप इनकी जो भी एक्टिंग है उसके लिए याद करते हैं। आपके सामने के मेनन आ जाते हैं। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है और ओटीटी पर आई कुछ फिल्मों में स्पेशल ऑप्स, वर्जी, द रेलवे मैन, सिटाडेल, हनी बनी, ऐसी कुछ फिल्में जहां की ये गहरी छाप छोड़ते हैं। हिना खान भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। जी हाँ, अक्षरा, ये रिश्ता क्या क्या कहलाता है कि अक्षरा भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। हम अपने दोनों ही सेलिब्रिटीज को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। और मेरा फेवरेट जहाँ के मैंने अपनी ही धुन में नाच रहे हैं। जी हाँ, सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं।

0: सुनते रहिए प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स 102.6 रेनबो से। बस मैं यूं गई और यूं आई आपके लिए। अभी मेरे पास बहुत सी खबरें हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन। तो लीजिए अगली बात करते हैं दी वन की। जी हां, आपको फॉरेस्ट लेके चलते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म जो है 25 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देती है। फिल्म है द वन और जानते हैं इस फिल्म को लेकर बिहार में तो एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म में छठी मैया के दृश्य को, उस कहानी को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, परोसा गया है। और ऐसे में दर्शक देखिए, जब इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने पहुंचे हैं तो चप्पल उतार कर सिनेमा घरों में बैठे हैं और वहां ठेकुआ बांटकर जो है इस खुशी को जाहिर भी कर रहे हैं। सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस के में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने को है। जी हाँ, 1 हफ्ता हो चुका है फिल्म को और इस फिल्म ने जो है 4 करोड़ का बिजनेस जो है वो शुरुआती दिन में करा और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखिए 53 करोड़ का बिजनेस कर गई है। और अभी क्योंकि अब वीकेंड, एक लॉन्ग वीकेंड आया है, गांधी जयंती शनिवार रविवार आया, तो देखा जा रहा है कि फिल्म की कमाई में भी उछाल हो सकता है। और बजट की बात करें तो फिल्म बस लगभग अपना बजट निकालने को तैयार है और फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ का लगा था, ऐसे मेकर्स कहते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड कमाई की भी देखा जाए तो इन 6-7 दिनों में वर्ल्ड वाइड भी जो कमाई है ना, वो भी कुछ 60 करोड़ को छूती नजर आ रही है। फिल्म में जी हाँ, जैसे मैंने कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तमन्ना भाटिया है और इसके अलावा और भी कई बड़े चेहरे फिल्म में नजर आ रहे हैं। इनका नाम ले लेते हैं तो इन नामों को शामिल भी करते हैं। इस फिल्म में काफी लोग नजर आ रहे हैं और जो दर्शक हैं जब इस फिल्म को देखने पहुंचे हैं तो वो कहते हैं हमें अपना जैसा लग रहा है, मतलब हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस फिल्म को देखते हुए। तो चलिए सबसे पहले मैं इस फिल्म का एक गाना जो आपके लिए ठुमक ठुमक के इंतजार कर रहा है वो प्ले कर देती हूँ और फिल्म से जुड़ी और बातें भी करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मैंने कहा कि फिल्म की बात करेंगे, द वन फॉरेस्ट, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, श्वेता तिवारी, अनुप सोनी, सुनील ग्रोवर, अजय राजू, मनीष पॉल, दुर्गेश कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और फिल्म के ट्रेलर को भी पहले काफ़ी प्यार मिला और प्री बुकिंग भी काफ़ी अच्छी चली और उसके बाद कमाई तो फिल्म कर ही रही है। और आप कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं जिनमें हम यही सब बात करते हैं, बॉलीवुड ट्रेल्स। और इसी प्रोग्राम को आप रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों पर भी सुन सकते हैं। फिल्म में आगे बात, इस प्रोग्राम में आगे बात करेंगे उन फिल्मों की जो कि आज दस्तक दे रही हैं और आपके लिए मौका होगा बॉलीवुड सरताज बनने का। सुनते रहिए रेनबो,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: और लीजिए अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं 11:30 एंड ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार इन द लास्ट 1 आवर विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ आर्चरी, जहाँ मेन्स रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो हमारी भारत की जिन्होंने प्रवेश किया था, अब उन्होंने वहाँ पर भी जीत दर्ज करके फाइनल्स में गोल्ड मेडल के लिए अपने लिए जगह बना ली है। जी हाँ, बता दें दैट इंडिया हैव स्टॉर्म्ड इनटू द मेंस रिकर्व टीम फाइनल्स आफ्टर डिफीटिंग ईरान 6-0 इन अ डोमिनेंट सेमीफाइनल। ईरान स्टार्टेड द थर्ड सेट स्ट्रॉन्गली विद 29-30 बट इंडिया रिस्पोंडेड विद अ सुपर्ब 56 टू एज द सेट 56-55। नीरज चौहान हिट अ 10, यशदीप बोगे एडेड अ 9 एंड धीरज बम्मदेवारा सील्ड द विक्ट्री विद अ क्रूशियल 9। इंडिया हैड अर्लियर वन द फर्स्ट टू सेट्स 58-53 एंड 56-53 टू टेक अ कमांडिंग 4-0 लीड एंड thereby the Indian trio of Dheeraj, Neeraj and Yashdeep will now face South Korea in the gold medal match। और आपको बता दें कि क्योंकि गोल्ड मेडल में अब मेंस रिकर्व टीम सेमीफाइनल जो खेल के अभी प्रवेश करी है, आज दिन की शुरुआत भी आर्चरी की टीम ने हमारे लिए बहुत अच्छे से की थी, वहीं महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया था और रिकर्व मिक्स टीम के सेमीफाइनल्स के बाद भी हमने देखा था कि किस तरह से भारत ने उसमें भी हमें सिल्वर मेडल दिलवाया जो फाइनल्स हुए थे। सो क्योंकि हमारी महिला रिकर्व आर्चरी टीम ने आज हमें स्वर्ण पदक दिलवाया है, तो चलिए आइए सुनते हैं कि कुमकुम मोहत ने आज क्या कहा।
6: उसमें उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी और मेडल तो आएगा, 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
7: बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है कि इस स्पर्धा में, रिकर्व की स्पर्धा में आज 3 मुकाबले हैं साक्षी, और तीनों में पदक हैं। एक स्वर्ण आ चुका, एक रजत आ गया और एक स्वर्ण ही आना चाहिए। और भी एक और पदक जिसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र किया था अपनी पिछली अपडेट में, सेलिंग में डिंगी में ILCA 7 क्लास जो होती है उसकी डिंगी, उसमें नेत्रा कुमानन ने फाइनल रेस 1 और जो 2 आज थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल थाईलैंड की सोफिया मॉन्टगोमरी को मिला और सिल्वर पदक जो है वो सिंगापुर के पास किया। उनका जो समापन था वो 14 अंक कुल थे, नेट भी 14 अंक थे, हांगकांग की स्टेफनी नॉर्टन के भी 14 ही अंक थे, लेकिन किस्मत वाली रही यहाँ पर नेत्रा इसलिए क्योंकि रिकैलकुलेशन जब होता है अगर बराबरी होने पर उसमें उनको एक पेनल्टी कम मिली थी और ज़्यादा थी स्टेफनी की, तो यानी ये कांस्य पदक भारत के पास और आया।
5: जी, रेसलिंग की दुनिया से भी आज बहुत अच्छी खबर आई है। सबसे पहली अच्छी खबर जो हमने आपको दी थी दिन में थोड़ी देर पहले, वो ये है कि इंडिया की लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाओ जी इन द वुमेन 75 किलोग्राम कैटेगरी एट द एशियन बाउट। लवलीना मेंटेन्ड हर कंपोज्ड अप्रोच थ्रू आउट द बाउट, अलाउइंग बाओ टू कम फॉरवर्ड वाइल रिस्पॉन्डिंग विद इफेक्टिव काउंटर पंचेस। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट 2 राउंड्स द इंडियन बॉक्सर कंट्रोल द थर्ड राउंड एज वेल टू कंप्लीट अ डोमिनेंट विक्ट्री बाय गोइंग अहेड एंड विनिंग द बाउट बाय अ यूनानिमस 5-0 डिसीजन। आज उनका जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो लवलीना बोरगोहेन को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ इट कुडंट हैव बिकम अ बेटर डे फॉर हर बिकॉज द बर्थडे जस्ट बिकेम इवन स्वीटर एंड परफेक्ट फॉर लवलीना बोरगोहेन हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकेंड इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी MC मैरीकॉम। द 29-year-old इंडियन डिफीटेड चाइना ज़ियोबा 5-0 इन अ क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट।
7: बिल्कुल, और ये जो लवलीना है इसकी जितनी तारीफ करें, सुनहरा उपहार उन्हें आज मिला है। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड जिस तरह से उन्होंने खेला था,

0: रेसलर से बॉक्सिंग की थी, लगातार कॉम्बिनेशन पंचेस लगाए थे, वो तो देखने ही वाले थे। हम बात सेलिंग की कर रहे थे, सेलिंग में और लोग भी हैं। विष्णु सरवनन इस समय मेंडिंगी उसमें कांस्य पदक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर आए हैं। और जो विंड सर्फिंग है, आज वैसे पूरे जापान में हवाएं बहुत चल रही, खासतौर से जहाँ जहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, आर्चरी में हवाओं का बहुत कहर रहा है। विंड सर्फिंग में काव्या कोयलो सातवें स्थान पर हैं ओपनिंग सीरीज में, सीरीज दसवीं की रेस के बाद। और मिक्स्ड सर्फिंग में श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार वो पाँचवें स्थान पर बने हैं। गोल्फ में बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि महिलाओं के स्ट्रोक प्ले में प्रवणी उर्स जो हैं वो पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, और दीक्षा डागर और अदिति अशोक के साथ जो भारतीय टीम है वो दूसरे स्थान पर इस समय चल रही है। बस ये बढ़त बनाए रखें। और पुरुषों की बात करें तो वीर अलावत 10वें स्थान पर हैं, सप्तक तलवार 11वें, और पुरुषों की जो टीम है उसमें भारत जो है इस समय छठे स्थान पर चल रहा है। तो गोल्फ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं
1: जी। एंड अ वेरी क्विक अपडेट विच वी लेफ्ट यू इन द लास्ट अपडेट आपके साथ, जब हमने छोड़ा था पिछले अपडेट में, कि भारत के सुजीत खलकर पुल्ड ऑफ अ स्टनिंग अपसेट डिफीटिंग रेनिंग ओलंपिक चैंपियन एंड होम फेवरेट कोटारो क्यू का इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल, और इसके साथ अब वो गोल्ड मेडल के लिए 65 किलोग्राम फाइनल कैटेगरी में कम्पीट करेंगे आज दोपहर 3:45 टू बी मोर स्पेसिफिक 2:46 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द न्यूज हैज बिकम ऑफिशियल। सुजीत 1:33 ऑन क्राइटेरिया scoring the decisive final point after trailing 0-2 in the opening period. The Indian wrestler fought back brilliantly in the second period, scoring 3 points to seal a memorable victory. Here's rooting for Sujit.
0: और उनका final जो होना है वो तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीप के साथ होना है, तो उम्मीद करें एक स्वर्ण पदक और भारत की राह देख रहा है।
1: Right, and a quick update also from wrestling to just finish this off. India's Dipanshi has kept her medal hopes alive after dominating Cambodia's Deet Samnang in the women's 50 kilogram repercharge. She secured a 10-0 victory by technical superiority to book a place in the bronze medal bout. और अब आपको भारत की दीपांशी भी आज दोपहर 3:58 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर खेलते हुए अपने बाउट में नजर आएंगी, होपफुली ऑल्सो गेटिंग अस अ पोडियम फिनिश इन दैट। दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ अनुपम पाठक। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, दोबारा एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 12:30।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम 2026 की अपडेट्स को, सुनते रहिए रेनबो।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरिसर्जन। और जिसका आप सभी को रहता है इंतजार, वो सवाल जिससे आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। चलिए पहले बात करते हैं कि एक बड़ी खबर आई है, वो खबर है स्त्री 3 को लेके। जी हाँ, स्त्री 1-2 देखने के बाद उस हॉरर कॉमेडी फिल्म का हम सभी इंतजार कर रहे थे। तो अब मेकर्स की तरफ से एक बड़ी खबर आई है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम जो है, वो निर्देशक अमर कौशिक बताते हैं कि स्क्रिप्टिंग का काम पूरा हो गया है स्त्री 3 का। और ये फिल्म कब रिलीज होगी? फिल्म की रिलीज डेट 2028, या तो ये 15 अगस्त को रिलीज की जाएगी या फिर क्रिसमस के मौके पर। तो ये काफ़ी बातें जो हैं सामने आ चुकी हैं। अमर कौशिक की अगली फिल्म की भी बात करें तो स्त्री 3 से पहले निर्देशक अमर कौशिक विक्की कौशल स्टारर फिल्म महाअवतार का काम पूरा कर रहे हैं, जो कि भगवान परशुराम की कहानी पर आधारित है। और जैसे ही फिल्म महाअवतार का काम पूरा होगा, स्त्री 3 की शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी और फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हो जाएगी। इस फिल्म की बात करें तो सवाल सुन ली।

हम देख चुके हैं यहाँ पर बिक्की जी। बिक्की जी कौन है? तो कौन है ये बिक्की जी? तो अगर आप सवाल समझ गए हैं कि कौन है बिक्की जी, तो बताइए ये किरदार कौन निभाते हैं फिल्म स्त्री 1 और 2 में। भेज दीजिए अपना जवाब मेरे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। टिल देन चलिए कमरिया हिलाते हैं बिक्की जी के साथ।

जी हाँ, आज भी अगर आप सोच रहे हैं कि क्या खास है मेरे लिए बड़े पर्दे पर, तो बहुत खास है। और ये प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही है कि अगर आज 2 अक्टूबर है तो क्यों ना दृश्यम देखने पहुंच जाएं। तो चलिए पहले एक क्विक रीकैप लेते हैं, फिल्म में होता क्या है। दृश्यम 1 और 2 हमने देखी, तो यहाँ हमें विजय सालगांवकर नजर आते हैं जो गोवा में एक केबल ऑपरेटर हैं, लेकिन उन्हें फिल्मों से बड़ा प्यार है। अब अनजाने में यहाँ पर IG मीरा देशमुख के बेटे सैम का जो है मर्डर हो जाता है, क्योंकि वो उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ वीडियोस हैं यहाँ पर। और फिर शुरुआत होती है 2 अक्टूबर की कहानी की, जहाँ पर कि विजय जो है अपने परिवार को ये लाइन याद करा देता है, जो कि हम सबको भी कहीं ना कहीं याद हो गई है कि वे सब 2 अक्टूबर को पणजी गए थे, सत्संग में शामिल हुए, पाव भाजी खाई और फिर फिल्म देखी, 3 अक्टूबर को वापस आ गए। और इसके अकॉर्डिंग वो सारे सबूत वगैरह भी जो है प्लॉट कर देते हैं, सब कुछ सेट चल रहा है। और अब जो लाश है ना, उसे कहाँ अपनाया जाता है, पास में ही एक न्यू पुलिस स्टेशन बन रहा है, वहां पर जो है विजय सैम की लाश को दफना भी दिया जाता है। यहां पर दृश्यम 1 की स्टोरी एंड होती है और 6 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। दृश्यम 2 आती है, अब विजय काफी सक्सेसफुल हो चुका है, एक अपना खुद का सिनेमा हॉल भी है, लेकिन वही IG मीरा देशमुख उर्फ तबू जो है उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई, क्योंकि उन्हें ना डाउट है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब जो मास्टर प्लान है वो विजय पहले से ही जो है फॉरेंसिक वाले एक पर्सन के साथ मिलकर वो सब भी प्लॉटिंग प्लान

कर लेता है। तो जो डीएनए रिपोर्ट्स है ना, उसमें जो कंकाल मिलता है वो भी सैम का नहीं साबित होता है। तो अब फाइनल दृश्यम 3 आज रिलीज हो रही है और ये कंक्लूजन पार्ट रहने वाला है, जिसमें कि फैंस ने अपना बहुत प्यार दिखाते हुए प्री रिलीज में भी काफी बुकिंग की है। अब देखिए, अगर प्री रिलीज की बात ही करें तो कहते हैं प्री रिलीज में भी 35 करोड़ का बिजनेस तो मिल चुका है। और अगर आज देखें तो अब 3 दिन आगे हमारे पास फुल एंड फाइनल है, जहां पर कि हम देखने को तैयार हैं फिल्म, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है। तो आप भी अगर इंतजार में है कि गोवा पणजी में जाकर इन्होंने सत्संग देखा और उसके बाद क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या, क्या, क्या? खैर, ये मेरा सवाल नहीं है, ये तो हमें याद ही है। सवाल तो ये है कि आपको मुझे बताना है स्त्री 1 और 2 में विकी जी कौन थे। कुछ और फिल्में जो कि पूरे अक्टूबर हमें हंसाने गुदगुदाने वाली और एंटरटेन करने वाली हैं, इनमें नई नवेली, प्रेम कीटाणु और उड़ता तीर, प्रहार और तुम मेरे हो, पहला प्यार दूसरी बार, काफ़ी और फिल्में भी हैं, इन पर भी बात करते हैं। लेकिन फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल। तो सबसे पहले सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, बताइए मुझे फिल्म स्त्री 1 और 2 में विकी जी के किरदार में कौन नजर आता है। सही जवाब आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, नंबर आप जानते हैं, फिर सुन लीजिए 9868107070। तो चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर रिलीज की। तो हमने दृश्यम 3 पर तो बात कर ली है और आज इसी फिल्म के क्लैश में एक और फिल्म रिलीज हो है प्रेम कीटाणु। और इसके बाद नेक्स्ट वीक की बात करें, सेकंड वीक की बात करें अक्टूबर के, तो आयुष्मान खुराना की उड़ता तीर फिल्म का नाम है और उड़ता तीर रिलीज होगी। इसके बाद प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम, ये राजकुमार राव की एक और फिल्म है जो कि 15 अक्टूबर को रिलीज होनी डिसाइड हुई है। नई नवेली आएगी फिल्म 16 अक्टूबर को जो यहाँ दशहरे के दिन, और उसके बाद तुम मेरे हो 23 अक्टूबर को रिलीज होनी है। पहला प्यार दूसरी बार 22 अक्टूबर को रिलीज होनी है। इसी फिल्म का अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना बेहद पसंद भी किया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं यामी गौतम की हॉरर कॉमेडी फिल्म नई नवेली की। तो ये फिल्म जो है दशहरे पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो ट्रेलर ही पहले तो इतना मजेदार है, पूरा फिल्म का जो भार है ना वो यामी के कंधों पर है और यामी इतनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर। जी अब भाभी डायन का किरदार है लेकिन दर्शकों को हंसाने गुदगुदाने का पूरा इंतजाम है फिल्म में। देखिए यामी जो है मोहिनी का किरदार यहाँ पर निभाती है और फिल्म की कहानी एक आदर्श बहू एक अतरंगी परिवार और एक ऐसे राज की कहानी है जो घर की दहलीज पर आकर पहुंच चुका है, दस्तक दी है। बालाजी मोहन के निर्देशन में फिल्म बनी है, हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने फिल्म को लिखा है। और अब बात करें फिल्म की कहानी की तो मेरठ में ये फिल्म जो है, मेरठ की कहानी है ये फिल्म। ट्रेलर से जो समझ आया वो ये है कि अवस्थी परिवार जो है उनके घर एक नई बहू आई है मोहिनी और ये है डायन भाभी। अब पूरी कहानी आपको हंसाते गुदगुदाते एक ऐसे सवाल पर ले आती है, एक ऐसे सीन पर ले आती है जहां आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वाकई, अब मैं यहां पे सस्पेंस तो नहीं खोलूंगी, ये वाकई सच है। अब फिल्म को खुद देखिएगा और बताइएगा कि क्या आप हंसी मजाक के बीच, जज्बातों के बीच उस बात को समझ पाए। चलिए हम एक और गाना सुन लेते हैं फिलहाल।

0: चलिए इसी बीच हमें कौन मिल गया है, हमें मिल गए हैं हमारी आज की बॉलीवुड सरताज, और ये कौन है आइए इन्हीं से जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को परिचय दीजिए।
1: हाँ जी,
0: आप अपना परिचय दीजिए।
1: हाँ जी, मैं रोहतक से विजय धर्म भाटिया बोल रही हूँ।
0: अरे वाह धर्म भाटिया, आपके मैसेजेस तो हमें बहुत मिलते हैं। चलिए आज आपसे बात भी हो रही है, तो सबसे पहले आपसे जवाब जानना चाहेंगे, एक और दो में कौन है विक्की जी?
1: ये राजकुमार राव जी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि हर काम में रेगुलर रहें, चाहे ये एफएम सुनने में है या घर के काम में है या मिलने जुलने में है। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी दोनों ही बहुत जरूरी है।
0: थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी इस खिलखिलाती आवाज को सुनकर, और आपके इस प्यार के लिए भी थैंक यू सो मच।
1: बहुत ही अच्छा लगता है सबसे
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।
1: थैंक यू जी, कांग्रेचुलेशन आपको भी।
0: तो हमारी बॉलीवुड सरताज बनती हैं आज मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से, और आप सभी बिल्कुल जिनका की सही जवाब हमें मिला है।

मुखी परिवार सोनीपत से, सुदर्शन अनीता सिमरन सही जवाब भेज रहे हैं, उमेश कुमार खयाला से, सीमा भल्ला जी मेरठ से, और फरीद का सही जवाब सहारनपुर से आया है, अफरोज शेख बिहार से भेज रहे हैं सही जवाब, दयालपुर दिल्ली से, कृष्ण कुमार मिश्र जी का भी सही जवाब मिला है, नीतीश कुमार जो है झारखंड से, राजकुमार राव जो है मध्य प्रदेश, राजकुमार राव सही जवाब हमें भेज रहे हैं, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, मोहम्मद इम्तियाज जी दिल्ली से, सुखलाल बालाजी हैं वेस्ट बंगाल से, राजकुमार जी महाराष्ट्र से, नीतिका बेलगांव से हमें सही जवाब भेज रही हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, दीपा का बठिंडा से सही जवाब आया है, और हरिनगर दिल्ली से भी जो है एक सही जवाब पूजा और कोमल का हमें मिला है, राज मेहरा बठिंडा से, और मलिक जी हैं सलीम मलिक मेरठ से सही जवाब भेज रहे हैं, तरुण कोहली मेरठ से, और फहीम जी हैं शिव बिहार दिल्ली से। तो लिसनर सुनते रहिए, अगला प्रोग्राम होगा आपके लिए प्ले इट कूल, हिमानी लेकर आएंगी और न्यूज के उस पार, तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त रिजन को दीजिए इजाजत।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
6: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
5: पताका चाय, गजब का स्वाद।
7: वेलकम बैक, this is Akashwani Rainbow and this, the ad that I just played, is one thing which definitely never makes to, I mean never fails to make me smile. What? The ad? No, the product in the ad. Chai. Complete chai person. Summer, winter, I just have to have my cup of chai. So what are the things that make you smile? And I am waiting to hear from you. And in the meantime, that I once again begin reading your messages. Roland, you requested for Aqua, and this is the track that I've chosen for you.

0: That was Sting with I Wrote Your Name Upon My Heart. And you're with us on Akashwani Rainbow. The show's called Play It Cool. It's time for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi, Nagoya.
2: Hello and a very warm welcome to all our lovely listeners who are tuning in right now at 12:30 PM on Akashvani. हम लेकर आ गए आपके लिए ongoing Asian Games 2026 के live updates. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक. तो सबसे पहले the big news of the day coming from the world of archery. आज हमारे archers ने भारत का दिल खुश कर दिया. जी हाँ, हमें देखा कि men's recurve team final में भारत ने silver medal अपने नाम कर लिया. जी हाँ, India won the silver in the men's recurve team event after South Korea clinched the gold medal with a 2-0 set win in the final phase, completing a 5-1 victory overall. India started the third set strongly with Neeraj Chauhan hitting a 10, followed by 9s from Yashdeep Bogey and Dheeraj Bommadevara. However, Neeraj's 7 in the second rotation hurt India's chances as they finished the set on 54. South Korea needed 27 from their final 3 arrows to win the gold. Lee Woo-seok hit a 10, Kim Jae-deok a 9, and Kim Woo-jin sealed the title with a 9 as the Koreans secured back-to-back Asian gold medals in the event. Anupam.
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर. कुल मिलाकर हम इसको ज़रूर कहेंगे क्योंकि आर्चरी में अगर हम पिछले प्रदर्शनों को देखते हैं तो इस बार बहुत पिछले इसके पहले रिकर्व में कुल मिलाकर एशियन गेम्स में 3 पदक आए थे. इस बार आज एक दिन में 3 पदक आए हैं, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर. हालांकि ये जो पहला सेट था उसकी शुरुआत बहुत अच्छी भारत ने की थी, दोनों बराबर बराबर थे और एकदम आखिरी एरो पर जाकर ये स्थिति आई थी कि मामला बराबरी पर हुआ वरना भारत जीतता. उसको अंक बराबर रहे. दूसरे सेट में यशदीप ने एक एरो गड़बड़ किया और जैसा आपने बताया आखिरी सेट में नीरज का वो तीर ऐसा भटका. लेकिन आज के लिए ये बात ज़रूर कही जाएगी, जब हवा थोड़ी सी आज तेज़ चल रही थी लगातार, तो हवा के साथ अमूमन लोगों की शिकायत आर्चर्स की रहती है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है. लेकिन प्रदर्शन और अंतिम निर्णय जो आता है वही आपको पदक तालिका पर ले जाता है, पोडियम पर ले जाता है. लेकिन फिर भी रजत बहुत स्वागत योग्य बात है. और इसके अलावा हम बात करें, अभी 2 बॉक्सर्स हमारे उतरने हैं, 2 स्वर्ण पदक की उम्मीद है. उसके अलावा अभी कुश्ती में फाइनल खेलना है नीरज को और कांस्य पदक की भी उम्मीद है दीपांशी से. मैं आपको ताज़ा जानकारी बता दूं, इस समय केनो में कयाक क्रॉस में शिखा चौहान 9वें स्थान पर रहकर क्वालिफाई की थी. हमने बताया था क्वार्टर फाइनल में वो 3रे स्थान पर आई, क्वालिफाई नहीं कर पाई. प्रद्युम्न सिंह राठौर ने क्वालिफाई किया था लेकिन क्वार्टर फाइनल इस बीच हो चुका है, उसमें वो भी क्वालिफाई नहीं कर सके और 4थे स्थान पर रहे, जबकि टॉप पहले जो 2 स्थान पर आते हैं वो क्वालिफाई करते हैं.
2: जी, और डिंगी की दुनिया से भी आपको कुछ लेटेस्ट खबर दे दे कि आज इंडियाज नेत्रा कुमानन सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स डिंगी सेलिंग इवेंट आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक इन द फाइनल रेसेस. आफ्टर अ डिफिकल्ट ओपनिंग रेस नेत्रा बाउंस्ड बैक ब्रिलियंटली टू विन द सेकेंड फाइनल रेस. शी फिनिश लेवल ऑन पॉइंट्स विद हांगकॉन्ग स्टेफनी लुइस नॉर्टन, बट नेत्रा सुपीरियर हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉर्टन सॉ हर क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल. एंड जस्ट वन क्विक गुड न्यूज दैट वी ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर एंड हैड शेयर इन द लास्ट अपडेट की बॉक्सिंग की दुनिया से आज हमें गोल्ड मेडल आ गया. जी हाँ, द बर्थडे गर्ल इंडियाज लवलीना बोरगोहेन बैग्ड द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग चाइनाज बाओ ज़ी इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम गोल्ड मेडल बाउट एट द एशियन गेम्स एंड देयरबाय शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली सेकेंड इंडियन वुमन बॉक्सर टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आफ्टर द लेजेंडरी MC मैरीकॉम. व्हाट अ फीट, व्हाट एन अचीवमेंट अनुपम.
3: बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात. और जो आपने बात की साक्षी नेत्रा कुमारन की, सेलिंग में भारत गाहे बगाहे पदक लाता रहा है. नेत्रा कुमारन तमिलनाडु से आती हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, 15 वर्ष की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी.

0: मजे की बात क्या ना, जो बड़े लोगों के साथ होता है, कई खेल खेलती थी, टेनिस खेलती थी, स्केटिंग खेलती थी और भरतनाट्यम की डांसर है। इसके बाद जब उनके ने फाइनल कर लिया कि नहीं मुझे अब सेलिंग ही करनी है, तो स्पेन में ट्रेनिंग की है, ओलंपिक में खेल चुकी हैं भारत की ओर से, तो यकीनन उनका ये जो कांस्य पदक है बहुत हमारे लिए बहुत अच्छे चमकते दमकते रंग का पदक है।
1: इंडीड। एंड सेपेक्टक्रो की दुनिया से भी आपको क्विक अपडेट दे दें कि ग्रुप ए के मैच ऑफ द सेपेक्टक्रो वुमेन्स क्वाड्रेंट थाईलैंड एब्सोल्युटली डेसिमेटेड एंड फिनिश्ड इंडिया। दे टुक द सेकंड सेट बाय मार्जिन ऑफ 15-4 एज दे वन द मैच इन स्ट्रेट सेट्स। फर्स्ट इनिशियली वी ऑल्सो सॉ दैट इंडियंस वर ड्राउन 13-15 बाय थाईलैंड इन द फर्स्ट सेट एज दे लॉस्ट इट अर्लियर। इंडिया दस हैव बोर्ड आउट ऑफ द इवेंट आफ्टर लूजिंग ऑल ऑफ देयर ग्रुप गेम्स। तो सेपेक्टक्रो के अंदर भारत का सफर यहाँ पर आकर समाप्त तो हो गया।
0: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा क्षण है, अविस्मरणीय, जो लोग भी इसको वहां पर उपस्थित हैं जिनको जानकारी मिल रही। लवलीना बोरगोहेन के गले में स्वर्ण पदक इस समय डाला जा रहा है, पदक सेरेमनी जो होती है वो हो रही है, भारत का राष्ट्रगान की जो धुन है बस वो गूंजने वाली है। आपने देश का नाम रोशन किया है लवलीना, और आपको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। साइकिलिंग का ताज़ा जो समाचार है वो ये है, डेविड बेकहम जो रिपेचेस में होकर पहुँच गए थे, क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने मेंस पुरुषों की कालीन स्पर्धा में साइकिलिंग में, वो पांचवें स्थान पर आए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और इस समय पुरुषों की मेडिसिन प्रतियोगिता जो है स्पर्धा वो चल रही है।
1: जी, अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज ऑन द टेलीविजन एज वी विटनेस द हिस्टोरिक गोल बाय लवलीना बोरगोहेन जस्ट अवेटिंग मोमेंट्स अवे फ्रॉम द नेशनल एंथम अपराइट आवर लव।
0: साक्षी, जन्मदिन पे इससे बेहतर तोहफा चाहोगी क्या?
1: बिल्कुल भी नहीं, उससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है अनुपम, कि आपको आपके जन्मदिन पर मौका मिले कि आप अपने देश को और अपने देशवासियों को, अपने परिवार के जनों को गौरवान्वित महसूस करवा सके थ्रू योर अकम्पलिशमेंट्स। व्हाट बेटर देन दैट। ऑन दैट नोट, इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक फॉर नाउ सेइंग गुड बाय। विल बी जॉइनिंग यू राइट बैक एट 1:30 PM विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
0: नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप और दोपहर के एक बज चुके हैं। लीजिए सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर विजयघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत को स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपद पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय राजीव चौक, सेवा तीर्थ मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बाराखंबा रोड शामिल है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। जापान एशियाई खेलों में मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर पहुंचा। अगले वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरियर सृजन और एक बार फिर हूं आपके साथ लेकर आई हूं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। इस प्रोग्राम के लिए आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो इसके लिए नंबर बता दूं, ये है 9686070709868107070। गाना बताइए, गाना सुनने की कोई खास वजह है वो बताइए, और हाँ फिल्म का नाम बता सकते हैं, अपना नाम भी जरूर बताइएगा। तो लीजिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का आश किंग शिल्पा राव की आवाज में इस गाने के साथ।

देखिए दोस्तों, खुदा की एक खूबसूरत मेहरबानी ये भी है कि उसने हमें खूबसूरत रिश्तों के साथ बुना है। ये रिश्ते जो कि हमारे हमारे अपनों से होते हैं, ये वाकई ही कितने खास होते हैं ना। यकीन मानिए, इन रिश्तों में चाहे कोई नाम हो ना हो, लेकिन जो एहसास है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अर्पित जो हम कार्य करते हैं, जो हम एक दूसरे का साथ निभाते हैं और जिसके पीछे कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्यार, वो आदर, वो सम्मान कितना खूबसूरत है ना। ये सब तो ये तो खुदा की यकीनन मेहरबानी ही है। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग रेनबो 102.6 से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन। तो आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107077।

इन जीरो पर. अगली रिक्वेस्ट जो गाना मैं प्ले करूंगी वो होगी कनिका राठौर की. कनिका 12 साल की हैं, गाजियाबाद में रहती हैं और एफएम सुनना इन्हें बहुत पसंद है. ये गाना सुनना चाहती हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. तो मुझे लगता है कनिका जितनी आप छोटी हैं ना, आप ही किसी की जिंदगी में बाहर बन के आई होगी. और कनिका कितनी खूबसूरत बात कहती हैं कि अगर आपने मेरा सॉन्ग नहीं प्ले किया तो मैं आपकी शिकायत अपने पापा से कर दूंगी. कनिका डर गई मैं तो आपके पापा से भी. लेकिन दोस्तों ये डर नहीं है, ये होता है प्यार पिता और एक पुत्र या पुत्री के बीच में ये जो रिश्ता है खूबसूरत सा, उसका रिस्पेक्ट. तो चलिए गाना सुनते हैं हम.

0: मेरा वाला सॉन्ग मेरे यानी दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन के साथ रेनबो 102.6 इट्स म्यूजिकली योर्स। और अगला गाना मैंने क्यू कर लिया है रोहित जी का, दिल्ली से हमारे ये लिस्नर हैं रोहित श्रीवास्तव। बट दोस्त थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद आपका आकर ये गाना सुनाती हूँ। ये गाना कौन सा है ये भी बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
3: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
2: पताका चाय, गजब का स्वाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, बैकग्राउंड में जो गाना आप प्लेस सुन रहे हैं, इस गाने की फरमाइश, इस गाने को सुनना चाहा है रोहित श्रीवास्तव जी ने दिल्ली से। और काइट फिल्म का ये गाना है केके की आवाज़, मेरा मन क्यों शोर कर रहा है। और इन्होंने कहा है कि मैं एज अ DJ वाली मैडम बनकर इनका गाना बजा दूँ, तो लीजिए गाना तो आपका मैंने प्ले कर दिया है। बट रोहित, अगर आप मुझे बताते कि ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मुझे और भी अच्छा लगता। आप भी ज़रूर बताइए किसे डेडिकेट करना चाहते हैं आप गाना, या कोई खास वजह, भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

देखिए, दिल बिल्कुल ठीक होता है कभी कभी, और क्योंकि कि सारा अगर देखा जाए कि क्या करना है क्या नहीं है, ये कैलकुलेटिव डिसीजन तो हमारा दिमाग लेता है, लेकिन दिल क्या कहता है, इट मैटर्स। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ सृजन। आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मुझे, नंबर आप जानते हैं, एक बार फिर बता दूँ, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। तो अगला गाना कौन सा है, ये वाला सीमा मेरठ से सुनना चाहती हैं ये गाना, ये मेरा मन, मन मूवी का टाइटल ट्रैक है, आप भी इसे सुनिए, गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और तब तक सोचिए आपको कौन सा गाना सुनना है, क्यों सुनना है, किसी को डेडिकेट करना है, तो बस मुझे बता दीजिए और सुनिए प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में अपना रिक्वेस्ट सॉन्ग।

है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेब

0: OTT app now and watch for free.
1: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं दोस्तों अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में बज रहे हैं दोपहर के 1:30 एंड द गुड न्यूज दैट हैज कम इन द लास्ट 1 आवर नाउ कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिपिक तकरो, जहां पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर कर लिया अपने लिए और अपने देश के लिए। दे लॉस्ट जापान 0-2 इन द थर्ड प्लेस प्ले ऑफ एट द एशियन गेम्स। इंडिया लॉस्ट बोथ द सेट्स 12-15, 13-15 to complete a straight set victory and thereby finish on the podium. हारे तो जरूर भारतीय, लेकिन भारत की टीम यानी, लेकिन क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल मैच था तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत has been able to now finally secure a bronze medal for themselves.
4: क्या बात है। और आज का दिन वैसे भी पदकों के हिसाब से खासा अच्छा रहा है, बल्कि जैसे जैसे एशियन गेम्स अपने समापन की ओर बढ़े हैं हमारे पदकों की संख्या एकदम से बढ़ी है खासी। आज बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक आ चुका है, कुश्ती में 1 स्वर्ण पदक की उम्मीद है, बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदकों की और उम्मीद है। हम अपनी अगली अपडेट्स में बताते रहेंगे। इसके अलावा आर्चरी में 1 स्वर्ण पदक आ चुका है, 2 रजत आ चुके हैं। अभी एक कांस्य की आपने बात की तो ये तो बहुत अच्छा था। और इसके अलावा हाँ, सेलिंग में नेत्रा कुमारन ने एक कांस्य पदक हासिल किया है। इस बीच हम ताज़ा खबर आपको बता दें, साइकिलिंग में जो डेविड बेकहम रिपेचेस से पहुंचे थे उनका सफ़र समाप्त हो गया है और अब वो 7वें से 12वें स्थान के लिए अपनी साइकिल में पैडल में ताकत लगाने का प्रयास करेंगे। पुरुषों के मेडिसिन के मुकाबले भी चल रहे हैं। इस समय भारत 8वें स्थान पर है, जिसमें हर्षवीर सिंह शेखों और विश्वजीत सिंह की जोड़ी है। गोल्फ में बहुत अच्छी खबर है, 3रा राउंड चल रहा है लड़कियों की ओर से है। हमारी जो टीम है प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की 3रे राउंड के बाद 2रे स्थान पर पहुंची हुई है। और महिलाओं के स्ट्रोक प्ले की बात करें तो राउंड 3 में प्रणवी उर्स 1ले स्थान पर इस समय बनी है। बस ये लीड अपनी बनाए रखें, ये दुआ करेगा हर भारतीय प्रेमी।
3: जी, और वुमेन्स स्किफ इवेंट के अंदर इंडिया हैव बीन अवार्डेड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स स्किफ इवेंट विद हर्षिता तोमर एंड शीतल वर्मा मूविंग अप टू द थर्ड प्लेस आफ्टर चाइना वुड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 2 रेसेस। इंडिया हैड इनिशियली फिनिश 4th एट द एंड ऑफ ऑल रेसेस, बट द सबसिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशंस ऑल्टर्ड द स्टैंडिंग्स एंड एलिवेटेड द इंडियन पेयर टू द पोडियम। वहीं रग्बी सेवन्स के अंदर आज भारत ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ मलेशिया को 26-5 से हराकर वुमेन्स रग्बी सेवन पूल ई मैच में जीत हासिल कर ली। भूमिका शुक्ला स्कोर 3 tries while टूडू संध्या रानी एंड कुमारी आरती ऑल्सो क्रॉस द लाइन एज इंडिया सिक्योर्ड अ कंफर्टेबल विक्ट्री।
4: बिल्कुल, और रग्बी सेवन में लड़कियों को अच्छा करते हुए देखना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है, रग्बी सेवन बहुत ज्यादा ताकत वाला, बड़ी स्पीड वाला और कहते हैं ना भिड़ंत वाला खेल है। तो उसमें अगर लड़कियां, पहला मैच तो उन्होंने खासा खराब खेला था, बहुत बुरी तरह हारी थी, लेकिन आज उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और हम आपसे गोल्फ की बात कर रहे थे, पुरुषों में हाल बहुत अच्छा नहीं है। युवराज संधू हैं, वीर अहलावत हैं, सब तक तलवार हैं, 3रा राउंड में भी हो रहा है इस समय। और वीर अहलावत 10वें स्थान पर हैं, सब तक उनके ठीक पीछे 11वें स्थान पर हैं और युवराज संधू जो हैं वो 23वें स्थान पर हैं और जो टीम है वो मिलाकर 6ठे स्थान पर है। तो लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें तो साक्षी सारी निगाहें रहने वाली हैं हॉकी के मैच पे, जहाँ पर 1 स्वर्ण पदक की उम्मीद है। भारत उसमें उतरेगी, भारत की लड़कियाँ उतरेंगी 1 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के लिए। इसके अलावा 2 बाउट्स जो होनी है, ज़बरदस्त बाउट्स होने की संभावना है बॉक्सिंग में। और हरियाणा के हैं दोनों, परवीन हुडा जो हैं वो रोहतक से आती हैं, अंकुश पंघाल जो हैं हिसार से आते हैं, साउथ पा हैं और जो लेफ्ट हुक लगाते हैं ना, तो उसको देखने की बात ही अलग होती है रिंग में। बस देखें अच्छा करें, पहले कबड्डी खेला करते थे, बाद में बॉक्सिंग में आ गए।
3: यस, तो आपको आज देखने को मिलेंगे दोपहर 2:15 से 2 बॉक्सिंग के बाउट्स और रेसलिंग के भी 2 बाउट्स। लेकिन अभी अगर आपको एक और अपडेट दे दे तो टैक्वांडो की दुनिया से है, जहां कशिश मलिक सफर्ड 1-2 डिफीट टू कजाकिस्तान रीता बाक्शीवा इन द मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल टैक्वांडो क्वार्टर फाइनल्स। मलिक्स कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर शी लॉस्ट आउट ऑन द हेड किक काउंट विद द अदर किक मेट्रिक्स रिमेनिंग क्लोजली मैच बिटवीन द 2 कॉम्पिटिटर्स। एंड ऑफ इंडियाज कैंपेन इन दिस स्पोर्ट विद इट। सो कशिश मलिक के इस हार के साथ भारत का टैक्वांडो सफर भी समाप्त हो गया है। एंड अ क्विक

0: ग्लांस थ्रू हाउ द मेडल टेबल नाउ स्टैंड्स, भारत की पोजीशन इस वक्त है छठे स्थान पर इन द मेडल टेबल। हमारे पास कुल मिलाकर अब 72 मेडल हो गए हैं, जिसमें हमारे पास है 12 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज एंड थैंकफुली दिस इज अ मच मोर इम्प्रूव्ड स्पॉट दैट इंडिया प्रेजेंटली होल्ड्स कंपेयर टू वेयर वी वर यस्टरडे ऑन द 8th वन, लेकिन 8वें से छठे पे, और उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे कदमों के साथ ये सफर चौथे तक भी समाप्त हो सके।
1: पिछली बार चौथे पे था, लगभग उसके नजदीक तो हम पहुंच ही सकते हैं, और भी इसमें दीपांशी भी कोशिश कर सकती है, लगभग 4 बजे के आसपास उनकी कुश्ती होगी और सुजीत पर तो सबकी निगाहें होंगी
0: जी। और इसके साथ अब मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, हम आपके साथ दोबारा एक बार दोपहर के 3:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। थैंक यू एंड गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम 2026 की अपडेट्स को, सुनते रहिए रेनबो।

प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूँ आपकी अपनी सृजन। और अगली फरमाइश मिल चुकी है, अगली रिक्वेस्ट मिली है प्रोग्राम के लिए। पुनीत सिंघल हैं ये, अमित सिंघल भी हैं इनके साथ, अमिता सिंघल, पुनीत सिंघल, और ये सुनना चाहते हैं गाना, आप ही सुन लीजिए। श्रेया घोषाल की आवाज़ है और ये गाना वाकई बेहद खूबसूरत है। स्लो मोशन गाने के टाइटल वर्ड्स हैं और गाना, जी हाँ, कौन सी फिल्म से पहचान गए, ये फिल्म है भारत।

ऐसा ही होता है कई बार, हम गाना सोचते नहीं है वो प्ले हो जाता है और फिर हमें स्लोली समझ आता है कि ये तो मेरा भी फेवरेट था, मैं भी यही सुनना चाहती थी। ऐसा डॉली कहती है जो गाना मेरा मन, वो ये भी सुनना चाहती थी। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

रही हैं आप गाना फिल्म आर राजकुमार से साड़ी के फॉल सा, और ये साड़ी का फॉल सुनना चाहा है, ये गाना सुनना चाहा है भगवती ने नई दिल्ली से। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जरूर बताइए। प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है 9868107070।

कई गाने ऐसे हैं जिनके शब्द हमें कुछ याद दिलाते हैं, और जब वो याद आती है ना तो वो झकझोर के जाती है। उन्हें सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या बात है, वो क्या मैसेज है उस गाने के पीछे। इस गाने को सुनना चाहा है अनीता वर्मा ने, द्वारका से हमारी श्रोता हैं। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, आप भी भेज सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट। नंबर है 9868107070। फिल्म है भूतनाथ और इस गाने को गाया है हरिहरन और सुखविंदर ने।

what to do. और ये जवाब कभी कभी हमारा भी होता है. फिलहाल ये जवाब किसका है? मनमोहन सिंह हैं, जो कि इनके साथ साथ और भी हैं, इनका भी नाम ले लेते हैं, सोनम, काव्या, दक्ष, ये सभी यूपी रामपुर मांडवा हसनपुर गांव से हमें सुन रहे हैं. ये गाना ये अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं, सोनम को डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार उनका जवाब यही होता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू.

तो आगे करना क्या है? आगे करना है आपको हमें सुनना है, और कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन सकते हैं? अगला प्रोग्राम होगा आशियाना शालिनी लेकर आएंगी, और प्रोग्राम में आज रेनबो डेस्टिनेशन रहेगा हमारा स्पेशल सेगमेंट, तो आपको कहीं लेकर जाया जाएगा। रेडियो डॉक्टर आप सुन सकते हैं, प्रोग्राम में आज का विषय रहेगा प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर को लेकर। प्रोग्राम का समय रहेगा 3 से 4। अल्फा जेनेट सुन सकते हैं आप 4:02 पर शालिनी के साथ, और आज का सेगमेंट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और उसके ठीक बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटीलाइट। सुनीता शाहबादी इस कार्यक्रम को आप सभी के लिए प्रस्तुत करेंगी। समय होता है कार्यक्रम का 5:02। जी हाँ, एवरी आर आप न्यूज़ सुन सकते हैं। मैसेज मसाला मिक्स रहेगा प्रोग्राम आप सभी के लिए, निखिल वर्मा लेकर आएंगे। टाइम है 6:02 का, और देवश्री लेकर आएंगे आपके लिए फ्राइडे फिएस्टा 7:00, और म्यूजिक मस्ती जारी रहेगी निखिल वर्मा के साथ। समय रहेगा 8:00 का आपकी याद आती रही, और रंगे महफिल विकास कौशिक आपके लिए सजाने वाले हैं। फिलहाल वक्त तो है कि मैं आपसे टटा बाय बाय कह दूं, और इस आर का लास्ट सॉन्ग मैंने क्यों कर लिया है तो पहले ये गाना बता दूं कौन सा है। ये गाना है केके की आवाज में सच कह रहा है दीवाना रहना है तेरे दिल में। इस गाने को सुनना चाहा है जयराम कोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु, ये सभी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हमारा श्रोता परिवार है। आप सभी

0: के लिए लीजिए ये गाना।
1: सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: नहीं, दिल लगाइए, अपनों से लगाइए और इस दिल की बात मान लीजिए ना, कितना प्यारा है ये दिल। धक धक धक धक अपना कुछ ना कुछ जो है हमें मैसेज देना चाहता है और आपके मैसेजेस मिले, प्रोग्राम आपने पसंद किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल अपनी दोस्त रजन को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, टाटा बाय बाय, और आप सुनते रहिए रेनबो।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर विजय घाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबुधाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत के स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 12 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपद, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली स्टेशन और बाराखंबा रोड शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। जापान एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत पदक तालिका में 71 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 12 स्वर्ण और 25 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुख के उपकार करें तोय मन अभिमान न आने रे। ये जो गीत है ये न सिर्फ गीत बल्कि भाषा परिभाषा यहाँ तक कि प्रार्थना बन गया सभी देशवासियों के लिए। आज ये हम सभी के दिलों में जो है वो बरकरार हैं। ये गीत इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दो खास शख्सियतों की जयंती है। पहले हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की, और दूसरी शख्सियत है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इनकी आज जयंती है, इन दोनों को ही हमारा शत शत नमन। और वैष्णव जन जो गीत है इसको गांधी जी ने न सिर्फ अपने जीवन में उतारा बल्कि अपने आश्रम में उन्होंने इसे प्रार्थना की तरह इस्तेमाल किया, और तभी आज ये हम सब की जुबान पर है। उन्हें सबको याद करते हुए, इन महान शख्सियतों को याद करते हुए आज हम आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन में आपको लेकर चलेंगे गुजरात की यात्रा पर, और गुजरात में भी उन कुछ खास जगहों पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी रहीं, और इसके साथ साथ कुछ जगहें जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी रहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कीर्ति मंदिर की, जो कि गुजरात में है, पोरबंदर गुजरात में है। ये महात्मा गांधी जी का पैतृक घर है और ये जन्मस्थली है इनकी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था यहाँ पर, और उसी सटीक स्थान को यहाँ पर चिन्हित किया गया है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इस परिसर में गांधी पुस्तकालय है और एक संग्रहालय और प्रार्थना कक्ष भी मौजूद है। दूसरी जगह है साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में है ये, और ये जो आश्रम है वो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर है। गांधी जी ने 1917

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, मेरे यानी शालिनी के साथ, और कार्यक्रम चल रहा है आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन, जहां हम बात करते हैं घूमने फिरने की जगहों के बारे में। लेकिन आज एक खास दिन है, आज जयंती है दो महान शख्सियतों की, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की। पहले हमारे लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे हैं हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी आज जयंती है जिन्हें हम याद कर रहे हैं। और याद करते करते उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जगहों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, वहीं पर ले चल रहे हैं हम आपको। हम गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में अगर हम गांधी जी के जीवन से जुड़ी जगह के बारे में बात करें तो दांडी के बारे में भी आपने शायद सुना हो। ये जो है वो नवसारी ज़िले में आता है और ये वो ऐतिहासिक तटीय स्थान है जहां गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन किया था। और यहां जो है वो नमक सत्याग्रह स्मारक भी स्थित है और गांधी जी के नाम पर यहाँ पर एक स्कूल भी है जो कि राजकोट में है। यहाँ से गांधी जी ने अपने शुरुआती स्कूली की शिक्षा जो है वो यहीं से पूरी की थी। और वर्तमान में ये ऐतिहासिक इमारत जो है उसे गांधी संग्रहालय या गांधी म्यूजियम में बदल दिया गया है। ऐसी ही कुछ और जगहों के बारे में बात करेंगे जो कि शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे

आशियाना सुन रहे हैं आप, आशियाना में रेनबो डेस्टिनेशन सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ, और ये है आकाशवाणी रेनबो 102.6 यानी 102.6। हमें आप सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी, और देश में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। हम आज बात कर रहे हैं दो महान व्यक्तित्वों की, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। दोनों की ही आज जयंती है, इन्हें एक बार फिर से हमारा नमन। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिया, और गांधी जी जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना बताया, तो इसीलिए आज इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ खास जगहों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई जगहों के बारे में बात की, और हम बात कर लेते हैं शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ जगहें जो कि गुजरात में है, क्योंकि आज हम गुजरात की सैर पर हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री गार्डन बना हुआ है अहमदाबाद में, और लाल बहादुर शास्त्री स्टैचू भी बना हुआ है अहमदाबाद में, इसके जो कि कंकड़िया लेक के पास है, जो कि बहुत फेमस है। और इसके अलावा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री उद्यान राजकोट में है। तो आप इन सभी जगहों पर जिनके बारे में हमने बात करी, आप जो है वो घूमने जा सकते हैं, और न सिर्फ घूमिए वहाँ पर जो है वो छुट्टियाँ मनाने जाइए, बल्कि जब आप इन जगहों पर घूमें तो ये याद रखें कि इसी आबो हवा में इन महान शख्सियतों ने जो है वो अपना जीवन बिताया था, या वहाँ पर वो गए थे, या कुछ समय अपने जीवन का उन्होंने वहाँ पर बिताया, तो उनके जीवन के कुछ गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। इसी संदेश के साथ अगला गीत आपके लिए।

धीरे धीरे हम चलते चलते बढ़ते बढ़ते आ गए हैं, ढेर सारी हमने बातें करी हैं आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन में। आज हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कि उनकी कौन कौन सी वो खास जगहें थीं और क्या उनकी जीवन शैली रही उसके बारे में।

तो हमने जगहों के बारे में तो बात कर ली, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि गांधी जी जो है वो किस तरह का भोजन करते थे। वो जो है वो दाल चावल और खिचड़ी बहुत पसंद करते थे, बाजरे की रोटी या खाखरा यानी कि पापड़ जिसे आप कहते हैं वो भी वो बहुत चाव से खाते थे, और उबली हुई हरी सब्जियाँ वो जो है वो मसालेदार खाने से दूर रहते थे और बिना नमक मसाले के उबली हुई सब्जियाँ खाते थे, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते थे और साथ ही दही छाछ और इसके अलावा नीम के पत्तों की चटनी खाया करते थे। मुझे पता है आपको सुनकर जो है आपने कैसा मुंह बनाया, लेकिन आप यकीन मानिए जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके उनके गुणों में तो बात झलकती है, लेकिन साथ साथ वो अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का, उनकी हर चीज़ में वो बात झलकती है। तो इसी तरीके से वो फल और मेवे भी खाया करते थे और मीठे से थोड़ा सा परहेज किया करते थे, लेकिन कभी कभार जो है वो शुद्ध पेड़ा जो है बना हुआ वो खा लेते थे, उन्हें वो पसंद था। तो आप जो है वो गांधी जी के गुणों को उतारें और साथ साथ ये भी इन गुणों को भी उतारें कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा, तो आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और इनके जीवन से जुड़े हुए लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई उन जगहों जिनके बारे में हमने बात की उन वहाँ पर जाइए। और कैसे जाएंगे आप वहाँ पर, आप ट्रेन, बस या टैक्सी या कार या प्लेन किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूरी और बजट का आप ध्यान रखें, उसी हिसाब से अपनी ट्रिप को आप प्लान करें। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए गाना।

तो आशियाना रेनबो डेस्टिनेशन में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाजत, क्योंकि अब जो है वो समय धीरे धीरे आगे बढ़ चला है और इजाजत हमें और नहीं देता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने बात करी गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई जगहों के बारे में और उनके जीवन शैली के बारे में। चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अहिंसा परमो धर्म, जय जवान जय किसान, इसी नारे के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंत तीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था, वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
2: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
3: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
2: जी।
3: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
2: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था, वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
3: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था
2: जी।
3: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
2: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प

0: जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
1: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
0: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
1: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए, उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
0: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
1: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
0: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
1: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
0: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
0: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
2: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
3: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: तो यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये।

मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। राम धुन महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिबे इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: हमारी खुश नसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
2: ये अचकन देसी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और फरमाया,
2: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
2: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहां ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
1: जी बापू।
2: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
3: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
2: अच्छा, अब सोचो इस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
4: कुछ खास होना चाहिए।
1: मजदूर रहेंगे उसमें,
3: मेहनत करने वाले।
4: बापू, धर्म का काम है ये तो।
1: भाई क्यों ना इसका नाम धर्मशाला रखा जाए।
2: धर्मशाला, हाँ ठीक है, धर्मशाला।
0: आखिर फैसला हुआ कि उसे धर्मशाला कहा जाए। मैंने अर्ज किया, अब उस इमारत का नाम आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे बोले,
4: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
2: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
4: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल सर।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया करें।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल की लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो,
2: मुझे भी लीमू दो ना,
1: ये लो
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापा को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी।
1: बापू, ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो

0: आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।
2: कोई आंखों से तो सुनता नहीं है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसलिए आंखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए। अदब रखकर बेच जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉल्स्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाले हैं। हाँ हाँ, और तुम टमाटर काट लो।
3: हाँ
2: हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है।
3: मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जी इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी, जी।
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे। तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो

0: कैसे आना हुआ?
1: पापू, केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
0: देखो बिमला, ये जो केलों पर तुम काले काले चकत्ते देख रही हो ना?
1: जी।
0: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ।
0: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
0: हाँ, समझ गई ना?
1: जी।
0: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू, धन्यवाद।
2: साथियों, यह सुनकर बिमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें, लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू, ये बर्तन तो धुल गया है।
0: अरे सुधीर, नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हाँ?
0: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ,
0: देखो, इसे और चमकाना है। ये लो, अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए। समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापूजी।
0: हाँ, शाबाश।
2: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
2: चेतना,
4: अर्शद,
2: सौम्या,
4: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
4: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: जिंदगी की राहों में कभी दर्द के कांटे चुभ भी जाएं, तो सही कोशिशों और हौसलों से फिर से फूल खिल ही जाते हैं। फिर सही डॉक्टर के साथ और सही देखभाल के साथ ऑपरेशन जैसे मुश्किल सफर भी हंसते हंसते कट ही जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं यानी नाज करती हूँ आप सभी लिसनर्स का स्वागत आपके फेवरेट शो रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, सर्जरी या ऑपरेशन, ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में एक अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन राहत की बात यह है कि मेडिकल साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन वाले ऑपरेशंस ने बड़े बड़े चीरों और महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के झंझट को लगभग खत्म ही कर दिया है। लेकिन सर्जरी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी ऑपरेशन से पहले और बाद की देखभाल के बिना रिकवरी अधूरी और काफी मुश्किलों से भरी हो सकती है। और इसीलिए आपके मन के हर डर को दूर करने, आपके हर सवाल का सटीक जवाब देने और सर्जरी के इस सफर को आसान बनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के सिंगला, जो कि जाने माने जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन और रोबोटिक सर्जन भी हैं। सर, थैंक्स फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चंस।
2: थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी, वो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के अंदर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक पूरी यात्रा है जो सर्जरी के तय होने के साथ ही शुरू हो जाती है और पूरी तरह से ठीक होने पर ही खत्म होती है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्री ऑपरेटिव केयर की जब हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें सबसे पहला पड़ाव यही आता है कि हम सही डॉक्टर और सही संस्थान का चुनाव करें। तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है और ये कैसे किया जाना चाहिए?
3: जो आपने बोला कि सही डॉक्टर, ये विदेशों में, अमेरिका में बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर लिखा हुआ है, इट मेक्स डिफरेंस हुम यू मीट फर्स्ट इन मेडिसिन। दैट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ ए सेंटर एंड द डॉक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन मेक दे राइट योर डेस्टिनी।
2: यस सर।
3: सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट इट। तो द डॉक्टर शुड बी नॉट ओनली क्वालिफाइड, ही शुड बी एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो। दैट इज ए इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ए सिलेक्शन ऑफ द डॉक्टर। एंड जो संस्थान है वो भी पूरी तरह से इक्विप्ड होना चाहिए, उसमें सब सुविधाएं होनी चाहिए जिससे कि कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा हो उसको पहचाना जाए और उसको जल्दी ही रिवर्ट किया जाए, क्योंकि उसमें समय निकलते मरीज को नुकसान हो सकता है और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना इमरजेंसी के लिए अपने आप में नुकसान है। तो वही सेंटर जिसमें आप गए हैं उसमें काफी सुविधाएं होनी चाहिए और जो भी एक्सपीरियंस तजुर्बा डॉक्टर, और सिर्फ एक सर्जन नहीं है, उसका जो स्टाफ है, उसकी नर्सेज, उसके टेक्नीशियंस, दूसरे डॉक्टर्स, स्पेशलिटीज, ऑल स्पेशलिटीज, बिकॉज सर्जरी इज ए टीम वर्क। ये एक टीम वर्क है जिसमें छोटे से छोटा वर्कर से लेके सबसे सीनियर आदमी तक सारे इन्वॉल्व है, तब ये प्रोसेस कामयाब है। इसमें कहीं से भी एक जीना है, ये स्टेप लैडर है, एक लैडर का भी नीचे से लिंक निकलता है तो नुकसान होता है। इसलिए ये जो आप बात करें उसके जवाब में ये
2: जी बिल्कुल सही बात है। और सर, इसी के साथ अगर प्री केयर की हम बात करें तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी है, और सर्जरीज की हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किन कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपनी केयर को भी डिसाइड कर सकते हैं।
3: राइट। जो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो पेशेंट है, तो ये जानकारी पूरी तरह से लेनी चाहिए डॉक्टर को कि वो कितना रेडी है, कितना तैयार है उस ऑपरेशन के लिए, और उसकी जो साइक है उसको एक बार जरूर इवेल्युएट करे, बिकॉज अगर उसमें कोई कमी है इवेल्युएशन में, वो पेशेंट को कोई ना कोई कंप्लेंट ठीक ऑपरेशन होने के बाद भी चलती रहेगी। तो उसको पूरी तरह से इंटीमेट किया जाए, बताया जाए और ये समझने की कोशिश की जाए वो समझा है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स आजकल ये सोचते हैं कि जादू की तरह इलाज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना डिजीज अपना कोर्स कवर करती है, उसके लिए पेशेंट को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मे बी आजकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी इवेल्युएट करते हैं हाउ इक्विप्ड द पेशेंट इज फॉर द सर्जरी, नॉट ओनली द हॉस्पिटल। सो दैट्स व्हाट।
2: और ये कैसे पहचाने कि सर्जरी कब जरूरी है और किस मोमेंट पर उसे टालना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है?
3: ये इसके बड़े वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, वेदर इट इज इलेक्टिव एंड एमरजेंसी। जो इलेक्टिव सर्जरी है, मतलब जिसको आप चुनते हैं कि हफ्ता, दस दिन, दो

0: जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि उसको कोई ड्रग्स से एलर्जी है या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो लाइक ब्रोंकल एस्मा, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उन सब का ब्यौरा लेना चाहिए, तब आप अच्छे से इसको चला सकते हैं।
1: ये तो सर डॉक्टर्स का रोल हो गया, अगर हम पेशेंट की बात करें या पेशेंट की फैमिली मेंबर्स की भी बात करें तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसमें डाइट भी आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, और जो कि आपने बताया कि वाइटल्स हैं, तो उनको भी हम लोगों का या मतलब फैमिली का कितना रोल है उसमें?
0: एक्चुअली फैमिली को ये देखना है कि पेशेंट की जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है वो नॉर्मल होने चाहिए। लाइक आप 300 शुगर पे सर्जरी कराने आते हैं और वो अर्जेंट नहीं है तो उसको कम से कम 200 से नीचे लाया जाए ब्लड शुगर को, तब आप करें, नहीं तो इन्फेक्शन रेट विल बी हाई, पेन विल बी मोर, हॉस्पिटलाइजेशन विल बी मोर, ये सब चीजों को आप घटा सकते हैं अगर फैमिली को भी नॉलेज है, एजुकेशन है। तब अगर उनको नहीं है एजुकेशन तो उनको एजुकेट किया जाए।
1: बिल्कुल सर, बातचीत जारी रखेंगे हम इस पर। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते सर, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है मैम, चरखी दादरी हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताए सर।
2: 2023 में मैंने एक सर्जरी करवाई थी मैम, एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट गया था और हाथ में डॉक्टर साहब ने उस समय एक रोड डाली थी, तो मैंने दो तीन डॉक्टर से बात की तो वो बोले भाई इसको निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता सर, कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिसमें से हम अपने हाथ में से ना निकलवाएं तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती हमें, या मैंडेटरी होता है उसको निकलवाना? कुछ
0: मेटल्स जो भी स्टील के मेटल्स हैं वो जरूरी निकलने चाहिए, बट देखिए ये टंगस्टन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपका बोन फ्यूज हो गया है, यूनाइट हो गया है, तो आप इसको निकलवा सकते हैं।
2: वैसे कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई निकलवाना भी जरूरी
0: नहीं, छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लाइट होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
2: ओके, थैंक यू सर।
0: और ये एमआरआई के लिए भी प्रॉब्लम नहीं करता है।
2: ओके, वेरी थैंक यू सर।
1: एक और सवाल सर हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू आया है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद कितने दिन का रेस्ट जरूरी है? प्रकाश चंद्र रोहिणी दिल्ली से ये सवाल पूछा है सर।
0: गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए रेस्ट जो है ये उसकी एज पे डिपेंड करता है मरीज। अगर कोई यंग पेशेंट है 20 years 25 years दे गो बैक टू वर्क आफ्टर 3-4 days, लेकिन अगर वही पेशेंट 60 साल की एज का है तो उनको रेस्ट करना पड़ेगा 2-3 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन द एज। और कोमॉर्बिडिटीज, अगर पेशेंट को और बहुत दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो इनका रिकवरी थोड़ा धीरे होता है, टाइम से होता है, लेकिन होता है, अच्छे से होता है।
1: सर एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। हेलो।
3: हेलो
1: जी सर, अपना नाम बताए।
3: जी नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार।
3: जी मैम, मेरा नाम कमलेश चौधरी है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
1: जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैम, अभी मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है लैप्रोस्कोपिक से, यूट्रस में गांठ था, सिस्ट।
1: जी
3: तो सर ये है कि जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, थोड़ा जानकारी लेना था।
0: देखिए
3: हम उससे बच सकते भविष्य में।
0: हाँ, देखिए पहले ही बात है, उसको पानी बहुत पीना है, लॉट ऑफ वाटर, एंड फॉर 6 weeks शी शुड नॉट लिफ्ट द वेट, she should use a western toilet, she should not be constipated, she should not raise the abdominal pressure, जो पेट के अंदर प्रेशर है उसको नहीं बढ़ाना है, जैसे लोग सोचते हैं कि प्राणायाम से नहीं बढ़ता है, लेकिन उससे भी बढ़ता है, तो वो सब नहीं हो, और प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, और प्रोटीन जो डाइट है उसमें प्रोटीन काफी लेना है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है फ्लूड, फ्लूड बहुत लीजिए।
3: अच्छा फ्लूड सर, जैसे हाँ, नारियल की पानी।
0: हाँ लीजिए। हाँ नारियल पानी ठीक है, अच्छा है।
3: और जैसे सर कि 15-20 मिनट जैसे किचन में खड़ा होकर काम कर सकते हैं,
0: अगर अगर वो एक हफ्ता 10 दिन हो गया है और वो वीक फील नहीं कर रही है तो वो कर सकती है, लेकिन वो एक या दो आदमी का ही खाना बनाए, अगर वो 10 आदमियों का खाना बनाने खड़ा कर दोगे तो वो बेचारी गिर जाएगी।
3: नहीं नहीं सर, दो ही लोग हैं।
0: हाँ उसके लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो चौका है उसको मत सौंप देना।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं सर, नहीं वो बस जस्ट पूछ रहे थे।
0: हाँ,
3: सर
0: हाँ, हाँ,
3: क्या क्या
0: कर सकते
3: होता है ना सर, जब हमें नॉलेज नहीं रहता है।
0: हाँ
3: और सर जैसे एक हफ्ते हो गया सर, अभी एक हफ्ते हो गया,
0: अभी उसको एक हफ्ते का रेस्ट और दो, हिस्टरेक्टमी और ये थोड़ा मेजर सर्जरी होता है पेल्विस का, इसमें पेन थोड़ा ज्यादा होता है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा सर, अच्छा ये सर दोबारा हो सकता है क्या, ये जो सिस्ट है यूट्रस में? अब
0: ये यूट्रस में था या ओवरी में था?
3: यूट्रस में था सर, यूट्रस में।
0: कितना
3: 40 mm का सिस्ट था?
0: बिकॉज यूट्रस में सिस्ट बहुत कम होते हैं, मोस्टली ये ओवरीज में होती है, एडिनेक्सा में होती है। तो देखिए दूसरी साइड में हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड किया है तो राइट में हो सकता है, राइट किया तो दोबारा होने का चांस है, तो फॉलो अप करना है।
3: अच्छा मतलब वही सर अल्ट्रासाउंड कराना
0: है। हाँ हाँ कराना है
1: जी। अब एक और सवाल हमारे पास आया है सौरभ सिंह चौहान जी का, लखनऊ।

0: उत्तर प्रदेश से। ये अपने फादर के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। 58 इयर्स इनकी उम्र है, 58 साल। हार्ट अटैक इनको आया था अक्टूबर 24 में और फिर ऑपरेशन हुआ। उसके बाद दिसंबर 24 में जब अटैक आया तब पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो डॉक्टर ने एक साल बाद इन्हें सर्जरी करवाने के लिए बोला है। तो क्या आप करवा सकते हैं ये?
1: अगर वो स्टेबल है, उनका बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और उनका EF इजेक्शन फ्रैक्शन एडिक्वेट है, और देन इट कैन बी डन, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक साल तो काफी समय है, बट अगर ठीक ठाक मैनेजमेंट है तो 6 महीने के बाद गॉल ब्लैडर सर्जरी की जा सकती है फॉर ए हार्ट पेशेंट।
0: सर हम बात कर रहे थे डाइट की, प्री केयर के अंतर्गत किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना जरूरी है?
1: डाइट में देखिए, एक तो पूरा जो विटामिन मिनरल्स जो भी होते हैं वो काफी लेना चाहिए। अगेन शुगर शुड बी वेल कंट्रोल्ड, प्रोटीन इंटेक शुड बी अराउंड 20% ऑफ द टोटल डाइट, लो कार्ब्स शुड बी नॉट टू मच, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर नॉट सो मच यूजफुल, एंड लो फैट, सो इफ दे टेक दैट दैट इज ऑल राइट।
0: ओके, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की भी हम बात करें।
1: डायबिटीज दे आर टू बी कंट्रोल्ड अंडर केयर ऑफ ए फिजिशियन।
0: सर इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक या फिर की होल सर्जरी किस तरह से अलग है और बेहतर भी है ओपन सर्जरी से?
1: जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये सूक्ष्म छिद्र के द्वारा की जाती है, इसमें ट्रॉमा इंजरी कम होती है ऑर्गन्स को, एब्डोमिनल वॉल को, सो द मेटाबॉलिक चेंजेस आर मच लेस कंपेयर टू ओपन सर्जरी, दैट इज व्हाई द रिकवरी इज फास्टर, ब्लड लॉस इज लेस, सो ऑल दीज थिंग्स मेक पेशेंट कन्वीनियंट, पेन इज लेस, सो दीज थिंग्स आर वेरी, दे हेल्प द पेशेंट रिकवर फास्टर।
0: थैंक यू सो मच सर, हम बातचीत इस पर आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं।
1: हाँ जरूर।

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और जहां आज का विषय है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी किसी भी तरह की सर्जरी से पहले और उसके बाद किस तरह से देखभाल की जानी चाहिए, इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एस के सिंगला, जो कि जनरल लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हैं। सर, हम प्री ऑपरेटिव केयर की बात कर रहे थे इस सॉन्ग से पहले, तो आपसे जानना चाहेंगे कि डाइट और वाइटल्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाना जरूरी है।
1: See, एक तो सब लोगों को वायरल मार्कर हेपेटाइटिस सी बी NHIV वो जरूरी है पेशेंट की सेफ्टी के लिए और स्टाफ की सेफ्टी के लिए, बिकॉज ये ना हो मरीज से दूसरे को बीमारी लगे, वो प्रिवेंशन है, वो हमें सबका करना है। दूसरा, आपने सवाल पूछा एलर्जीज, ड्रग एलर्जीज शुड बी रिकॉर्डेड, ये पता होना चाहिए किस ड्रग से एलर्जी है। अगर आपको पहले से पता है तो आप उसको रेड पेन से लिख सकते हैं फाइल में और एक एलर्जिक रिएक्शन को रोका जा सकता है। रिएक्शंस कैन बी वेरी फैटल, दे डोंट गिव टाइम टू ए डॉक्टर टू मेक द पेशेंट रिकवर, सो इसलिए एलर्जीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो ओपन सर्जरी से लेप्रोस्कोपिक और फिर रोबोटिक सर्जरीज भी अब ट्रेंड में है, तो उस पर भी हम चाहेंगे कि आप हमें
1: एक्चुअली जो लेप्रोस्कोपिक है, जिसको मिनिमल इन्वेजन बोलते हैं, इट इज डन विद ए कैमरा, एंडोविजन कैमरा, एंड द मैग्निफिकेशन ऑन द स्क्रीन इज वेरी हाई और आप बहुत अच्छे से उसी सर्जरी को जो आप ओपन से करते हैं ज्यादा विजन में कर पाते हैं, दैट इज वन। इसलिए और ब्लड लॉस नहीं होता है एंड विद एक्सपीरियंस दैट बिकम्स फास्टर देन ओपन सर्जरी। द गॉल बैडल्स कैन बी डन इन 10-15 मिनट्स टुडे, मोस्ट ऑफ द गॉल बैडल्स, अपेंडिक्स, हर्नियास, दे आर रूटीन सर्जरीज, सो दैट इज वॉट। बट जो आप रोबोटिक की बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, दैट इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। उसमें आप स्क्रीन पे काम करते हैं तो एक आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गन आपके हाथ में आ गया है, या आप पेशेंट के पेट के अंदर बैठ के ऑपरेशन कर रहे हैं। सो वो चीज रोबोटिक में जितना प्रिसीजन है वो लैप्रोस्कोपी में, अभी लैप्रोस्कोपी भी प्रिसीजन है, बट रोबोटिक फॉर मैलिग्नेंसी इज वेरी गुड बिकॉज यू कैन टेक आउट ऑल द कैंसरस टिश्यू मच मोर देन लैप्रोस्कोप।
0: तो अगर रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो वहां हम कैसे इन सर्जरीज को देखें?
1: बोथ आर द सेम।
0: ओके,
1: बट फॉर रोबोटिक यू नीड ए डिफरेंट सेटअप। यू अनदर थिंग, वंस यू फिक्स अप ए पेशेंट इन पोजिशन फॉर रोबोटिक सर्जरी, यू कैनॉट चेंज दैट पोजिशन जो आप लेप्रोस्कोप में कर सकते हैं। सो इसलिए उसकी जो पोजिशनिंग है वो इतना एक्यूरेट हो कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी कुछ दिक्कत बन गई रोबोट में तो उसको रिवर्ट करना मुश्किल है। सो इसलिए जो अगेन स्टाफ, द ट्रेन पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। आई मीन्स इट्स डिफरेंट।
0: यस सर, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो।
2: हेलो
0: जी सर, बताएं अपना नाम और अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है सर, मैं ये दिल्ली नॉर्थ से बोल रहा हूँ, नरेला से।
0: जी
2: ये सर, ये वाइफ के गाल ब्लडर में पथरी है, उसकी एज 70 ईयर्स है और डायबिटिक है, लेकिन उसका जो टेस्ट में CA99 बड़ा हुआ निकलता है, तो इसलिए कोई डॉक्टर हाथ लगाने को राजी नहीं है, क्या है ये सर?
1: ये एक्चुअली अगर वो डायबिटिक है और गॉल स्टोन है और अगर उनका MRCP नॉर्मल है या PET CT नॉर्मल है तो आप इस सर्जरी को करवा सकते हैं और करवानी चाहिए, क्योंकि डायबिटिक्स में गॉल स्टोन किसी भी सूरत में नहीं रखना है।
2: 9 बड़ा हुआ बोलते हैं।

0: बात नहीं, वो बिना रीजन के भी बड़ा मतलब जरूरी नहीं है कि कैंसर हो, इसलिए एक MRCP जरूर करें, और अगर उसमें भी कोई डाउट है तो PET CT कर लें, उससे आपका सारा कुछ निवारण हो जाएगा।
1: वो सब हो रखा था सब, वो सब जगह से ओके आ गया, कैंसर से भी ओके आ गया।
0: तो फिर करना चाहिए ऑपरेशन करने में, आप करवा लीजिए।
1: लेकिन मैं CGHS से हूँ, कहीं रेफर कर देते हैं।
0: जी हम कर देंगे।
1: अच्छा, मैं CGHS बेनिफिशियरी,
0: कोई बात नहीं, हाँ मिलेगा आपको।
1: थैंक यू सर सो मच।
2: जी एक और सवाल सर हमारे पास आया हुआ है, यूट्रस रिमूव हुए 8 ईयर्स हो चुके हैं, क्या भार उठाने का अब भी ध्यान रखना होगा? और ये सवाल हमसे पूछा है रविंद्र पाठक और आशा पाठक जी ने नीदरलैंड्स।
0: 8 साल तो काफी समय है, वह एवरेज वेट जितना 10-15-20-25 किलो तक आप उठा सकते हैं, बट आप अगर 50-60 किलो तो आम आदमी, उसकी आपको आदत नहीं है, जिस वेट को आपको डेली उठाने की आदत है उतना आप उठाते रहिए।
2: सर हम सर्जरी के टॉपिक पर वापस आ रहे हैं, एनेस्थीसिया को लेकर भी कुछ मिथ्स लोगों के बीच है, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में बताएं।
0: जो मॉडर्न सर्जरी है इसके अंदर एनेस्थेटिस हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले बिकॉज दे कैन मॉडिफाई द सीन। सो एक्सपीरियंस्ड एनेस्थेटिस बिकॉज एनेस्थीसिया ड्रग्स रिकवरी ऑल्दो एनेस्थीसिया इज वेरी गुड, इट इज ओनली एज लॉन्ग एज वी ऑपरेट पेशेंट रिमेन्स एनेस्थेटाइज्ड, उसके बाद उससे पहले पेशेंट अवेक है। सो एक बहुत अच्छा एनेस्थेटिस जो वाइटल्स को स्टेबल रखे, BP पल्स भी, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। एंड नाउ इनके पास इंट्यूबेशन टेक्निक्स भी डिफरेंट है, सो एनेस्थीसिया हैज आल्सो इंप्रूव्ड। एनेस्थीसिया इंप्रूव हुआ इसीलिए सर्जरी इंप्रूव हुई है।
2: तो शरीर के हर हिस्से या हर बीमारी की सर्जरी क्या लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक तरीके से पॉसिबल है, या इसका भी कैटेगराइजेशन हम कर सकते?
0: नहीं, हर हिस्से को लेप्रोस्कोप से नहीं या रोबोट से नहीं कर सकते। अगर आप आजकल हालांकि थायराइड को भी करते हैं लोग, बट नॉट वेरी, और टंग ओरल कैविटी का रोबोटिक इज वेरी न्यू, पीपल आर गेनिंग एक्सपीरियंस, बट एब्डोमेन के लिए अंदर रोबोटिक बहुत अच्छा है। देन यू हैव, इट इज गुड फॉर प्रोस्टेट, यूरोलॉजी में सबसे बड़ा रोल है इसका। देन कार्डिक सर्जरी, एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी स्टार्टेड विद कार्डिक सर्जरी, तो उसमें बहुत इसका यूजफुल वो है, इट कुड बी डन। एंड ऑर्थोपेडिक्स में नी रिप्लेसमेंट में इसको यूज किया जाता है।
2: ओके सर, कौन से ऐसी चीजें हैं या साइंस हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात हमने की या हार्ट प्रॉब्लम की भी हमने बात की, तो कई बार देर हो जाती है, तो वो देर ना हो इसके लिए किन चीजों का ध्यान रखा जाना जरूरी है?
0: देखिए अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम है और वो सुधर नहीं रहा है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है चाहे वो बोन से रिलेटेड है, तो उसको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
2: तो सर प्री केयर की हमने बात की और अब हम पोस्ट केयर की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्जरी के 24 से लेकर 48 घंटे, सर्जरी के बाद के 24 से 48 घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना?
0: एक्चुअली फर्स्ट 24 आवर्स, 0 hour to 24 hours इज वन थिंग, एंड देन 1 day to 7 days। नाउ इट डिपेंड व्हाट सर्जरी, क्या सर्जरी आपने किया है। जो जैसे रूटीन सर्जरीज है, गॉल ब्लैडर है, हर्नियाज है, अपेंडिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका एनेस्थीसिया ठीक रहा है, पेशेंट का सिलेक्शन ठीक रहा है, तो पोस्ट ऑप रिकवरी इज वेरी स्मूथ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट फिर भी जो वहाँ पे रिकवरी रूम में स्टाफ होता है वो मोस्ट लाइकली एक अच्छी नर्स होनी चाहिए जो बहुत जल्दी से ये पकड़ ले कि पेशेंट कहाँ पे किस तरफ जा रहा है।
2: बिल्कुल,
0: दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, सो दैट यू कैन, सपोज किसी का BP गिर गया, या किसी की पल्स फास्ट हो गई या पल्स गिर गई, सो शी कैन पॉइंट आउट एंड कॉल द डॉक्टर अर्ली बिकॉज डॉक्टर्स आर बिजी एट सो मेनी अदर प्लेसेस।
2: जी बिल्कुल, इस पर हम आगे भी बात करेंगे सर, लेकिन एक अच्छा सा गाना यहाँ पर जरूर सुनना चाहिए हमें।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल और हम लेकर आ गए हैं घड़ी के 3:30 बजे के अभी के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स। और लेटेस्ट अपडेट्स में आपको बता दें कि मेडल्स की आज बौछार हो रही है, खास तौर से गोल्ड मेडल्स की फ्रॉम द इंडियन परस्पेक्टिव। अगर बात करें तो रेसलिंग के अंदर द गोल्ड हैज केप्ट ऑन जस्ट बींग एडेड, बिकॉज रेसलिंग में हमने देखा कि किस तरह से आज दिन की जब शुरुआत हुई तो उसके बाद भी हमारी से जहां दीपांशी ने अभी भी मेडल होप्स रखे थे जारी, वही हमने देखा कि सुजीत कलकल ही वेंट ऑन टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 किलो फाइनल बाय डिफीटिंग इस तजाकिस्तान ओपोनेंट 10-9। एक बहुत सॉलिड कमबैक इन्होंने किया, बिकॉज जहां ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पीछे थे, जी हां 2-9 से गैपिंग थी, वहीं पर लास्ट में हमने देखा वन ऑफ द कमबैक्स दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन ईयर्स टू कम, जो सुजीत कलकल ने आज कमबैक किया और भारत को रेसलिंग में 65 किलोग्राम के मेंस फ्रीस्टाइल 65 kg फाइनल के अंदर गोल्ड दिला दिया। मेरे साथ है अनुपम पाठक। एंड अनुपम, द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे दैट हैज जस्ट स्टार्टेड फॉर इंडिया हैज बीन रेसलिंग।
3: आज का दिन ही बहुत अच्छा है। देखिए उस दिन हम लोग कितने खुश थे कि कंपाउंड आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल आए हैं। आज का दिन तो उससे भी बेहतर है, 3 गोल्ड मेडल, हैट्रिक लगी है। बॉक्सिंग में, कुश्ती में गोल्ड मेडल आया। और अब मैं भी सुजीत की जो बाउट देखी है ना, तो मन कर रहा है खाली उसी की बात करूं। इस
2: समय
3: इतनी कठिन बाउट, 2-9 से पीछे हैं आप, एक अंक और भी आप पीछे हो गए, गंवा बैठे तो आपके हाथ से बाउट निकल जाएगी। उस समय भी जो लड़ना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं, जूझना जानते हैं, वो दिखाया, लेग अटैक किया।

0: एक के बाद एक तीन मूव बनाए, छह अंक कमाए, चौथा मूव उन्होंने ऊपर से बनाया उसमें अंक कमाया, 8 अंक एक साथ और 10-9 से अंकों के आधार पर विजय। विश्व नंबर 2 हैं तो भाई इसीलिए हैं, गजब हैं ये। और भिवानी की कहते हैं ना बॉक्सर्स वहां से आते हैं, बॉक्सिंग की फैक्ट्री है, पहलवान भी वहां से वैसे ही आते हैं।
1: क्या
0: बात है। तो बॉक्सिंग की बात करते हैं, अंकुश पंघाल ने हैट्रिक पूरी की है, 3रा स्वर्ण पदक दिला दिया है भारत को कोरिया के किम मिन सियांग को परास्त करके, और ये भी खासी मजबूत फाइट रही, बहुत तगड़ी बाउट थी। अंकुश साउथपा है, साउथपा का जो पंच होता है देखने में बड़ा दर्शनीय होता है, सियांग को उन्होंने पहले राउंड में ही पीछे कर दिया, बहुत तेज उन्होंने अटैक किया और 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से उन्होंने पहला राउंड जीता। दूसरे में सियांग ने कोशिश की प्रत्याक्रमण करने की, लेकिन खास बात हमने जो देखी, अंकुश बिल्कुल अपना गार्ड नीचे करके खेल रहे थे, बिल्कुल ओपन गार्ड खेल रहे थे, आओ मुझ पे अटैक करो, मुझ पे अटैक करोगे तो मैं बताऊंगा कि सीधे पंच कैसे मारे जाते हैं। दूसरा राउंड 5-0 यानी कि सर्वसम्मत से सारे जजेस ने उनके पक्ष में किया। इसके बाद तीसरे में तो उनको बस रिदम बनाए रखना था, समय बिताना था, उन्होंने वो किया, लेकिन ये दिखाते हुए कि देखो मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, मेरी आदत है आक्रमण करना। और स्प्लिट डिसीजन जरूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत शान के साथ 3रा स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में भारत का, गजब का दिन आज।
1: जी, और आपको ये भी बता दें कि बॉक्सिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो परवीन हुड्डा भी आज कमाल का बाउट खेल गई, बिकॉज उन्होंने भी शी हेल्ड हर नर्व्स इन अ क्लोजली फॉट फाइनल अगेंस्ट चेन नियन चेन एंड द चाइनीज ताइपाई। बॉक्सर स्टार्टेड अग्रेसिवली इन द फाइनल राउंड बट परवीन रिस्पॉन्डेड विद क्विक कॉम्बिनेशंस एंड इफेक्टिव काउंटर पंचेस एज द बाउट वेंट डाउन टू द वायर। द इंडियन बॉक्सर डिड इनफ टू एज द कॉन्टेस्ट, विनिंग बाय अ 3-2 स्प्लिट डिसीजन एंड सिक्योरिंग द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 65 kg कैटेगरी। जी हाँ, परवीन हुड्डा भारतीय बॉक्सर्स में वो तीसरी महिला बॉक्सर बनी है टू विन द एशियन गेम्स बॉक्सिंग गोल्ड आफ्टर मैरी कॉम। और याद दिला दे आपको आज जब लवलीना बोरगोहेन भी बॉक्सिंग के अंदर ही 75 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, तो लवलीना बोरगोहेन बनी दूसरी महिला बॉक्सर जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया आफ्टर मैरी कॉम। और तीसरी ऐसी बॉक्सर जो बनी है वो है परवीन हुड्डा। सो आज मेडल्स की बरसात हो रही है।
0: बिल्कुल, और परवीन रोहतक की रहने वाली हैं, और खास बात ये रही अगर देखा जाए तो सबसे कठिन बाउट उन्हीं की रही, स्प्लिट डिसीजन भी रहा, और दोनों मुक्केबाज बहुत चपल थे, बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन परवीन ने अपनी लंबाई का भी फायदा उठाया और जो फुर्ती होती है, और इसके अलावा जो कोर्ट में आप एक चपलता के साथ मूव करते हैं रिंग में, उसका उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया। अंततः ये अबाउट उनके नाम रही, और क्या कहना। हाँ, एक चीज़ आप साक्षी मुझे बता रही थी कि जो सियांग थी शायद उनको उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया था।
1: जी, शी इज बीन अ कैंसर पेशेंट। हम बता दें अपने सारे ही लिसनर्स को भी कि ये कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, और उस फाइट के बाद, कैंसर को फाइट करने के बाद, शी इज बीन एबल टू नाउ मेक अ कम बैक। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन के साथ यहाँ पर आप कह सकते परवीन हुड्डा ने इनको डिफीट किया है, बिकॉज चेन नियन चेन हैज बीन अ कैंसर पेशेंट सर्वाइवर, और उन्होंने पैरिस में इनफैक्ट ब्रॉन्ज भी जीता था, लेकिन उसके बाद अब जो इन्होंने कमबैक किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट पुट अप करी, बट एट द एंड ऑफ द डे शायद आज गोल्ड इनकी किस्मत में नहीं था, हमारी भारतीय बॉक्सर की किस्मत में था, इसलिए स्प्लिट डिसीजन से परवीन हुड्डा ने 3-2 से उसको अपने नाम कर लिया। बट कूडोस टू द चेन नियन चेन ऑफ चाइनीज ताइपाई, जिन्होंने आज इतनी अच्छी फाइट पुट अप करी।
0: तो अब बस एक ही सपना है, हॉकी, हॉकी में भारतीय लड़कियां आएं, 2 लड़कियों ने पदक दिलाया, 1 लाल ने दिलाया है, अब लड़कियां आएं और 1 पदक, स्वर्ण पदक और लेकर।
1: लेट्स होप फॉर दैट बिकॉज द मैच इज ऑल सेट टू स्टार्ट। लेकिन उससे पहले, बिफोर वी एंड दिस अपडेट, अ क्विक लुक ऑन टू द मेडल टेबल ऑल्सो। भारत अब 5वें स्थान पर आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, 75 टोटल मेडल्स के साथ 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, देख कर ये फिगर्स अब थोड़ी सी खुशी हो रही है, क्योंकि मेडल टेबल में भी भारत का स्थान अब धीमे धीमे करके ऊपर आ रहा है। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान, जिनके पास इस वक्त 17 गोल्ड है, लेकिन कुल मेडल उज्बेकिस्तान के भारत से कम है, 60 है, लेकिन क्योंकि भारत के अभी 15 गोल्ड है उज्बेकिस्तान के 17, तो इसलिए भारत अभी 5वें स्थान पर है। नंबर 1 पे चाइना बना हुआ है, नंबर 2 पे जापान है, तीसरे नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड उम्मीद करेंगे कि भारत एशियन गेम्स का ये सफर ऑफिशियली जब समाप्त करे तो 4थे स्थान पर करे, लेकिन फिलहाल तो रियल टाइम में मेडल टेबल पर भारत का है 5वां स्थान इस वक्त के लिए। अभी के लिए फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और अनुपम पाठक को दीजिए इजाजत, हम आपसे दोबारा दोस्तों मिलेंगे शाम के

0: 4:30 with the latest updates of the ongoing Asian Games. For now, it's goodbye.
1: Namaskar.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
5: प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये है आज का विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं। सर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की हम बात कर रहे थे तो
6: एक सेकेंड।
5: जी सर,
6: प्री ऑपरेटिव में शायद मैं बोलना भूल गया हूँ।
5: जी,
6: जो भी पेशेंट ब्लड थिनर्स में है, खून पतला करने की दवाइयों, विच इज वेरी कॉमन, दे शुड बी डिस्क्लोज टू द डॉक्टर बिकॉज ब्लीडिंग कैन बी फैटल। सो एंटीकॉगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट्स, ये ऑपरेशन से पहले बंद होने हैं। They are a big risk.
5: बिल्कुल, तो इसकी जानकारी खुद से डॉक्टर को दें।
6: दे और डॉक्टर भी पूछें।
5: No, yes. इसी से रिलेट करके उम्र के फैक्टर पर भी हम चाहेंगे कि आप बताएं।
6: एज इज नो बार फॉर सर्जरी। 31 साल का पेशेंट कैन बी सो सिक दैट इज नॉट फिट फॉर सर्जरी, एंड 90 इयर्स ओल्ड मैन कैन बी सो फिट दैट इज बेटर देन 30 इयर्स। सो आई थिंक इट इज ऑन एवरी पेशेंट टू पेशेंट, हमें एसेस करना है कि कौन फिट है या कौन नहीं, एज नहीं है क्राइटेरिया।
5: एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हेलो।
7: हेलो
5: जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
7: मैं संजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से।
5: जी, अपना सवाल पूछिए।
7: मुझे लेफ्ट साइड में हर्निया है और प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, क्या मैं ऑपरेशन करवा सकता हूँ उसका, हर्निया का?
6: आपकी एज कितनी है?
7: एज 68 है, वजन 50 किलो है।
6: अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत है और अल्ट्रासाउंड में ये दिखता है कि यूरिन आपका काफी रुक रहा है यूरिन करने के बाद, तो पहले गदूत का ऑपरेशन कराइए, उसके बाद हर्निया का कराइए।
7: प्रोस्टेट पहले हर्निया का नहीं हो सकता?
6: नहीं, वो हर्निया फेल हो जाएगा। ठीक है,
5: तो सर उम्र का कोई बैरियर अब है नहीं और सर्जरी की भी एडवांसमेंट हमारे सामने मौजूद है, बेहतर से बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, पर मेंटल हेल्थ को किस तरह से संभाला जाए ये भी आपसे जानना चाहिए।
6: एक्चुअली जो इलेक्टिव केस होते हैं उसमें जो भी डॉक्टर काफी समय से मरीजों से बात करते रहते हैं, काम कर रहे हैं अस्पतालों में, समाज में, वो उनको समझ आने लगता है कि पेशेंट की जो मानसिक स्थिति है, जो उसकी इच्छा है वो क्या है, उसको समझा जाए और उसके हिसाब से इलाज प्लान किया जाए। दैट इज व्हाट आई विल से नाउ। आई वॉन्ट से बट, लेकिन आजकल जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इस काम में।
5: और सर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में
6: उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मॉरल जो पेशेंट का, उस सर्जिकल पेशेंट का मॉरल बहुत वीक होता है, तो उसको स्ट्रांग रखना है। मतलब ऐसे लोगों से ना मिले जो उसको रोज कुछ उल्टी सीधी बातें बता जाएं और बोले तेरे को ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वो उनसे दूर रहे। ठीक है
5: सर, एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी संबंधित डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट कितनी जरूरी है? अमूमन देखा गया है कि लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं।
6: ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या हुआ है। सपोज अगर आपने दो, इसमें डिवाइड करूंगा हिस्सों में, एक तो कैंसरस, एक नॉन कैंसरस।
5: जी,
6: जो कैंसरस है उनमें तो रेगुलर फॉलो अप चाहिए ही, और जो नॉन कैंसरस है जैसे गॉल ब्लैडर है, हर्निया है, हर्निया में आई डोंट थिंक दे नीड ए फॉलो अप। बिनाइन डिजीज में फॉलो अप नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए। अगर उसको कोई सिम्टम है तो जाए, नहीं तो नहीं जाए।
5: जी, सेल्फ केयर।
6: बट फॉर कैंसर यू नीड ए फॉलो अप।
5: और सर हम डाइट की भी अगर हम बात करें तो सर्जरी के बाद किस तरह की राय दी जाती है?
6: मोस्टली वी से टेक मोर प्रोटीन्स।
5: ओके,
6: दैट इज व्हाट, विटामिन्स, मिनरल्स। आजकल जो सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है वो B12 और विटामिन डी की है।
5: yes.
6: उसको पूरा रखिए, दैट कंट्रोल्स लॉट ऑफ डिजीज।
5: जी सर, नहाने को लेके या पानी के संपर्क में आने को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि अमूमन स्टिचेस की जब अगर हम बात करें तो वहां पर इन्फेक्शन का खतरा।
6: एक्चुअली ये अगेन टू थिंग्स, अगर लैप्रोस्कोप से हुआ है तो दैट कट इज वेरी स्मॉल, उसमें हम दो दिन के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आप इस पे कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगा के नहा सकते हैं, थिकन, बट उसको ड्राई रखना है उसको। और अगर मेजर इंसिजन है तो फिर तो स्पंजिंग ही होगी हफ्ता 10 दिन तक। जब तक स्टिच नहीं कट जाते हैं और वुंड ड्राई है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो स्पंजिंग।
5: सर स्टिचेस के एडवांसमेंट के बारे में भी आपसे जानना
6: चाहिए। स्टिचेस भी दो तरह के, एक तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक नॉन एब्जॉर्बेबल। जो नॉन एब्जॉर्बेबल मोस्टली वी यूज पर्टिकुलर साइट्स, और जो एब्जॉर्बेबल है उसके लिए ये है कि उनकी जो लाइफ है वो 6 weeks to 6 months तक होती है। लेकिन स्किन में लोग लगाते हैं वाइक्रेल वगैरह, लेकिन उसको भी निकाल देना चाहिए 2 हफ्ते बाद।
5: okay.
6: नहीं रखना चाहिए। जो अंदर लगे हुए हैं स्टिचेस दैट यू कांट टेक आउट, लाइक प्रोलीन, एथिलॉन, आई मीन नायलन, व्हाटएवर, दैट डिपेंड्स व्हाट सर्जरी हैज बीन डन। लाइक वेस्कुलर सर्जरी है सपोज, उसमें प्रोलीन यूज होगी। दैट इज

0: लाइफ लॉन्ग, बिकॉज उसको नहीं निकालना है. ऐसे ही इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम वाइक्रिल से रिपेयर करते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती है अपने आप, वहाँ वो जितना भी समय लगे. दैट इज व्हाट.
1: ओके सर, अमूमन देखा गया है कि खासकर लेडीज में बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद इन्फेक्शंस हो जाते हैं या काफी टाइम तक पेन लेडीज महसूस करती हैं, तो उसमें सेल्फ केयर किस तरह से की जानी चाहिए?
0: एक्चुअली ये जो एपिजियोटमी, जो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है, उसमें एपिजियोटमी का इस्तेमाल, उसमें वाइक्रिल वगैरह से स्टिच किया जाता है, उसको ड्राई रखना है, रेगुलर उसकी एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, और उसमें इन्फेक्शन का चांस भी ज्यादा होता है क्योंकि वो साइट ऐसी है. इसके लिए अपने डॉक्टर के पास बार बार जाना है और चेकअप कराना है. And then it should be done.
1: जी बिल्कुल. और हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और सवाल हमारे पास आ चुका है. एक्सीडेंट केस पर भी हम चाहेंगे कि आप हमें जानकारी दें. कोटद्वार उत्तराखंड से जानना चाहते हैं नरदेव सिंह चौहान. सर, एक्सीडेंट केस में अगर कोई सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी अगर करनी पड़े, तो उसमें सेल्फ केयर का कितना रोल है और किस तरह से उसे डील किया जाना चाहिए?
0: एक्चुअली ये ना ट्रॉमा पे डिपेंड करता है, किस तरह, किसी को मल्टी ट्रॉमा है, जिसको ऑर्थोपेडिक्स भी है, ब्रेन इंजरी भी है, लंग इंजरी भी है, तो दे आर डेल्ट इन डिफरेंट वेज. ऑल द पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे. और अगर कोई माइनर इंजरी है, सपोज एक ही इंजरी हुआ है, सपोज फ्रैक्चर हुआ है सिर्फ, दैट कैन बी फिक्स्ड. बट अगर मल्टी ट्रॉमा है तो उसके लिए मल्टी स्पेशलिटी चाहिए.
1: बिल्कुल, हम इस पर बातचीत आगे भी करेंगे. और एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है. हेलो.
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी.
1: जी नमस्ते, अपना नाम बताइए.
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार. मैं योगराज गुड़गांव से बोल रहा हूँ.
0: बोलिए.
2: सवाल ये डॉक्टर साहब, ये है कि जैसे जो मस्से हो जाते हैं शरीर पे,
0: हाँ,
2: तो इनका क्या हम ऑपरेशन करवाएं? जैसे गले में भी 7-8 मस्से हो गए हैं और आँख में भी हो गए हैं.
0: जी जी.
2: कई जगह पे मस्से हो गए हैं.
0: सुनिए, ये मोस्टली पुअर हाइजीन और वायरस की वजह से होते हैं. एक तो आप अपना जो घर में टॉवल वगैरह है, अपना टॉवल किसी के साथ शेयर मत करिए. वेरी इंपॉर्टेंट. घरों में कपड़े शेयर करते हैं, टॉवल शेयर, वो मत कीजिए. लेकिन अगर मस्से हैं तो इसको लेजर से या कॉटरी से इसको हटाया जा सकता है. सुन करके इसके लिए कोई एडमिशन नहीं चाहिए, ओपीडी में किया जाता है. करवाना चाहिए, उसको निकालना चाहिए.
1: जी बिल्कुल. और
0: इसको स्किन के डॉक्टर भी करते हैं, सर्जन भी करते हैं.
1: हाँ.
0: काफी लोग करते हैं इसको.
1: जी, एक गाना सर जरूर यहाँ पर सुनते हैं. हाँ. उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे.

0: रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप, और जहां आज हम बात कर रहे हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के सिंगला, जो कि जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हैं। सर, हम बात कर रहे थे सर्जरीज की, तो प्लास्टिक सर्जरी आजकल बहुत ट्रेंड में है और देखी जा रही है, तो कहीं तो इसकी जरूरत होती है और कहीं लोग इसे शौक के लिए भी अपनाते हैं, तो इस पर क्या?
1: इट्स प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी।
0: यस,
1: प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव इज फॉर कैंसर, इट्स ए डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, एंड अदर इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी विच इज अबाउट से फेस लिफ्टिंग, गेटिंग स्कार्स रिमूव्ड, बट लेकिन वो हमेशा बराबर रिजल्ट नहीं देती हैं। तो वहां भी जो जरूरत है उसके हिसाब से काम किया जाए, लेकिन किसी बच्चे का लिप नहीं बना है, पैलेट नहीं बना है, तलवा नहीं बना है, उसको जरूर प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए। या किसी की पैदाइशी उंगलियां जुड़ी हुई हैं या एल्बो जुड़ी हुई हैं, दे नीड प्लास्टिक सर्जरी, बट दैट इज नॉट कॉस्मेटिक, इट इज फॉर इट्स अ रिक्वायरमेंट। सो कॉस्मेटिक सर्जरी मैं सोचता हूँ ये शौक के लिए नहीं करानी चाहिए, ये जरूरत है तो जरूर करानी चाहिए।
0: तो इस तरह की सर्जरीज में किस तरह से केयर की जानी चाहिए घर पर परिवार के?
1: इसमें बहुत, एक तो इसमें इन्फेक्शन रेट जीरो होना चाहिए। इन्फेक्शन होने का मतलब है प्लास्टिक सर्जरी जो आपने किया वो कामयाब नहीं होगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिव इन ए क्लीन रूम, दवाइयां, एंटीबायोटिक, विटामिन, और प्री ऑपरेटिव उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ही ना हो।
0: सर, माइनर और मेजर सर्जरीज पर भी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह से इफेक्ट होनी चाहिए माइनर में, और मेजर अगर सर्जरी कोई हुई है तो उसमें किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करें या चेंजेस?
1: एक्चुअली जो माइनर सर्जरी, जैसे डे केयर सर्जरीज होती हैं, माइनर सर्जरी जैसे आपने सिस्ट निकाला या कुछ, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनी डाइट एनीथिंग।
0: Okay.
1: लेकिन अगर आपका मेजर किसी का कोई लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो उसको तो 2-3-4-5-6 महीने बहुत केयर करनी है अपनी। तो दैट डिपेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सर्जरी, लाइक अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर, दे नीड केयर फॉर ए वीक और 10 डेज, बट अगेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, उसको दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सर्जरी विल डिसाइड हाउ मच केयर ही नीड्स और हाउ लॉन्ग दे नीड।
0: जी सर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेशली अगर हम बात करें तो किन किन इश्यूज में, हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये कारगर है, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ये अवेलेबल है और लोग आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं?
1: एक्चुअली जो एब्डोमिनल कैविटी की डिजीज है, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन, यूट्रस, उसके लिए ये सब जगह, एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, यूरोलॉजी, बिल्कुल हर चीज में यूजफुल है ये। दूसरा है ये लंग, इसको हम वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी बोलते हैं, वेट्स, उसमें आप लंग रिसेक्शन कर सकते हैं, डिकॉर्टिकेशन कर सकते हैं, तो इन जगहों पे ये बहुत कामयाब है,
0: तो डरने की जरूरत नहीं है इसको।
1: आप थोरेक्स कराएं, एब्डोमेन कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बिल्कुल सर।

0: और ये कैसे डिसाइड किया जाए कि सर्जरी पूरी तरह से कारगर है या कुछ, मतलब जो लापरवाहियां लोग कर देते हैं उसको कैसे समझा जाए? जैसे इन खासतौर पे स्टिचेस की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शंस को किस तरह से समझा जाए, कैसे वो, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार.
1: एक्चुअली उसको उनको सिर्फ पर्सनल हाइजीन चाहिए, अपने नाखून काटने हैं, उसको स्क्रैच नहीं करना है, एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, डेली नहाना है. मेरी
0: पर्सनल
1: मेरी
0: हाइजीन इज
1: हाँ
0: मोस्ट
1: पर्सनल हाइजीन,
0: इम्पोर्टेंट.
1: ओनली पर्सनल हाइजीन एंड
0: और
1: आपका रूम का एनवायरनमेंट.
0: जी सर, पेन किलर्स का कितना रोल होना चाहिए
1: जितनी
0: सर्जरी के
1: कम से
0: बाद?
1: कम जरूरत है उतनी लेनी चाहिए, जितना पेशेंट टॉलरेट करता है उस तक पेन किलर नहीं लेना है, अगर वो
0: जी
1: इनटॉलरेबल है तो पेन किलर लेना है.
0: सर, एक सवाल हमारे पास आया है. 2002 में लेफ्ट नी में इनके चोट लगी थी और तब इसका ठीक से इलाज नहीं हुआ था और तब हॉस्पिटल में एमआरआई हुआ था, बट डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट नी अंदर से टूटा हुआ है, कुछ कारण से ऑपरेशन नहीं करवा सके. तो अब क्या करें? बैठ नहीं पाते हैं, रनिंग भी नहीं कर पाते हैं, और कोई समाधान
1: ये
0: बताएं.
1: मोस्ट लाइकली ये लिगामेंट या मेनिस्कस की प्रॉब्लम है,
0: जी
1: उस समय एड्रेस नहीं हुई है तो आप करने चाहिए एक लेटेस्ट एमआरआई करा के ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए,
0: जी बिल्कुल. तो जितना जल्द से जल्द हो
1: करें,
0: सके
1: इसमें फायदा हो
0: सर्जरी,
1: सकता है, यू कैन
0: क्योंकि
1: री
0: टाइम काफी लंबा हो
1: वो
0: गया है सर्जरी.
1: रिहेबिलिटेशन हो सकता है, अभी भी हो
0: बिल्कुल
1: सकता है.
0: बिल्कुल, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत इसका जो है क्योर आप लें और तुरंत सर्जरी की ओर जाएं, ये डॉक्टर साहब आपको राय दे रहे हैं. और सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे सेल्फ पोस्ट केयर की, तो डाइट की हमने बात कर ली, साथ ही मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो कितना एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें हमें मेडिकेशन पर फुल
1: एक्चुअली
0: ध्यान रखना चाहिए?
1: ये प्रेजेंट डे सर्जरीज में मोस्टली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं पोस्ट ऑप, मोस्टली हफ्ते से 10 दिन के ज्यादा उनका जरूरत नहीं होता है, उस तक ठीक है. अब बिना रीजन के नहीं खाना चाहिए, ये पेशेंट खुद ही प्रिज्यूम कर लेते हैं इन्फेक्शन हुआ है तो 2 हफ्ते खा ली, 4 हफ्ते खा ली, वो नहीं करना है.
0: तो मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह से ही लें
1: देखो
0: और जितना जरूरी है उतना ही
1: उतनी
0: लें.
1: ले
0: जी, तो इसके साथ सर बिहेवियर में हम चेंजेस की हम बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ की. आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ जो चेंजेस हैं वो बहुत माइनर होते हैं, तो क्या उनको सेल्फ लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है या किया जाना चाहिए?
1: सी दैट मीन्स द माइनर एंग्जाइटी
0: यस
1: और वरी विच
0: यस
1: इज रूटलेस
0: यस
1: दैट कैन बी टैकल्ड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर.
0: बिल्कुल. और सर इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी पर हम वापस आएंगे, तो रोबोटिक सर्जरी अभी चूंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है इस
1: इंडिया में
0: टॉपिक को, इंडिया में तो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, तो उस पर हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि उनके अंदर का जो कन्फ्यूजन है या डर है वो
1: एक्चुअली
0: खत्म हो सके.
1: रोबोटिक सर्जरी फॉर कैंसर, एज मैंने पहले बोला है, बहुत अच्छा है. इसकी एक ही प्रॉब्लम है द कॉस्ट, रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट एंड देन द ट्रेनिंग. अभी हमारे पास सेंटर्स नहीं है इतने जितने हम ट्रेन कर सके लोगों को, एंड देन मशीन्स आर नॉट अवेलेबल, रोबोट्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सस्ते से सस्ते रोबोट भी 8 से 10 करोड़ रुपए के आते हैं,
0: यस
1: और जो अच्छी कंपनीज हैं जो फेमस हैं वेल एस्टेब्लिश, वो 20-25 करोड़ का रोबोट आता है, उसका कंज्यूमेबल बहुत महंगा है. सो वो एक रेस्ट्रिक्शन है, और धीरे धीरे ये रोबोटिक सर्जरी होनी है 15-20 साल के बाद पूरी दुनिया में.
0: जी बिल्कुल. तो इंडिया में अभी क्या कंडीशन है और
1: अभी
0: किन
1: काफी
0: चीजों
1: केसेस
0: में?
1: हाई, जो हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं उनमें 300-400 केस होते हैं, 250-300 केस महीने के होते हैं रोबोटिक इन हाई वॉल्यूम सेंटर्स,
0: जी
1: जहां पे रोबोट्स हैं, और रोबोट के लिए एक डॉक्टर सफिशियंट नहीं है, देयर
0: अच्छा
1: शुड बी एटलीस्ट 20-30 सर्जन्स,
0: ओके
1: देन ओनली यू कैन कीप द मशीन बिजी एंड कीप द प्रैक्टिस.
0: यस
1: ये इंपॉर्टेंट है.
0: जी. और सर चलते चलते आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें हम लेप्रोस्कोपिक से रोबोटिक की तरफ जाना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा?
1: कोलोरेक्टल कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए रोबोट इज वंडरफुल,
0: ओके
1: हाँ वेरी गुड रिजल्ट्स. दैट इज वन आई विल ओनली से कोलोरेक्ट. मैं गॉल बेडर और उसमें कोई खास अंतर नहीं है लेप्रोस्कोप और रोबोट में, वो तो दैट इज लाइक ए फैशन, पीपल हैव मनी दे विल गो एंड गेट इट डन.
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी सारी और इतनी सटीक जानकारी हमें देने के लिए. उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के भी सारे डाउट्स आज आपने क्लियर कर दिए हैं. और एक बार फिर लिसनर्स को मैं बता दूं कि डॉक्टर एस के सिंगला हमारे साथ आज मौजूद रहे पूरे प्रोग्राम में, जिन्होंने प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में हमें इतनी सही और सटीक जानकारी दी. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. और इसी के साथ दोस्तों, मुझे यानी नाज को लेनी होगी आपसे इजाजत. स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, साथ ही बने रहिए एफएम रेनबो के साथ. फिलहाल नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर विजयघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 12 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली स्टेशन और 12 खंबा रोड शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में महिलाओं के डिंगी इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर नेथरा कुमानन को बधाई दी है। जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 75 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 15 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 और इसके साथ साथ आप हमें इस फ्रीक्वेंसी के अलावा और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग राज्यों में देश के आप हमें सुन पा रहे हैं और इसके अलावा पूरे विश्व में आप हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी। और अगर आप एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारी OTT प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन से जो कि है वेव्स। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वेव्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपके लिए एंटरटेनमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। तो अगले एक घंटे में जो आपके लिए कार्यक्रम हम यहाँ पर लेकर आएंगे उसमें शामिल है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे और इसके बाद कार्यक्रम होगा एल्फाजन और फिर 4:30 पर आप सुनेंगे एशियन गेम्स की अपडेट और फिर से कार्यक्रम एल्फाजन जारी रहेगा। तो अब से कुछ ही देर में आप सुनिए कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली

ये सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन। ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिरदर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना, मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

मैं क्या जी सोने मकड़ों की हाल चाल है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप। शालिनी है आपके साथ, और शालिनी के साथ साथ जो आप यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शो शुरू हो चुका है अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। फिलहाल एंजॉय करिए ट्रैक, उसके बाद मिलते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे।

0: को भी उन सारी बातों से जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देती है, मैं बता रही हूँ, तौबा तौबा तौबा तौबा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ना हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। सुधर चाहिए,
1: क्योंकि सुधर चुकी है हमारी अल्फा जेन जो है वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही काम की बातें वो करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टाइम सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, इसके अलावा भी बहुत अच्छे काम करते हैं। फिलहाल मैं आपको उस बारे में बताऊं, उससे पहले बता देती हूं कि शो चल रहा है अल्फा जेन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और जो हमारी अल्फा जेन है उसके बारे में बात करें। पहले ये बता देते हैं कि अल्फा जेन जो है वो होता क्या है। अल्फा जनरेशन जो है वो 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं या जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें अल्फा जनरेशन कहते हैं। तो हमारी ये जो जनरेशन है वो इको जनरेशन भी कही जाती है, क्योंकि आप जगह जगह देखते होंगे सोशल मीडिया पर या कहीं पोस्ट पढ़ते होंगे, रील्स देखते होंगे कि बहुत से जो लोग हैं वो ये जनरेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव है, मतलब उसके बारे में बहुत ध्यान रख रही है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर हमारी धरती पर, पृथ्वी पर पड़ रहा है, उसके जो प्रभाव हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है या उसके लिए क्या काम किया जा सकता है, उसको लेकर वो बहुत जागरूक हैं। तो और इनके अलावा वो पोस्ट भी करते हैं अलग अलग तरीके के। आप देखते होंगे कि कई लोग जो है वो नदियों की सफाई में लग गए हैं, या अपने आसपास अगर कहीं पार्क में कोई गंदगी फैला रहा है तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही उन्होंने काम करना शुरू किया और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से आप उन्हें हर समय कोसिए मत, क्योंकि हमारी जो अल्फा जेन है ना वो बहुत होशियार है, तो आप भी उनके साथ इस होशियारी में पार्टिसिपेट करिए। फिलहाल मैं आपके लिए एक ट्रैक चला देती हूँ, एंजॉय करिए, आते हैं फिर से बातें करेंगे ढेर सारी।

मैं कह रही हूँ अगर गलती करी दी है तो मान लो ना बेटा है, इसमें गाना गाने की क्या जरूरत है। एक तो गलती करते हो ऊपर से गाना गा गा कर नाचते हो, है ये तो गंदी बात, गंदी गंदी गंदी बात है। अरे दादी बस करे ना, हो गया। इसी प्रकार के कई टाइप के जो व्यक्तित्व है ना, बीच बीच में उभर के आते रहते हैं, आपको इनको झेलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा नाम है शालिनी और शो चल रहा है क्या अल्फा जेन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अल्फा जेन की खूबियों की, हम बात कर रहे हैं कि वो जो ये जो जनरेशन है ना, इसे हम इको जनरेशन भी कहते हैं, बिकॉज दिस जनरेशन केयर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज।

और वो इसे लेकर काम भी कर रहे हैं, वो इस बारे में जागरूक हैं और अलग अलग तरीके से जिस तरह से भी वो काम कर सकते हैं कर रहे हैं। वो कहीं पर नदी की सफाई कर रहे हैं, कहीं पर जो है वो अपने पार्क की सफाई कर रहे हैं, कहीं वो सड़कों पर फैलाने वाले गंदगी फैलाने वाले लोगों को जो है वो रोकते हैं टोकते हैं, या कहीं भी छोटे से छोटा काम जो वो कर सकते हैं अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो आपको उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के जो असर हैं उनको कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए या फिर और ज़्यादा ये ना बढ़ पाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बचाना चाहिए पानी और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जिसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है वो पानी जो नल बहता रहता है अक्सर उसे आप बंद कर सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा तो पानी बह जाएगा, क्या ही हो जाएगा, है ना, दुनिया में इतना सारा पानी है, लेकिन बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप सोचिए कि आपके पास अभी पानी अवेलेबल है और अगर कोई दिन ऐसा हो कि आप जो है वो शावर ले रहे हो और अचानक से शावर की तरफ देखें पानी गायब हो जाए, हाँ तो आप बताइए आपको अच्छा लगेगा कि आप नहा भी ना पाए ठीक से। तो अगर आप जो है अभी ध्यान नहीं रखेंगे ना तो ये दिन आने में समय नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं, कुआं खुदवा लूंगा मैं तो आप जो है ना ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं, आप कुआं तो खुदवा लेंगे चलिए बात ठीक है, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर लेवल है ना वो बहुत डाउन चला जाएगा और जो कि जा ही रहा है। तो फिर आपको इस बात का अंदाज़ा है कि कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालने में कितना जो है वो मेहनत लगती है, है? आपने एक बार खुदवा लीजिए कुआं, ठीक है तैयार रहिए, फिर मज़ा आएगा आपको। पानी सेव करिए, एनर्जी सेव करिए, ठीक है, और शावर्स ना छोटे छोटे लीजिए, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि पानी जो है वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, ठीक है जी। अभी फिलहाल ही एंजॉय करिए ट्रैक, उसके बाद मिलते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें क्लाइमेट चेंज को लेकर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अनुपम पाठक। हम लेकर आ गए आपके लिए ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन की कि कैसा रहा अभी तक का सफर। तो आपको बता दें कि वॉलीबॉल के अंदर भारत ने साउथ कोरिया को 3-1 से इन द मेन्स वॉलीबॉल 5th to 8th प्लेस क्लासिफिकेशन मैच में हराकर जीत दर्ज कर ली। इंडिया वन द फर्स्ट टू सेट्स 25-16, 25-20 बिफोर कोरिया पुल्ड वन बैक 25-23। इंडिया देन क्लोज द मैच बाय विनिंग द फोर्थ सेट 25-23।
1: और अब पांचवें छठे स्थान के लिए भारत को मुकाबला करना होगा, लेकिन इस समय सारी निगाहें जो भी खेल प्रेमी हैं उनकी इस बात पे जमी है कि क्या होगा जब हॉकी का मैच शुरू होगा और जब ख़त्म होगा तो स्कोर लाइन क्या होगी। हर एक के मन में दिल में तमन्ना यही है कि भारत की लड़कियां एक स्वर्ण पदक और लेकर आएं। और आज के दिन की जैसे शुरुआत हुई थी स्वर्ण पदकों की झड़ी के साथ, एक के बाद एक के बाद एक स्वर्ण पदक आए हैं, तो भारत की लड़कियाँ हॉकी में भी स्वर्ण पदक लेकर आएँ। शुरुआत हो गई है, अभी अभी बस सीटी बजी है, लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है और एक मिनट हुआ है। जाहिर सी बात है स्कोर 0-0 है, अभी तक कोई भी मूव नहीं बना है इस समय तक किसी भी टीम की ओर से।
0: राइट, होपिंग दैट इंडिया पुट अप अ गुड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अगेंस्ट चाइना, बिकॉज चाइना विल नॉट प्रूव टू बी एन ईजी कॉम्पिटिटर टूडे, स्पेशली इन द फाइनल। बट क्योंकि आज अनुपम ने बताया कि किस तरह से दिन की शुरुआत रही, मेडल्स की बौछार होती रही है आर्चरी में, आज हमने देखा शुरुआत हुई दिन से जहाँ वुमेन्स रिकर्व टीम हमारे लिए गोल्ड लेकर आई। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेन्स रिकर्व टीम फाइनल्स के अंदर भी हमें सिल्वर मेडल

0: आज मिला। वहीं अभी रिसेंटली कंक्लूडेड रेसलिंग बाउट्स में सुजीत कलकर वाज अप अगेंस्ट अब्दुल मजीद कुदीव हु इज फ्रॉम तजाकिस्तान इन द मेंस फ्रीस्टाइल 65 केजी फाइनल, वेयर सुजीत कलकर बॉट इंडिया द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग हिज तजाकिस्तान ओपोनेंट 10-9, मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक बीइंग 9-2 डाउन। जी हां, 9-2 से पीछे थे और वहां से कमबैक करके फाइनली ही वाज एबल टू डिफीट हिज तजाक ओपोनेंट 10-9। व्हाट बेटर देन दैट। एंड आल्सो लेट्स टेल यू ऑल दैट अभी दीपांशी ऑल्सो हैज केप्ट द मेडल होप्स फॉर इंडिया अप एंड अलाइव बिकॉज शी हैड बीन डोमिनेटिंग कंबोडियाज डीत समनांग इन द वुमेन्स 50 केजी रेपचार्ज। शी सिक्योर्ड अ 10-0 विक्ट्री बाय टेक्निकल सुपीरियरिटी अर्लियर इन द डे टू बुक अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल बाउट। और उनका भी अब बाउट आने वाला है थोड़ी ही देर में दोस्तों एट 3:58 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो ही इज होपिंग एंड कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड अनुपम दैट दीपांशी शुड बी गेटिंग अस अ ब्रॉन्ज मेडल टुनाइट।
1: बिल्कुल आ सकता है और आज वो लकी भी रही हैं इस मामले में कि जापान की साकी मुई से उनका मुकाबला हुआ था, पहले ही जो उनकी बाउट थी वही हार गई थी आज वो। लेकिन 50 किलो के इसमें दीपांशी को अगर आपने देखा है क्या लगता है, इतनी छोटी सी बच्ची 16 साल की लड़की और वो कमाल करके दिखा रही है। इस समय देश की सबसे उभरती खेल प्रतिभाओं में अगर आप गिनती पे गिनिए नाम, उंगलियों पर गिनने की कोशिश करिए तो उसमें दीपांशी का नाम आता है। तो जो जापान की पहलवान थी वो पहुंच गई फाइनल तक। तो फिर मौका मिला रिपेचैज में दीपांशी को जहां उसने कोई चूक नहीं की और ब्रॉन्ज मेडल के लिए उसका मुकाबला होना है। लगता है मुझे इस हॉकी का मैच जब तक ख़त्म होने वाला होगा तब तक शायद वो बाउट भी हो जाए। और आपने सुजीत की बात की, जी सुजीत कलकल की बात तो हम बार बार बार बार करना चाहेंगे। आज सबको लगने लगा था, हम लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये बाउट तो सुजीत के हाथ से गई। 0-2-9 से पीछे था, इसके पहले 8 अंक हो चुके थे और उसको क्या करेगा। लेकिन एक ही आदमी था जिसको भरोसा था, नहीं अभी मैं वापसी कर सकता हूँ, एक भी अंक और गंवाते तो फिर मामला पलट जाता। लेकिन उन्होंने वो एक अंक आने ही नहीं दिया और एक के बाद एक वो दांव चले, वो मूव किए पैर के ऊपर, ख़ास तौर से उनके जो 3 आक्रमण उन्होंने किए थे जिसपे 2-2-2-6 अंक उन्होंने कमाए, कुल मिला के एक साथ उन्होंने 8 अंक एक के बाद एक कमाए। और जब मुकाबला समाप्त हुआ उस समय उनका हाथ ऊपर किया गया, स्वर्ण पदक, गजब बाउट, गजब कुश्ती। हमें याद आ रही थी ये बजरंग पुनिया, ये भी इसी 65 किलोग्राम भार वर्ग में होते थे, उसके पहले योगेश्वर दत्त। तो ये जो एक सिलसिला है एक से एक बेहतरीन पहलवान निकालने का, बजरंग पुनिया की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आगे निकाला है।
0: Right, and in boxing, very quick updates coming to you. The best news of the day for all our listeners who are tuning into Akashvani right now, ki Bharat ki Lavlina Borgohain also bagged the gold medal by defeating China's Bao Zi in the women's 75-kilogram gold medal bout at the Asian Games today. A beautiful birthday present for the birthday girl who also scripted history by becoming only the second Indian woman boxer to win an Asian Games gold medal after the legendary MC Mary Kom. Unke saath saath Parveen Hooda also held a nerve in a closely fought final against Chen Nien Chen, and she was also able to win her bout by a 3-2 split decision and secured the gold medal in the women's 65-kilogram category. And then finally, we saw Ankush Pangal also up against Kim Min Seong in the men's 80-kilogram final bout, where he was able to defeat him straight down 4-0 and thereby bring in the gold medal for India.
1: And बहुत सुनहरा क्षण है, इसी समय अंकुश पंघाल के गले में स्वर्ण पदक पहनाया जा रहा है और राष्ट्रगान की धुन बज रही है जापान में।
0: With that, it's a wrap from me, Sakshi Mandwala and Anupa Pathak. For now, we'll be tuning in back again at 5:30 PM with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. For now, thank you so much for tuning in. Goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं, किसी को आंख वांग नहीं मारता, ऐसा काम मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी।
1: तो यहाँ पर जो काम अच्छे हैं उसी की बात कर लेते हैं फिर। क्या बात, हम जो बातें कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारी जिंदगियों पर बहुत असर डाल रहा है, तो उसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अल्फाजन शो का नाम है और आज अल्फाजन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, में आज बात हो रही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज का जो असर है उससे हम बच सकते हैं या आने वाली जनरेशन्स को उससे बचा सकते हैं। और इसके लिए जो हमारी अल्फाजन है वो इको जनरेशन बनकर उभर रही है और वो ध्यान दे रही है। वो क्यों ध्यान दे रही है?
0: क्योंकि उन पे असर भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, उनको अर्ली फेज में लाइफ के ये सब झेलना पड़ रहा है, तो उनको पता है कि अगर ध्यान नहीं दिया ना अभी से तो आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला ही।
1: तो इसीलिए, मजाक की बात नहीं, सच बात है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको ध्यान कैसे देना है? आपको जो है वो रिड्यूस वेस्ट और रिसाइकल पर ध्यान देना है, यानी कि आपको जो कचरा है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है और किस तरह से चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे आपको ध्यान होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करते थे, जो कि फिर से एक बार ट्रेंड में आ रहा है और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को। और अपना जो कचरा है उसे सॉर्ट करिए, मतलब कि उसको सेग्रीगेट करिए, उसे बांटिए कि कौन सा कचरा जो है वो आप उसको उसको जो है वो अपने, जैसे किचन वेस्ट है आपका, आप उसको अपने खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाग में या बगीचे में या अपने गार्डन में, जो भी आपके गमलों में आप उसे खाद का बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर का रीयूज करिए।
0: ऐसा नहीं चलेगा कि मैं ना शार बनने की कोशिश कर रहा हूँ और जो है वो पेपर के गोले बना बना के फेंक रहा हूँ, तो ऐसे शार नहीं बनते।
1: शार बनने के लिए आपको जो है वो शायरी की समझ होनी चाहिए, या कविता लिखने के लिए आपको कविता की समझ होनी चाहिए। पेपर के गोले बना बना कर गेंद खेलने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान रखना है। और हमारी जो अल्फा जनरेशन है उनको सल्यूट बनता है क्योंकि वो जो है वो जगह जगह कैंपेन्स चला रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे हैं, वो अपने क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट का असर आप देख ही रहे होंगे जगह

जगह बाढ़ें आ रही हैं, कहीं पर जो है वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं आग लग रही है जंगलों में, तो ये जो है अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा और इसका असर हम सब पे पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ इस बारे में जानिए मत, इस बारे में कुछ करिए भी, ठीक है जी। फिलहाल आप इंजॉय करिए सॉन्ग।

0: होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

हेलो डियरीज, वेलकम बैक ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6। आप हैं मेरी यानी शालिनी के साथ और शो चल रहा है अल्फा जन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और थैंक गॉड कहने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम बात किस बारे में कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इको जनरेशन की बात, यानी कि हमारी अल्फा जन की बात कर रहे हैं, जो कि इको जनरेशन भी कही जा रही है, क्योंकि दिस जनरेशन केयर्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमें परेशानियाँ हो रही हैं, तरह तरह की जो है वो बाढ़ें आ रही हैं, आग लग रही हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसका असर हमारी इस धरती पर पड़ रहा है और हम पर भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर धरती है तो हम हैं। इसीलिए वो जो है इस बारे में जागरूक हो गए हैं और तरह तरह की चीज़ें जो है वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, वो ये जानते हैं कि ये सब जो हैं वो इस पूरी चेन का, इस लाइफ चेन का हिस्सा है। अगर आपको ये लगता है कि जानवर या कीट पतंगे ये सब जो है वो कोई मायने नहीं रखते, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हाँ, तो इसीलिए ना आप जो है मधुमक्खी को पकड़ के इसका डंक निकाल कर खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत किया करिए, क्योंकि अगर मधुमक्खी का गुस्सा आ गया ना तो वो भी कहना जानती है कि छोटे बेटा जान के ना कोई आँख दिखाना रे, टपी टपी टप टप, टपी टपी टप टप। तो इसी तरह से टप टप करके जब आपको डंक मारेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। और जो आपका जो अच्छा लगेगा आपको कि आपका जो मुंह है सुंदर सा मुखड़ा वो सूज जाए एकदम, हाँ, भालू जैसा हो जाए, ऐसा मत करिए। तो इसीलिए जो हमारी अल्फा जन है उनको जो है वो शाबाशी देना बनता है, क्योंकि वो ध्यान रख रहे हैं और वो जगह जगह सोशल मीडिया पर जो है वो कैंपेन्स भी चला रहे हैं और किस किस तरह की चीज़ें साफ सफाई को लेकर भी वो जागरूक हैं। पर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ इस चीज़ में भागीदार हैं? वो जो है वो उन ग्रीन हैबिट्स को अपना रहे हैं और अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को भी एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उनका साथ दे रहे हैं? या यूँ कह देना कि ऐसे करने से क्या ही हो जाएगा, इतनी छोटी है, मतलब अकेले इंसान के करने से क्या होगा, अकेले के करने से ही होता है। आप ये ना सोचें कि एकदम बहुत बड़े लेवल पर अगर कोई कैंपेन चलेगा तभी उसका फ़ायदा है। बड़े लेवल पर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत तौर पर तो कोई शुरुआत कर ही सकते हैं ना। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो है वो कड़ी बन जाती है। फिलहाल इस ज्ञान की बात मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक ट्रैक सुनाती हूँ, सुन लीजिए।

बात है, मैं मजा ही आ गया है। डियरी आप है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर सुन रहे हैं शो अल्फाजन। मैं हूँ शालिनी और हम बात कर रहे हैं, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में, अल्फाजन शो का नाम है तो आपको पता ही होगा कि आज हम बात कर रहे हैं हमारी अल्फाजन इको जनरेशन के बारे में, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत जागरूक है और उसके लिए काम भी कर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या सिर्फ देखे नहीं बेटे बेटे, बस अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल के ना बस ये शेयर कर रहे हैं कि आज ना मैंने धमाल की सब्जी बनाई, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ खाना खाने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रहना है देश में आपको, तो आप ही को इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है वो छोटे स्तर पर, बहुत छोटे लेवल पर भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप नेचर का ख्याल रखें, अगर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम आप उन्हें बर्बाद ना करें, उन्हें काटें नहीं। और इसके अलावा जानवरों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि वो भी इस चेन का हिस्सा है। कोई भी एक चेन में गड़बड़ी आती है ना, तो उसका असर क्लाइमेट पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि सब इस धरती का हिस्सा हैं, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो, तो सब इस चेन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप जो है वो मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक बेहतर इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं बेहतर क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने के लिए, वो आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों को उससे प्रेरणा मिल सकती है। इसके अलावा आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, अपने छोटे छोटे कैंपेन को बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी शुरुआत जो है वो अल्फाजन ने करती है, आप उसका हिस्सा बने और उसके साथ साथ आप उनका साथ दें उसमें, उन्हें ये ना कहें कि सिर्फ तुम्हारे करने से क्या होगा, क्योंकि शुरुआत ना कोई एक ही इंसान करता है, फिर लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि मैंने कपड़े का थैला खरीद के लाना है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना मार्केट। हाँ, मैं सिर्फ ज्ञान बांट नहीं सकती ना, मुझे उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। आप भी खरीदिए और ध्यान रखिए अपने क्लाइमेट का, क्योंकि क्लाइमेट सही है तो आप हैं, ठीक है जी। सो ख्याल रखिए, ते गाना सुनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ अल्फाजन शो में, शालिनी आपसे लेती है विदा, ख्याल रखिए, टेक द वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। स्मिथ ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में सहयोगी पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली स्टेशन और बाराखंबा रोड शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 65 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर परवीन हुड्डा और महिलाओं के डिंगी इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर नेत्रा कुमानन को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम को भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अंकिता भागत, कुमकुम अनिल मोहन और कीर्ति को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 15 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 75 पदक जीते हैं। कटरा बनिहाल सेंक्शन पर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और वंदे भारत ने चिनाब और अंजी पुलों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दिल्ली, शाम के 5 बज चुके हैं। आज एक अगले घंटे में हम बात करेंगे दिल्ली के मौसम की, ट्रैफिक की, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की और दिल्ली एनसीआर में आज से शुरू या चल रहे कल्चरल इवेंट्स की। वैसे आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज पता है आपको कि आज सिर्फ 2 अक्टूबर नहीं है, आज हम याद कर रहे हैं ऐसे 2 महान व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपने अपने तरीके से भारत की कहानी को दिशा दी। एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को है। एक ने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शक्ति दिखाई और दूसरे ने अपने सरल जीवन, कर्तव्य और देश के प्रति समर्पण की से एक मिसाल कायम की। और आज का दिन एक और महत्वपूर्ण पहचान रखता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो आज की हमारी शाम होगी पीस की, पेट्रियोटिज्म की, सिंप्लिसिटी की, स्वच्छता की और दिल्ली की संस्कृति की। बहुत ही अच्छा चल रहा है ये प्रोग्राम, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भाई आज आप मेरे साथ रहिए और बहुत बहुत अच्छे गाने सुनाऊंगी। मैं हूँ सुनीता शाहबादी और ये है सिरेलाइट्स। आज अगले एक घंटे में हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा, दिल्ली के मौसम की, ट्रैफिक की, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की और दिल्ली एनसीआर में आज से शुरू या चल रहे कल्चरल इवेंट्स की। और सबसे ख़ास बात, आज हम थोड़ा रुक कर याद करेंगे उन दो महान भारतीयों को जिनका जन्मदिन एक ही दिन आता है। सो स्टे विद मी, दिस इज़ 5 PM स्पेशल 2 अक्टूबर। मैं हूँ सुनीता शाहबादी।

दो महान व्यक्तित्व, एक तारीख, 2 अक्टूबर, भारत के कैलेंडर की शायद सबसे मीनिंगफुल डेट्स में से एक। आज है महात्मा गांधी की 157वीं जयंती। गांधी जी का संदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, सत्य, अहिंसा और शांति, इन विचारों ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई और इसी वजह से शायद यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मान्यता दी। यानी आज की तारीख हमें एक बहुत सिंपल बात याद दिलाती है, वायलेंस का जवाब हमेशा वायलेंस नहीं होता, कभी कभी शांत रहना भी स्ट्रेंथ होता है। और इसी दिन जन्म हुआ था

0: रहा है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

टाइम हुआ है 5:13 और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शामादिये। इनफैक्ट अब 14 मिनट हो चुके हैं। सिरिलाइट्स में आज हम बात कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं जो आगे चलेंगे, क्योंकि अक्टूबर से एक तो फेस्टिवल्स भी शुरू हो जाते हैं, मौसम में थोड़ी थोड़ी सी प्लेजेंट होना शुरू हो जाता है और थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो बाहर आप जा सकते हैं, इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इवेंट्स को अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, आपकी दिलचस्पी किन इवेंट्स में है। फिलहाल हम बात करते हैं स्वच्छता से समृद्धि की ओर। इसका अर्थ क्या है वैसे? इसका अर्थ है कि साफ सफाई और स्वच्छता केवल सुंदरता या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश और समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गंदगी से फैलने वाले रोगों जैसे डायरिया की रोकथाम होती है, जिससे इलाज पर खर्च वाला पैसा बचता है और नागरिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है। अब ये तो अंडरस्टूड है। बेहतर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से स्वास्थ्य का बोझ कम होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और स्वच्छता उत्पादों व सेवाओं का एक नया बाजार तैयार होता है। ये जन आंदोलन लोगों की आदतों और व्यवहार में बदलाव लाकर स्वच्छता को एक सामूहिक स्वभाव और जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। स्वच्छता से एक स्वस्थ, सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण होता है, जो स्वच्छ भारत, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करता है। तो ये आप ज़रूर देखिए कि सिर्फ अपने घर को ही साफ नहीं रखना है, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जगह आपको गंदगी नज़र आती है, वो साफ रखिए ज़रूर। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चेंज हम ही से आ सकता है। जब हम शुरुआत करेंगे तभी बदलाव आएगा। तो सिर्फ अपने घर तक सीमित मत रहिए और बाहर कूड़ा मत फेंकिए, और ये ज़रूरी है। एक गाना फ़िलहाल बजा रही हूँ, आप है मेरे साथ, मैं हूँ सुनीता शावादी इन सिरिलाइट्स।

0: अब बात करते हैं हमारी दिल्ली की। अक्टूबर शुरू हो चुका है लेकिन दिल्ली की गर्मी ने अभी पूरी तरह से हमें गुड बाय नहीं कहा है। आज 2 अक्टूबर के लिए फोरकास्ट में दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम करीब 23 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान हेजी रहने की संभावना है, तो अगर आप शाम को, मतलब अब शाम हो ही चुकी है और शाम हो जाए, तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं कम्फर्टेबल क्लोथ्स रखें, पानी साथ रखें और धूप में लंबे समय तक रहने से बचें। शाम के समय मौसम थोड़ा कम्फर्टेबल महसूस होता है, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि थोड़ा थोड़ा प्लेजेंट होना शुरू हो गया शाम के टाइम पे, लेकिन टेम्परेचर में अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद अभी नहीं है। सो आज का दिल्ली वेदर इज इन वन लाइन इफ आई वुड से इज अक्टूबर इज हियर बट दिल्ली इज स्टिल वार्म। और अब जिस चीज़ का नाम आते ही दिल्ली इट्स थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, वो है ट्रैफिक। शाम के 5 बजे के बाद दिल्ली की रोड्स नेचुरली बिजी हो जाती हैं और आज कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ और पब्लिक मूवमेंट की वजह से सेंट्रल दिल्ली और इवेंट एरियाज़ की तरफ जाते समय एक्स्ट्रा टाइम रखना समझदारी होगी। ख़ासतौर पर ध्यान रखें पुराना किला मथुरा रोड साइड पर। आज शाम 6 बजे से इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव भी हो रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें और कुछ मेट्रो स्टेशंस बंद भी रहेंगे, उसका भी ध्यान रखें। अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें। और बस मैं एक बात कहूंगी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ोन आपके हाथ में नहीं, आपकी पॉकेट में होना चाहिए। दिल्ली प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ, ये गाना भी आपके लिए और ये है सिरिलाइट्स।
1: There's something I wanna tell you, girl. I don't know, I don't.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: अब समय है एशियन गेम्स 2026 के अपडेट का।
7: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
8: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है अनुपम पाठक। एंड द बिग न्यूज जो हम दोनों आपके लिए अभी लेकर आ रहे हैं वो ये है कि भारतीय महिलाओं का फाइनल गोल्ड मेडल का मुकाबला आज चल रहा है भारत और चाइना के बीच में।
9: जी बिल्कुल, जिस समय हमने अपनी पिछली अपडेट खत्म की थी उसी समय शुरुआत हुई थी इस मुकाबले की। भारत स्वर्ण पदक की तलाश में, जो उसने आखिरी बार 1982 में जीता था। वहीं चीन है डिफेंडिंग चैंपियन। भारत पूरी ताकत लगा दे रहा है कि चीन को आगे ना पहुंचने से, और मजे की बात कह रही है आज लगता है जो किस्मत की देवी होती है वो भी मेहरबान है, लेकिन वो मेहरबान उन पर होती है जो मेहनत करते हैं। और भारतीय टीम पूरी मशक्कत के साथ इस मैच में बने रहने का प्रयास कर रही है। हुआ यह है कि पहले क्वार्टर में ही बहुत शानदार मौका मिल गया भारत को और भारत ने कोई चूक नहीं की। और लाल रंग सियामी ने अब जो अपना 200वां मैच खेल रही हैं आज, उन्होंने एक रिकर्व पास पर क्या जबरदस्त शॉट लगाया जो किसी भी गोलकीपर को रोकना बहुत मुश्किल होता, और भारत 1-0 से आगे हो गया। उसके बाद से भारत डिफेंस में ज्यादा है, उतने मूव नहीं बना रहा है। चीन पूरी कोशिश कर रहा है। 5 पेनल्टी कॉर्नर चीन को मिल चुके हैं, भारत के हिस्से में सिर्फ एक आया है। और आप विश्वास करेंगे, दूसरे क्वार्टर में एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला चीन को, और उसको सविता पूनिया ने एक बिल्कुल जिसको कहते ना अकल्पनीय सा सेव करके दिखाया, जैसे उनको पता था कि ये शॉट कहाँ आने वाला है और किस जगह आएगा। अपने ग्लव्स में गेंद को रोका और चीन को बराबरी करने से रोक दिया। उसके बाद से चीन लगातार हमले कर रहा है, लेकिन भारत अपनी इस लीड को बरकरार रखे हुए है। पोजिशन चीन के पास ज्यादा है, लेकिन स्कोर लाइन भारत के पक्ष में। अब हाफ टाइम हो चुका है और दूसरे हिस्से में यानी जो तीसरा क्वार्टर होता है उसका भी आधा वक्त हो चुका है। लीड अभी भी 1-0 चीन।
8: Yeah, hoping that the stars align today for the Indian hockey women's team and that we are able to get the gold in this. All eyes are right now on the screen and hopefully in the next maximum 30 minutes, 20 to 25 minutes, we'll get to have the result. लेकिन आपको ये बता दें क्योंकि आज के दिन का ये गोल्ड का मुकाबला है तो आज काफी सारे पदक भी भारतीयों के नाम लगे हैं अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स में। आर्चरी के अंदर हमने देखा कि कैसे वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम आज गोल्ड मेडल लेकर आई हमारे लिए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो भारत इस तरह के इवेंट के फाइनल्स में भी पहुंचा। मैं बात कर रही हूं वुमेन्स रिकर्व आर्चरी टीम की, और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। वहीं रिकर्व मिक्स टीम फाइनल्स और मेंस रिकर्व टीम फाइनल के अंदर आज भारत को 2 सिल्वर भी मिले। एंड द अमेजिंग थिंग हैज बीन कि डिंजी के इवेंट में भी यानी सेलिंग के इवेंट में भी भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया नेत्रा कुमानन ने। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैड अदर इवेंट्स इन विच द मेडल्स केप्ट ऑन पोरिंग इन। इन बॉक्सिंग वी हैड इंडियाज लवलीना बोरगोहेन हु गॉट the gold for India in the 75 kilogram category defeating China's Bao Zi, and then uske baad humne dekha Parveen Hooda bhi hamare liye aaj gold lekar aayi in by a split decision of 3-2 that went in favor of the Indian. And finally, we had

0: अंकुश पंगल हु वाज अप अगेंस्ट किम मिन सियोंग इन द मेंस 80 किलोग्राम फाइनल और उसके अंदर भी आज भारत को गोल्ड मेडल मिला। तो ओवरऑल अनुपम एक अभी मैंने छोड़ दिया इवेंट रेसलिंग का आपके लिए, लेकिन दिन बहुत खूबसूरत रहा है।
1: बहुत खूबसूरत दिन आज पदकों के हिसाब से अब तक का सबसे बढ़िया दिन रहा है। और ये जो स्वर्ण पदक है ये सुजीत कलकल ने दिलाया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में। और क्या जबरदस्त उन्होंने मैच खेले, एक के बाद एक के बाद एक चार बाउट जीते, फाइनल में पहुंचे। और उसके पहले सेमीफाइनल में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन को हराया। शायद उनकी वो कसक दूर हो गई होगी जिसमें वो ओलंपिक क्वालिफाई करने में बस किस्मत की वजह से चूक गए थे। एक बार तो हवाई जहाज ने डिले कर दिया, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में हिस्सा लेने ही नहीं जा पाए थे, तो शायद वो कसक खत्म हो गई होगी। और उसके बाद स्वर्ण पदक जीत कर तो हो ही गई, क्योंकि क्या जबरदस्त उन्होंने फाइनल खेला तजाकिस्तान के अब्दुल माजिद कुदीव के विरुद्ध। एकदम पीछे थे, किसी को शायद उम्मीद न रही हो कि अब जीत सकते हैं। 7 अंकों का अंतर आ गया था, एक अंक और चाहिए था विपक्षी को, वहां से वापसी की और एक के बाद एक अंक बनाते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में किया।
0: जी एंड वेरी क्विकली टू सम इट अप, अभी भी थर्ड क्वार्टर समाप्त होने में दोस्तों अमूमन 4:30 ही बचे हैं, और अगर ये क्वार्टर भी गोललेस जाता है तो भारत अपनी एक गोल की लीड बरकरार रखेगा चाइना के ऊपर। चाइना को अभी भी एक गोल करना होगा हॉकी के इस फाइनल मैच में, जो गोल्ड मेडल का मैच हो रहा है भारतीय महिलाओं का हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। तो आखिरी क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि चाइना हो सकता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव आए, बिकॉज दे वुड देन वांट टू एटलीस्ट टाई द स्कोर सो दैट इट कैन गो इनटू शूट आउट। लेकिन वो तो समय ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आज भारत ये गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहता है तो पहले तो 1982 के बाद अब ये पहली बार होगा जब भारत फिर से एक गोल्ड मेडल लेकर आएगा हॉकी में, और उसके साथ साथ भारत फिर मेडल टेबल में भी दोस्तों 16 गोल्ड मेडल्स की बदौलत हो सकता है कि उज्बेकिस्तान के साथ स्वॉपिंग कर पाए। अभी भी उज्बेकिस्तान के पास 17 गोल्ड मेडल बने हुए हैं, भारत के 15 हैं। भारत को 2 गोल्ड मेडल दौड़ जीतने उज्बेकिस्तान के साथ बराबरी करने में, और उसके बाद विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस, बट एटलीस्ट दिस गोल्ड विल डेफिनेटली हेल्प इंडियाज होप्स ऑफ गोइंग अप ऑन द मेडल टैली इंक्रीज। उसके साथ अभी फिलहाल वक्त हो गया आपसे अलविदा कहने का। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ अनुपम पाठक। हम आपसे दोबारा एक बार जुड़ेंगे शाम को 6:30 विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम उनकी सादगी और ईमानदारी तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की एक छोटी सी बात शायद बहुत कम लोग पता हो। कहा जाता है प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शास्त्री जी अपने परिवार के लिए सरकारी सुविधाओं को लेकर बेहद सजग रहते थे। एक बार उनके बेटे ने सरकारी कार का इस्तेमाल किया तो शास्त्री जी ने उसका भी हिसाब लगवाया और उतनी रकम सरकारी खाते में जमा करवाई। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री और अपने घर की गाड़ी के कुछ किलोमीटर का भी हिसाब। यही वो ईमानदारी थी जिसने उनके पद को नहीं बल्कि उनके चरित्र को बड़ा बनाया। शायद इसीलिए शास्त्री जी आज भी सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सादगी और जिम्मेदारी के मिसाल के रूप में याद किए जाते हैं।

ऑल राइट दिल्ली, आज शाम 6 बजे से इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव शुरू हो रहा है, इसलिए पुराना किला और आसपास के अप्रोच रोड्स पर शाम के समय मूवमेंट बढ़ सकती है। फेस्टिवल 2 से 4 अक्टूबर तक चल रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली यानी कनॉट प्लेस और न्यू दिल्ली साइड जाते समय भी शाम की ट्रैफिक कंडीशंस को ध्यान में रखें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक एडवाइजरी के अनुसार आश्रम चौक से सराय काले खां की और स्लो मूवमेंट की स्थिति 2 अक्टूबर तक यानी आज तक ही जारी रहने थी, इसलिए इस कॉरिडोर पर एक्स्ट्रा टाइम रखकर चलना अभी भी बेहतर है। मेरी तरफ से एक छोटी सी रिमाइंडर, प्लीज डोंट यूज योर फोन व्हाइल ड्राइविंग, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए और रोड पर थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि रीचिंग 5 मिनट्स लेट इज बेटर देन नॉट रीचिंग सेफली। सो दिल्ली, ड्राइव सेफ प्लीज।

0: आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना।
1: और दोस्तों अब आते हैं आज के एक बेहद इम्पॉर्टेंट मैसेज पर, स्वच्छता ही सेवा। 2026 का स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहा है और इसका थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इसका मतलब बहुत सिंपल है, स्वच्छता में पार्टिसिपेशन हम सबका। इस कैंपेन में क्लीनलीनेस ड्राइव्स

in public places, waste management, citizen participation, सफाई, मित्र welfare and waste to wealth जैसे areas पर focus किया जा रहा है. और आज 2 अक्टूबर campaign में खास महत्व रखता है. Rural areas में special ग्राम सभा और urban areas में special council meetings रखी गई हैं, जिनमें cleanliness outcomes और waste management जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है. लेकिन रेडियो पर हम इसे थोड़ा और सिंपल बनाते हैं. आज कोई बड़ा resolution लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ये कि कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना, वेट और ड्राई वेस्ट को अलग करना, अपनी आसपास की जगहों को साफ रखना और सैनिटेशन वर्कर्स के काम का सम्मान करना. यही है स्वच्छता में सहभाग. क्योंकि क्लीन इंडिया सिर्फ एक कैंपेन से नहीं बनेगा. इट विल हैपन व्हेन क्लीनलीनेस बिकम्स अ हैबिट.

और अब थोड़ा मूड बदलते हैं, क्योंकि दिल्ली में अक्टूबर का मतलब है कल्चर, आर्ट, बुक्स, म्यूजिक और परफॉर्मेंसेस का सीजन. यस, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंद्रप्रस्थ नृत्य महोत्सव आज से यानी 2 अक्टूबर से पुराना किला में शुरू हो रहा है. ये 4 अक्टूबर तक चलेगा और इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करेगा. आज परफॉर्मेंस 6 बजे से है और हिस्टोरिक पुराना किला में, और इसके बीच क्लासिकल डांस. दैट्स क्वाइट अ ब्यूटिफुल दिल्ली इवनिंग, राइट. लॉक द बॉक्स बुक फेयर, बुक लवर्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग इवेंट. लॉक द बॉक्स बुक फेयर आज से GMR एरो सिटी में शुरू हो रहा है और 11th अक्टूबर तक चलेगा. यहाँ फिक्शन, रोमांस, थ्रिलर, मिस्ट्री, नॉन फिक्शन, चिल्ड्रंस बुक्स, क्लासिक्स और बहुत सी दूसरी कैटेगरीज की बुक्स मिल रही हैं. और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, फिल अ बॉक्स विद बुक्स एट अ फिक्स्ड प्राइस. तो अगर बुक्स आपकी फेवरेट कंपनी है, अक्टूबर में एरो सिटी तरफ जाना इंटरेस्टिंग हो सकता है और वहाँ पे वॉक करना भी बहुत अच्छा लगेगा. सीरियसली, इंटैक हेरिटेज वॉक संजय वन में, और आज ही शाम 5 बजे से 7 बजे तक संजय वन में एक हेरिटेज वॉक भी आयोजित हो रही है DDA और इंटैक दिल्ली चैप्टर के साथ. नेचर के बीच दिल्ली के हेरिटेज को एक्सप्लोर करने का एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है ना. आज की शाम अगर हमें गांधी जी और शास्त्री जी से 2 अलग बातें याद रखनी होंगी, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो पीस और नॉन वायलेंस की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, और शास्त्री जी से हमें ये याद दिलाते हैं कि सिंप्लिसिटी, ड्यूटी और डेडिकेशन भी हमें अपने आप में बहुत पावरफुल वैल्यूज देती है. दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है और अपने आप में एक सुंदर कोइंसिडेंस है. एक तरफ अहिंसा और दूसरी तरफ जय जवान जय किसान, दोनों में एक कॉमन भावना दिखाई देती है, देश के प्रति जिम्मेदारी. और आज के समय में शायद यही सबसे जरूरी बात है कि हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, अपने शहर के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए और एक दूसरे के लिए. तो दिल्ली अब शाम और गहरी हो रही है, कहीं पुराना किला में क्लासिकल डांस की तैयारी होगी, कहीं एरो सिटी में बुक्स के बीच लोग अपनी इवनिंग प्लान कर रहे होंगे, वाह वाह वाह वाह, और कहीं संजय वन में लोग हेरिटेज और नेचर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, कहीं लोग अपने नेबरहुड में स्वच्छता एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन रहे होंगे. यही तो है दिल्ली, हिस्ट्री भी, हेरिटेज भी, कल्चर भी और अ वेरी बिजी मॉडर्न लाइफ भी. बस इसी बिजी लाइफ में थोड़ा काइंडनेस, थोड़ा पेशेंस और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जगह रखी है, राइट दिल्ली. और अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी, तो एक खूबसूरत और मीनिंगफुल शाम अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है. तो बस हमें अपनी बातें याद रखनी है, नॉन वायलेंस की, स्वच्छता की, दिल्ली के मौसम की, ट्रैफिक की, इस बारे में हमने बात की, दिल्ली एनसीआर में कल्चर की, और बस एक छोटी सी बात, साफ शहर बनाने के लिए हर किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी शुरुआत खुद से करनी काफ़ी होती है. अपने आसपास क्लेनलीनेस रखिए, रोड पर पेशेंस रखिए, अपने साथ वालों के प्रति काइंडनेस रखिए और देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए. मैं हूँ सुनीता शाहबादी, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की. विनम्र श्रद्धांजलि उनको, और आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की भावना के साथ एक पीसफुल इवनिंग. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे काइंड, एंड दिल्ली कीप इट क्लीन, कीप इट ब्यूटिफुल, कीप इट पीसफुल. मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। स्मिथ ने दुबई से तेल अविव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में सहयोगी पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली स्टेशन और 12 खंबा रोड शामिल है। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेस वन अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। यह प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेशों से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कटरा बनिहाल सेक्शन पर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और वंदे भारत ने चिनाब और अंजी पुलों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण पदक जीतने पर परवीन हुड्डा, महिलाओं के डिंजी इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर नेथ्रा कुमानन और पुरुषों की मुक्केबाजी में 80 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अंकुश पंघाल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रिकर्व तीर अंदाजी टीम को भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अंकिता भाकत, कुमकुम अनिल मोहत और कीर्ति को भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। भारत ने 15 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 75 पदक जीते हैं। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूं आपके साथ, आपका अपना म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा। और दोस्तों, इस शो में हम करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो अपने दिल की बातें होती है वो मैं आपसे करता हूँ, आप उससे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पर। और आज हम क्या बातें करने वाले हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आज के ही दिन से रिलेटेड। आज 2 अक्टूबर है ना, यानी कि गांधी जयंती और शास्त्री जी का जन्मदिवस भी। और इन दोनों बड़े नेताओं से हमें यही सीखने के लिए मिला है कि हम अपने जीवन में शांति से काम लें, धैर्य से काम लें और अहिंसा का रास्ता अपनाएं। बट मैं आपको कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देने वाला और ना ही मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आपके लिए सत्य और अहिंसा की क्या परिभाषा है, बिल्कुल नहीं। हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात ये है कि लाइफ में, डेली रूटीन में कोई छोटे बड़े बैटल्स हमारे चलते रहते हैं ना। कभी घर में कोई सीरियल देखना हो, कोई मूवी देखनी हो, उसके लिए लड़ाई, कोई आपसे, आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कोई आपका रास्ता काट के चला जाए, उसके लिए अलग से लड़ाई, और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ पे। अपने पार्टनर के साथ कौन सी मूवी देखनी है, उसके लिए लड़ाई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑफिस में आपकी चेयर किसी ने ले ली तो उसके लिए लड़ाई। ये छोटे छोटे लाइफ के बैटल्स होते हैं कि एक बार तो दिल में बहुत गुस्सा आता है और फिर लगता है कि रहने दो, मुझे इस आर्ग्यूमेंट से, मुझे इस बैटल से अपनी लाइफ में शांति पसंद है। तो आज आपको मुझे ये बताना है कि ऐसे कौन से आपके लाइफ की वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटे छोटे बैटल्स हैं जिनके लिए आपने शांति चुनी है, ना कि आर्ग्यूमेंट किसी के साथ। अपनी लाइफ में आपने रहने दो जोन बना लिया है और कौन सी बैटल आपने अब लड़नी छोड़ दी है, आपको मुझे बताना है वो सब। 9868107070 पे, जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आपके मैसेजेस का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और भेजिए मुझे अपने दिल की बात कि वो छोटी बड़े बैटल्स जिनके लिए आपने दिल से बोल दिया छोड़ो, मुझे शांति चाहिए, मुझे आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं, मुझे इससे बात करनी ही नहीं, है ना। कुछ भी हो सकता है, ऑफिस, घर, कॉलेज, स्कूल, पड़ोस, कुछ भी, भेज दीजिए अपने दिल की बात 9868107070 पे। और हमेशा की तरह कहूंगा आपसे कि अपनी मस्ती में रहिए, और यही गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

ऑल राइट, यही है कि भाई जीवन में मस्ती मजाक करते रहने चाहिए और जीवन को इजीली बिताना चाहिए, क्योंकि क्या रखा है किसी से झगड़ा करके, हिंसा करके, और क्यों फालतू में बैटल्स लड़ने लाइफ के डेली वाले, है ना। वही मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइफ कैसे, वो कौन से बैटल्स हैं डेली लाइफ के जो आपने लड़ने छोड़ दिए और आपने कहा है कि नहीं यार, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में खुद से प्यार करना है और इन चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सो आई विल नॉट डू दैट। और आपने वो सीक्रेटली गांधीगिरी को अपना लिया है। ऑल राइट, और हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। बबलू कश्यप, विपिन कश्यप, जॉनी कश्यप मंगोलपुरी से लिख रहे हैं और शो सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आज आरजे अथर सईद जी को भी बर्थडे विश कर दीजिए। तो ओके, हम अथर को भी बर्थडे विश करेंगे, हमारे साथी हैं, और पूरे परिवार की तरफ से भी उनको बर्थडे विश करेंगे डेफिनेटली। और फिर हमें मैसेज भेजा है मोहल्ला हलवाइया शेरगोट बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी भी शो सुन रहे हैं। साथ ही साथ हमें एक मैसेज और आया नवाब अहमद भारती जी का, बल्ली मरन से लिख रहे हैं कि आज सुबह मेरी स्कूटी पर पीछे से किसी ने आकर गाड़ी मार दी और मुझे उस समय तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाने दो, छोड़ो, झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है। आपने बिल्कुल सही दिन चुना और बिल्कुल अपनी लाइफ में ये अपनाते होंगे आप आई थिंक, बिकॉज वो जो छोटा गुस्सा है यू नो, गाड़ी से तो एटलीस्ट बहुत प्यार होता है सबको, है ना। तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने वो एक्चुअली अपना लिया है कि अपनी लाइफ में हम बिल्कुल शांति से रहेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे, है ना। ऑल राइट, सोनी देवीगढ़ पटियाला से लिख रहे हैं और कहते हैं कि हर मैटर को मैं तो सॉरी बोलकर निपटा देता हूँ और ऐसी ही कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, है ना। बिल्कुल बहुत सही बात कही है आपने, और आपने भी अगेन अपनी लाइफ में जो है पीस को चुना है, शांति को चुना है और अपने लिए हैप्पीनेस को चुना है, ऐसा ही हम कहेंगे। ऑल राइट, एक मैसेज और आ गया हमारे पास। ये मैसेज भेजने वाले हैं किशन वंजानी, नीलम स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। लिखते हैं कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर अब ध्यान देना छोड़ दिया और किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, हर छोटी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश हमें शांति की ओर ले जाती है। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू जी। एक मैसेज और है हमारे पास, ये मैसेज हमें भेजा है सोनू ने बिजनौर से। लिखते हैं कि मुझे जब वक्त मिलता है तो रेनबो मैं ज़रूर सुनता हूँ और

का सवाल बहुत अच्छा है। मेरी सोच थोड़ी हटके है, जब भी मैं रास्ते में होता हूँ अक्सर मेरा मेरा कोई यू नो मेरी साइड से जल्दी निकल जाता है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि हाँ इसके जीवन में भी मेरे से ज़्यादा जल्दी है। मैं भी हमेशा बड़ी जल्दी में रहता हूँ, पर मेरी सोच वहीं बदल जाती है। ये भी एक तरीका है, ये भी एक नज़रिया है जीवन को देखने का कि शायद यू नो इनको ज़्यादा जल्दी है, मे बी इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमसे ज़्यादा। तो आप इंस्टेड ऑफ लड़ना या फिर यू नो एक होता है कि उस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करते, आप बोलते हो नहीं, आप खुश होते हैं कि यार कितना व्यस्त आदमी है, कितना बिजी है, इनको और भी काम करने हैं। ऑल राइट, ओके, एक मैसेज और लूंगा और फिर इसके बाद आपको एक गाना सुनाऊंगा। ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद वकार फरीदी ने, एक बार फिर से भेजा है। कहते हैं कि मैं छोटे बड़े मैटर्स में हर वक्त चुप रहता हूँ, कहता हूँ कि छोड़ो, लीव इट, शांत रहता हूँ, खामोश रहता हूँ, शांति पसंद है, पर कभी जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो चुप भी नहीं रहा जाता, फट जाता हूँ ज्वालामुखी की तरह। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू नो कभी कभी यू नो ज़रूरत पड़ती है किसी को उस लाइन जो अगर किसी ने लाइन क्रॉस कर दी, उस लाइन को क्रॉस करने पर किसी को बताना पड़ता है कि नहीं आप उस लाइन से पीछे रहिए, इससे आगे आप आएंगे तो भाई हम भी सवा से ही रहे, है ना। बट मैं उन बातों की बात कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हम खाम खा गुस्सा हो जाते हैं, उनको गुस्सा ना करके उनके साथ पीस ट्रीटी करना, ऐसा क्या करते हैं आप वो हमें बताइएगा। और भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं हमारे पास। यशवंत जी का मैसेज आ गया महाराष्ट्र से, राजकुमार जी का भी महाराष्ट्र से आया है, और रजनी शर्मा जी ने भी मैसेज भेजा है। इन सब के मैसेजेस मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, लेकिन अभी आपको सुनाऊंगा एक प्यारा सा गाना।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो पर, आप है मेरे साथ, मैं कौन, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आज निखिल वर्मा और शो का नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और अगला मैसेज हमें आया है यशवंत आठमुठे जी का, धाराशिव महाराष्ट्र से लिखते हैं और कहते हैं कि हम तो कभी किसी कारण किसी की लड़ाई में नहीं पढ़ते और ना ही लड़ाई करते हैं, अपना अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और यही जीवन का सार है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं और थैंक यू जी, आपको शो पसंद आ रहा है और कहते हैं कि हम हर रोज सिमरन करते हैं, धैर्य रखते हैं, शांति रखते हैं जो कि मन को शांत काबू में रखता है। क्रोध तो करते ही नहीं है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप तो ऑलरेडी उस जोन में हैं जहाँ पर जाने की हम आज बात कर रहे हैं। और ये मैसेज हमें भेजा है रजनी शर्मा जी ने बागपत से, कहते हैं कि मुझे जीवन में शांति पसंद है, कम बोलना भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा एक बेटा है उसका नाम अर्जुन है, 16 है, पता नहीं बहुत बोलता है, सारा दिन बोलता है, चुप ही नहीं होता है और परेशान करता रहता है मुझे, माँ नहीं समझता, सारा दिन मौज मस्ती बस यही लगा रहता है उसका। स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, कितना ही समझा लो उसको कम बोला कर पर उसको नहीं सुनना होता कुछ भी। रजनी जी, मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखिए बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, बोलेंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब मुझे नहीं पता वो किस तरह की बातें होती हैं, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे ना, लोग अपने फ़ोन में इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं और अगर वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग कि और आप एक बार वो कह रहे हैं कि आप आपको मां नहीं मानते, मे बी आपकी डांट की वजह से है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि एक बार एक फ्रेंड के तरह से आप उनसे बात करके देखिए और मे बी वो आपको फ्रेंड माने, आपसे सारी वो बातें करें जो एक्चुअल में उसको करनी चाहिए और वो बोलना ज़्यादा बोलना एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में बदल जाए, है ना। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपकी जीवन में शांति ज़रूर आएगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। ऑल राइट, एक मैसेज और लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है देहरादून से आलोक पवार और बिनी जी ने, लिखते हैं कि आज के टॉपिक के में यही कहेंगे, आज के टॉपिक के संबंधित यही है जो कि श्रीमद् भागवत गीता का सार भी है कि ना मान ना सम्मान, सुख और दुख, अचानक खुशी अचानक गम में सम रहना। हम इसी सिद्धांत पर चलते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लिहाजा हमारा किसी से विवाद नहीं होता, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।

वो सही बात है, अगर यही हम अपनी लाइफ में हर कोई अपना लेना तो फिर तो क्या ही कहने। ऑल राइट, एक मैसेज और पढ़ लेते हैं। ये मैसेज हमें विजेंद्र घाटोल जी ने कोला महाराष्ट्र से भेजा है। लिखते हैं कि मैं और मेरी बेटी दोनों के झगड़े होते रहते हैं टीवी रिमोट के लिए, लेकिन मैं शांति रखना चाहता हूँ। आई नो, तो फिर आप उनको ही रिमोट दे देते होंगे कि भाई देखो, आप ही जो है ना, आप ही पढ़ो जो पढ़ना, मतलब आप ही ये जो है क्या बोलते हैं, टीवी में जो देखना चाहते हैं वो आप ही देखो, तो इसलिए आप शांति पसंद कर लेते हैं। टीवी में बच्चे जो देखते हैं ना आजकल, वो लाउड कार्टून्स और वो म्यूजिक, वो फिर थोड़ा बस से बाहर चला जाता है। ऑल राइट, एक मैसेज और ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है अंशी ने हस्तिनापुर से। अंशी शर्मा लिखती हैं कि आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि जब बात छोटी छोटी बातों को लेकर बैटल होने पर आती है, झगड़ा हो भी जाता है, तो अगर मेरे पर भी कोई भी घर पर गुस्सा करता है तो वैसे घर के कामकाज के ऊपर ही होता है बैटल। कभी कभी मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ और वहाँ से कुछ टाइम के लिए अलग हो जाती हूँ, रूम में या छत पर चली जाती हूँ। बाद में रोकर ही मेरा मूड सही होता है हमेशा। और रोया मत कीजिए ना, ठीक है, आप बात कीजिए कि भाई मेरा अभी मन नहीं है ये काम करने का, मैं बाद में कर दूंगी, मतलब अगर आप करना चाहती हैं। और आप नहीं करना चाहती, इस बात पर झगड़ा होता है, और या फिर आपको डेली, वो मुझे नहीं पता, लेकिन रोया मत कीजिए, हमारा शो सुन लिया कीजिए, हमारा म्यूजिक सुन लिया कीजिए, हम तो है ना आपसे बात करने के लिए। ऑल राइट, ये थे अब तक के सारे मैसेजेस। अब मैं लूंगा एक म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए, एक प्यारा सा गाना सुनिए एंड एंजॉय कीजिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: बीसवें एशियाई खेलों पर इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, अपनी साथी साक्षी मंडवाल के साथ। अभी बस थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है हॉकी का मैच, ऐसा जबरदस्त, यादगार, कभी भी ना भूल पाने वाला मैच। भारतीय महिलाओं ने 1-0 से डिफेंडिंग चैंपियन चीन को परास्त किया, लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया, और साक्षी बेकरार है बताने के लिए।
3: ऑफ कोर्स इट्स बीन अ थ्रिलर नेल बाइटिंग एंड टू द मैच शुड आई से, बिकॉज़ इंडिया got the goal very early on in the first quarter itself, but after that the Indian defense stepped up and a beautiful penalty stroke defense that Savita Punia did for us early part of the game definitely went long way in helping solidify India's chances towards making sure that the defense was all round surrounded the Chinese and never let the China make an entry into the game. China got several penalty corners also, but they could not even convert one penalty corner in their favor. 5 पेनल्टी कॉर्नर्स उनको मिले फर्स्ट हाफ के अंदर ही, और फिर भी उसको भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। हमने देखा कि बाय द एंड, जो कहते हैं ना, लास्ट क्वार्टर में चाइना इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था कि दे पुट एवरीथिंग इनटू द अटैक। उन्होंने अपने गोलकीपर को भी बाहर करवा दिया एंड उनकी जगह एक प्लेयर ले आए जस्ट गो ऑल इन, लेकिन फिर भी वो वहां पर गोल स्कोर नहीं कर पाए टू लेवल द स्कोर। एज अ रिजल्ट द 44-year-old वेट, जी हाँ, 1982 में भारत को पिछली बार या आखिरी बार गोल्ड मिला था, और आज भारतीय महिलाओं ने ये ड्राउट खत्म कर दिया दोस्तों। दे हैव ब्रोकन दिस ड्राउट आफ्टर 44 इयर्स टू हेल्प इंडिया गेट दैट कोवेटेड गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स, एंड एज अनुपम जस्ट मेंशन्ड, दिस आल्सो कट्स आवर टिकेट टू द 2028 ओलंपिक्स एंड द बिग वन दैट कम्स आस फॉर अस। A lot of changes, positive changes that we see now in this team. आप ये देखिए, चाइना के पास बॉल पोजिशन भी भारत से ज्यादा ही रहा, 52% तक चाइना के पास बॉल पोजिशन रहा, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। समाओ हमने आज देखा, और एक चीज सामने जो आई अनुपम, वो ये थी कि चाइना का हमेशा से ही डिफेंस स्ट्रांग रहा है, अटैक उनका स्ट्रांग पॉइंट रहा नहीं है, लेकिन आज वो पहले से ही पहले क्वार्टर में ही बैकफुट पे आ गए थे बिकॉज भारत ने गोल दाग दिया था। तो आज उनके पास कोई चॉइस नहीं थी बल्कि अटैक करना ही करना था, और समहाउ इंडिया ने उसके बाद अपने डिफेंस को इतना प्यारा रखा कि चाइना को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो एक एक की बराबरी भी कर सके।
2: दरअसल पूरा मैच अगर आप देखिए तो आज भारत की रणनीति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल ही अलग। चीन को चौंकाने वाली रणनीति उन्होंने बनाई, और किस्मत ने साथ ये दिया कि अर्ली गोल आ गया बहुत पहले ही, और क्या जबरदस्त गोल था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल। लाल रंग सियामी ने किया था, अपना 200वां मैच खेल रही थी आज, और रिवर्स शॉट लिया था उन्होंने डी के भीतर, और उछलता हुआ शॉट, ऐसा शॉट जिसपे शायद बड़े से बड़ा गोलकीपर भी उसको शायद ही रोक पाए। वो जो बढ़त मिली उसके बाद से भारतीय टीम ने अपना गियर ही चेंज कर दिया। चाइना का डिफेंस बहुत अच्छा है, उनका गोलकीपर दुनिया के सबसे अच्छे गोलकीपर्स में है। भारत ने कहा अब हमने ये लीड ले ली, अब हम भले आप हाफ में खेलते रहें या हम पर अटैक करें, हम अपने डिफेंस को एकदम मजबूत कर लेंगे और आपको गोल नहीं करने देंगे। और एक शानदार क्षण और था जब सविता पूनिया ने पहले क्वार्टर में बिच्छू थी गोलकीपर, दूसरे क्वार्टर में गोलकीपर बदला गया, सविता पूनिया को लाया गया, और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। देखिए पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी में उसको रोक लेना, और ऐसा रोकना कि अंधा चुक्की नहीं है, वो साफ

0: आता है जैसे उसको कि ये शॉट यहीं आने वाला है, लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है, किनारे आने वाला है, इतना किस तेजी के साथ आने वाला है, गजब का डिफेंस। तो शायद भारतीय टीम उसके बाद बहुत जोश में आ गई और चीन का एंड में आपने बताया इन्होंने अटैक बहुत किया। मुश्किल होता है इस रणनीति पे खेलना कि हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, एक बार लीड ले लिए, एक गोल की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती, लेकिन हम लीड आ गई है, हम इसी को डिफेंड करेंगे और थोड़ा मोड़ा नहीं, हम 40 मिनट तक डिफेंड करेंगे। Yes. कमाल करके दिखाया आज।
1: ऑफ कोर्स इंडिया हैड देयर प्रायोरिटी स्ट्रेट टुडे, गोल हो चुका है, उसके बाद अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग रखो कि सामने वाली ऑपोजिशन को मैच के अंदर आने का मौका ही नहीं दो, एंड दे जस्ट वेंट ऑल आउट ऑन द डिफेंस एंड वर एबल टू देन कीप दैट लीड मेंटेन टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट सेकंड, एंड thereby history has been created, ladies and gentlemen, to all our lovely listeners, because the Indian women's hockey team has brought us that gold after 44 years.
0: आज का छठा स्वर्ण पदक, आज का दिन तो गजब रहा है भारतीयों के लिए पदकों के हिसाब से।
1: Yes, a quick wrap on the medal table also over here. इसके साथ ही आज अब भारत के सारे इवेंट समाप्त हो गए। भारत की पोजीशन अब पांचवें स्थान पर है, जिसमें है उनके पास 16 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 76 मेडल्स। आपको बता दें आज जो मेडल्स आए हैं, हॉकी में हमारे पास एक गोल्ड आ गया, बॉक्सिंग में हमारे पास 3 गोल्ड आए, रेसलिंग में 1 गोल्ड आया, आर्चरी में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, सेलिंग में 1 ब्रॉन्ज और सेपक तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 16 गोल्ड, प्लेसिंग इंडिया ऑन द 5th पोजीशन। दैट इज ऑल दैट वी हैड फॉर यू फॉर राइट नाउ। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अनुपम पाठक साइनिंग ऑफ, विल बी जॉइनिंग यू बैक एट द 7:30 अपडेट विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड अ रैप अप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक आकाशवाणी FM रेनबो पर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा, और आपके मैसेजेस की भरभार आ चुकी है तो मैसेजेस की तरफ भी रुख कर लिया जाए भाई। रोशन गुप्ता भेज रहे हैं हमें मैसेज, आगम कुआ पटना से लिख रहे हैं कि किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जब वो टूटती है तो बहुत दुख होता है, इसलिए उम्मीद लगा के नहीं रखना चाहिए आज के इस दौर में। मैं तो आपसे ये कहूँगा ना कि उम्मीद मत लगाइए, कोई बात नहीं, पर मूव ऑन तो कीजिए, है ना। अगर दिल दुखता है तो कोई बात नहीं, वहीं पे नहीं हमें रुक के रहना है, हमें आगे बढ़ना है जीवन में। और डॉली का मैसेज आ चुका है, डॉली कहती है कि किसी बहस में ना पढ़कर मैं दूरी मेंटेन करती हूँ, सोचती हूँ कि ये महान लोग हैं इनको महान ही रहने दो। देखो ना, मतलब क्या आपने उनको इतना बड़ा बना दिया जो लोग, एंड ये बात ना, मतलब डॉली की बात से मुझे याद आया, कई लोग ऐसा होते हैं कि आप उनसे नहीं झगड़ो ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी इरिटेटिंग मोमेंट होती है ना, उनको लगता है कि यार ये मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा है, ये मैं इतना कुछ इनको कह रहा हूँ, ये क्यों जवाब नहीं दे रहा है, और फिर वो और फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो आपको और प्रोवोक कोशिश करते हैं करने की, लेकिन फिर जब आप नहीं होते ना, ये आपकी विक्ट्री है ना। सो आज हम आपको यही सिखा रहे हैं और यही आपसे बात भी कर रहे हैं और यही आपसे भी जान रहे हैं, आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं भाई। और बबलू कश्यप मंगोलपुरी दिल्ली से लिखते हैं कि चुप रहने वालों को कुछ लोग परेशान करते हैं, बट लड़ाई झगड़ा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बी पॉजिटिव एंजॉय लाइफ। जी हाँ बिल्कुल। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से हमें मैसेज लिख रहे हैं, कहते हैं कि चुप रहो, स्वस्थ और सुखी रहो, गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और कहते हैं कोई कुछ भी बोले, हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। अरे वाह वाह वाह वाह, क्या मतलब, आज तो आपके मैसेजेस देना मेरा दिल जीत लिया है, आज तो हटके बिल्कुल एकदम टॉप वाले मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके। थैंक यू सो वेरी मच सुदर्शन, अनिता जी एंड सिमरन मुखी आपके मैसेज के लिए। और एक मैसेज और ले लेते हैं, ये मैसेज हमें भेजा है गुन्नौर से आदिक कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और लिखते हैं कि गमजदों का सहारा है FM रेनबो, तन्हाइयों का सहारा है FM रेनबो। बिल्कुल जी, कहते हैं कि ना ही मैं गुस्सा करता हूँ, ना ही किसी से लड़ता हूँ, सीधा साधा बंदा हूँ, सबसे प्यार से मिलता हूँ। बिल्कुल जी, और तभी तो आप हमसे भी मिलने आ जाते हैं इस शो में। और रामबन जम्मू से मैसेज भेज रहे हैं जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर सिंह जी, आज का मैसेज यही है कि लाइफ में जो छोटे छोटे बैटल्स होते हैं उनको आपने कैसे लड़ना छोड़ दिया है, क्या आपकी लाइफ में वो चीज़ है जिसको आपने बोला है कि नहीं, अब मैं इसके बारे में ना सोचूंगा, ना इसके बारे में लड़ूंगा, ना मैंने इस चीज़ के लिए अपने आप को परेशान करना है, बल्कि आपने शांति को अपने लिए, खुशियों को अपने लिए चुना है। जी आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हम यही सब बातें कर रहे हैं कि हमने सीक्रेटली गांधीगिरी अपनी लाइफ में कैसे अपनाई है, जहां पर हमने कहना छोड़ दिया कि रहने दो इस चीज में, इस मैटर में, या इस

इंसान के साथ झगड़ा करके मुझे दुख और पश्चाताप, जैसे कि कहा है, ऐसे ही चीजें मिलेंगी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी शांति, आपकी खुशी, तो वो क्या है वो हमें बताइए। और मैंने जैसा अभी भी कहा है कि कई बार जो चुप रहना होता है और अपने लिए खुशी चूज करना, अपने लिए शांति चूज करना होता है ना, वही आपकी जीत होती है और सामने वाले की हार। ऑल राइट, अगला मैसेज ले लेते हैं हम। जोगिंदर सिंह जी का मैसेज हमने पढ़ लिया है और अब मैसेज पढ़ते हैं हम विजेंद्र जी का। उन्होंने शो सुन रहे हैं, उन्होंने बोला थैंक यू सो वेरी मच। भैरूलाल वाक्तारिया धाकड़ उन्हें जिला मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे झगड़े होने के बाद पुनः आपसी सामंजस्य बनता है और उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल सही बात कही है और आपने, और वो बनाना भी चाहिए। और जो मैसेज हमें मैसेज भेज रहे हैं, एक मिनट दीजिए मुझे, इनका नाम संजीव कुमार जी, हाँ संजीव कुमार जी का मैसेज आया है इंद्री डिस्ट्रिक्ट करनाल से, और कहते हैं कि पहले हमारे पड़ोसी हमसे बहुत झगड़ा करते थे, हम भी पुलिस में शिकायत कर देते थे, परंतु अब अपनी सहन शक्ति बढ़ा ली है, अब शिकायत ना के बराबर है। ऑल राइट, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। और कहते हैं कि अपना नाम आराम से बताएं, मेरा नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, मेरा नाम है आरजे निखिल वर्मा, अब आपको मेरा नाम पता चल गया होगा, थैंक यू सो वेरी मच। ओके ऑल राइट, एक मैसेज हमें आया है, वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, बट मैं आपको इतना बता दूंगा कि वो हमारा मैसेज बहुत दूर से, सात समंदर पार से आया है। लिखते हैं, आई डू हियर दिस प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द डे व्हेन इन मॉर्निंग आई गो फॉर वॉक और रन। टुडेज टॉपिक टुक मी बैक टू माय टीनेज इन 90s। आई यूज्ड टू लाइक वन गर्ल, शी वाज नोइंग दैट आई गेव हर चॉकलेट, शी स्कोल्डेड मी फॉर दैट, आई जस्ट पेशेंटली लिसन्ड दैट एंड आई डिडंट से अ सिंगल वर्ड। लेटर शी स्टार्टेड लाइकिंग मी फॉर दैट रीजन ओनली एंड दैट आई डिडंट आर्ग्यू और एनीथिंग। सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस हियर बिकॉज ऑफ माय दैट पीसफुल बिहेवियर and I had some good memories of and because of that peaceful behavior I had some good memories of past. I hope some other listeners might be sharing same stories in their life. I hope you get to share this with your listeners. Thank you. Someone from okay, you don't want to share your city or maybe state, but I can share this, right? So this message has come all the way from USA. Okay, all right, but this person, he didn't even share his name. This person is actually from India, but settled in USA. So that is the message. So from your message, what I got is ki, this is a very good memory jo aapki hai, ki, you gave her gifts. There was no fight, argument or bad memories. You created a very good memory because you chose happiness and freedom and happiness and peace, I would say. And you did not do anything, kisi ko stress karna, kisi ke peeche pad jana, aur na hi, aapko response us tarah ka aaya. So, isiliye, hame apni life mein aisi cheeze chunni chahiye jo hamare liye achhe memories bane. Kai bari har cheez ko paana hi विक्ट्री नहीं होती, कभी कभी सेक्रीफाइस भी विक्ट्री होती है, और कभी कभी उस चीज़ को कहते ना लेटिंग इट गो, वो भी एक विक्ट्री होती है, उस चीज़ को बस जाने देना, लेकिन अच्छी मेमोरीज के साथ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर मैसेज, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के, एंड आई होप लोग इससे कुछ सीखेंगे। और अगला मैसेज हमें आया भुवनेश का, अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं, हाउ आर यू ऑन टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू से दैट आई वर्क इन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑन सम डेज Some customers used to come to me for help and they do not understand what I'm trying to explain to them and behave strangely, but I try to stay away from any argument and take it as a part of life. And I hope you help them finally. All right, thank you, Bhuvnesh. वही बात है कि if you keep calm, बहुत बड़े-बड़े solutions भी आपको मिल जाते हैं, but अगर आप calm, composed नहीं रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। वो चीज़ जो एस्केलेट होते होते कितनी बड़ी बन जाती है उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। नितिन ढोकणे, पूनम नितिन ढोकणे, पात्रुडा बांद्रुकता संग्राम, जिला बुलहाणा महाराष्ट्र से मैसेज भेज रहे हैं, शो सुन रहे हैं, शो इनको बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो वेरी मच। और अब वक्त हो गया है एक प्यारे से गाने का।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो पर, आप सुन रहे हैं मैसेज सलाम एक्स और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। और जो घड़ी की सुइयां हैं वो बता रही हैं कि वक्त अब बहुत कम रह गया है और ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस भी मैं पढ़ चुका हूँ। और डॉली का एक मैसेज आ रहा है, लिखती है कि आप किसी से बहस मत करो, कोई कितना ही परेशान कर रहा हो शांत रहो, उसका जवाब भगवान देंगे। और लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ है और एक साल में ही उनको ऐसा जवाब मिला कि मेरी खुशी का क्या बता। ये होता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि कई बार आपको बस चुप रहना होता है और संयम से काम लेना होता है और फिर जो कुछ होता है वो कर्मा जिसे बोलते हैं, इट हिट्स बैक। और मैं बोल रहा हूँ ना, कई लोगों को से अगर आप इग्नोर करोगे ना उनको, तो फिर वो लोगों को भी उस चीज़ से परेशानी होती कि अरे यार झगड़ा क्यों नहीं हो रहा, बट उनको क्या पता कि आप तो एकदम शांति प्रिय लोग हैं, तो फिर वो भी आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को। और एक मैसेज और आया हमें, ये कहते हैं कि झगड़े से शुरू होकर झगड़ा जब शुरू होता है तो ना सिर्फ उससे वो टाइम ख़राब होता है बल्कि आने वाले कई दिन और भी उससे इम्पैक्ट होते हैं। और फिर दिन भर दिमाग में वही टेंशन रहती है कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला, किसी कई बार आप खुद भी हर्ट हो जाते हैं, इसलिए हंस कर सॉरी बोलकर आगे निकल जाइए और आपका और अगले का दिन भी अच्छा रहेगा। दैट इज़ सो ट्रू। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, बस स्माइल कीजिए। और अगर आप फ्राउनिंग फेस एकदम गुस्से वाला फेस बनाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, स्माइल कीजिएगा तो सामने वाला इंसान भी शायद हंस जाए और आपको मौका मिल जाए, ना आपका दिन खराब होगा और ना उनका दिन खराब होगा। वक्त एक प्यारे से गाने का, आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफ़र आरजे निखिल वर्मा। और बस यही कहूँगा आपको कि ज़्यादा नहीं, मुसु मुसु हंसते रहिए।

जी हाँ, मुसु मुसु हंसते रहिए आप और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल मेरा हो गया है वक्त यहाँ से जाने का, क्योंकि देवर्षि नेक्स्ट शो लेके स्टूडियो में आ चुके हैं, तो आपको रहना है उनके साथ। और राजेश भल्ला जी ने भी मैसेज भेजा है, शो सुन रहे हैं। साथ ही साथ हमें मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह भी मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मैसेज किया है उन्होंने। और संजीव जी भी थैंक यू बोल रहे हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा है इंद्री करनाल से। और शिव नारायण नेपाल से मैसेज भेज रहे हैं, बट अभी करंटली मलेशिया से हमारा शो सुन रहे हैं एंड कह रहे हैं आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, इट्स सो ब्यूटीफुल प्रोग्राम, आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ मैं आपसे जाते जाते बस यही कहूँगा, आज शो में हमने बातें करी हैं अपनी छोटी छोटी लाइफ के बैटल्स को दूर करके अपने लिए हैप्पीनेस और पीस जो है ना उसको चुनना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड नाउ यू ऑल नो है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है और उससे हमें क्या क्या मिलता है। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन या उस चीज़ की जो परिभाषा है वो मैं आपको नहीं दूंगा, बट आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे म्यूजिक मस्ती में फिर से 8 बजे, तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ, बाय बाय, टेक केयर।

0: It's time for the Asian Games Update 2026.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: बीसवें एशियाई खेलों पर आज की अंतिम अपडेट के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। और भारत के लिहाज से देखें अगर तो आज की स्पर्धाएं समाप्त हो चुकी हैं और बहुत शानदार दिन रहा है आज, बल्कि अब तक इनके इन एशियाई खेलों में आज का सबसे बढ़िया दिन कहा जाएगा, क्योंकि 6 स्वर्ण पदक आए हैं, 2 रजत पदक आए हैं, 2 कांस्य पदक आए हैं। एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है, महिला हॉकी का स्वर्ण पदक, और इसके साथ ही कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते भारत की टीम जो है, महिलाओं की टीम, उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में सीधे प्रवेश मिल गया है। बहुत बड़ी बात है। अब 2 साल होगा भारतीय टीम को तैयारियां करने के लिए मिलेगा, नए कॉम्बिनेशन आजमाने के लिए मिलेगा, यानी पूरी तरह चाक चौबस्त होकर टीम जा सकती है। जबरदस्त मैच था, भारत ने बिल्कुल अलग रणनीति के साथ खेला। इसके पहले भारत ने गोलों की झड़ी लगा रखी थी पूल के मैचों में, लेकिन यहाँ पर आज चीन की जबरदस्त टीम सामने थी। चीन की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों ने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको उन्होंने जारी रखा। चीन को बिल्कुल उन्होंने कहना चाहिए आड़े हाथों लिया। अच्छी बात यह रही कि पहले क्वार्टर में ही भारत को मौका मिला, और क्या शानदार, शायद टूर्नामेंट का सबसे अच्छा गोल कहा जाएगा, लाल रंग सियामी ने किया। रिवर्स स्टिक से बहुत शानदार रिवर्स शॉट लगाया था उन्होंने, थोड़ा उठता हुआ बिल्कुल गोलकीपर को चकमा देता हुआ पहुंच गया था। उसके बाद से भारत ने अपनी रणनीति यह बदली कि पूरी तरह डिफेंस पे आ गए। इस एक गोल की लीड को, हॉकी में बहुत गोल होते हैं हम सब जानते हैं, उसको उन्होंने लगभग 3.5 क्वार्टर तक बनाए रखा। चीन ने बहुत आक्रमण किए, लेकिन आखिरकार वो फेल होता रहा, क्योंकि भारतीय लड़कियों का डिफेंस बहुत मजबूत था। सुशीला ने बहुत अच्छा किया, नवनीत कौर ने बहुत शानदार किया। कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि आखिरी के करीब 4 मिनट तो गोलकीपर को ही हटा दिया गया, यानी 11 के 11 खिलाड़ी आक्रमण करेंगे, चीन के लिए गोल आए, तब भी भारतीयों ने आपा नहीं खोया, सिर्फ एक मूव बनाया, उनको समय बिताना था, वो 3.5 मिनट। शानदार मैच रहा हॉकी का। स्वर्ण पदक अब देखना है, कल भारत की टीम भी पुरुषों की, वो भी स्वर्ण पदक लेकर आए तो खुशी दुगनी हो जाएगी, पदकों की जोड़ी बन जाएगी। इसके पहले आज बहुत शानदार दिन बॉक्सिंग में रहा, लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स का अपना ये पहला स्वर्ण पदक उनके लिए था, मणिपुर की हैं। शानदार तरीके से उन्होंने आज अपनी फाइट लड़ी, बाउट लड़ी, 5-0 तीनों राउंड में लगातार उन्होंने प्रभुत्व बनाए रखा। दूसरा परवीन हुडा का स्वर्ण पदक था, थोड़ा मुश्किल से आया, 3-2 का स्प्लिट डिसीजन था, लेकिन परवीन जैसी आक्रामक वो खेलती हैं बिल्कुल वैसे ही रही, ताइपे की नीन चिन येन के विरुद्ध थी, और उन्होंने भी दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तीसरी बाउट में अंकुश पंघाल थे, हरियाणा से ही आते हैं, सेना में नौकरी करते हैं। अंकुश पंघाल ने अपने ऊपर काबू रखा, अपने स्टाइल को बिल्कुल नहीं चेंज किया, वो साउथ पा हैं, उन्होंने ज़बरदस्त मुक्के बरसाए और उन्होंने भी इस बाउट को जीतकर भारत के लिए बॉक्सिंग में आज का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया 80 किलोग्राम में। आर्चरी में भारत की महिला टीम ने अंकिता भगत, कुमकुम महोद और कीर्ति शर्मा ने स्वर्ण पदक पाया, और सिल्वर आया मिश्रित में धीरज देवबुमरा और कुमकुम महोद के साथ, और इसके अलावा धीरज यशदीप भागे और नीरज चौहान की जोड़ी ने ईरान को परास्त करके पहले प्रवेश किया फाइनल में। वहां पर दक्षिण कोरिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, उससे वो परास्त हुए, लेकिन रजत पदक पाया। कुश्ती में बहुत खास दिन रहा, इसलिए दीपांशी की पहले बात कर लें, बहुत नई लड़की है, बिल्कुल उभरती हुई लड़की है, 50 किलोग्राम भार वर्ग में वो पहले अपनी बाउट जापान की सुशाई यूई से हार गई, लेकिन उसके बाद उनको रिपेचेस में मौका मिला, उन्होंने अपनी बाउट जीती, ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला किया, लेकिन कजाक की जिनेब बायानोवा से परास्त हुई। उसके बाद 65 किलोग्राम वर्ग में अकल्पनीय चीज़ करके दिखाई सुजीत कलकल ने, 2-9 से पीछे होने के बाद भी, यानी बिल्कुल हर एक को लगने लगा था ये बाउट तो गई, ये कुश्ती तो सुजीत के हाथ से गई और स्वर्ण पदक तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने क्या वापसी की है। कहते हैं ना, एकदम जब बिल्कुल आप एकदम कोने पर पहुंच गए हैं, गिरने वाले हैं, कगार पे आ गए हार के, वहां से उन्होंने वापसी की, लगातार 8 अंक कमाए और सुजीत कल

0: का ये स्वर्ण पदक बहुत बहुत दिनों तक बहुत याद रहेगा। इसके अलावा और भी भारत की ओर से बहुत अच्छी कुछ प्रदर्शन रहे हैं। सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने डिंगी में उन्होंने जो पहले कहलाती थी लेज़र रेस कहाया करती थी ICLA की स्पर्धा, उसमें उन्होंने कांस्य पदक पाया। सिपक टॉकरा में भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा दिन रहा है भारत के लिए। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कल के, कल क्रिकेट का मैच है, फाइनल मैच है पाकिस्तान के विरुद्ध। हॉकी में मलेशिया के विरुद्ध पुरुष की टीम उतरेगी। आर्चरी में कुमकुम महोद, धीरज देव बुमराह, नीरज चौहान कोशिश करेंगे स्वर्ण पदक पाने की। कुश्ती में 5 पहलवान हैं, सागर जगलान, अंतिम पंघाल, अमन, दीपक पुनिया, मनीषा। इसके अलावा गोल्फ में प्रणवी क्या करती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं भारत के लिए। R7 रग्बी 7, ताइक्वांडो और वॉलीबॉल में भी होंगे। भारतीय टीम बहुत अच्छे स्थान पर आ गई है, 5वें स्थान पर आ गई है। 16 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 35 कांस्य पदकों के साथ 76 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। तो अब आपको ये बताते हुए कि हम कल फिर हाजिर होंगे 9:30 बजे अपनी इस अपडेट की श्रृंखला के साथ। अब अनुपम पाठक यानी मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: You were listening to the Asian Games 2026 update. All right, we guys are back again on the show, Friday Fiesta. This is Dave with you guys. And yes, time right now is 19:36, 7:36. And yes, getting a lot of messages over here right now. A lot of people would like to listen to Scorpions. Yes, I do have Scorpions over here with me. And well, we got a message from Colonel Shiva from Secunderabad. A huge salute to you, sir. There we go. And he's saying he's enjoying the extended weekend and says happy holidaying. Hey, thank you very much. Same to you. Okay. And M. Rajkumar from Trichy, Tamil Nadu says heaven is indeed a place on earth. Well, I guess, yes, he's talking about the track we just played by Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. All right. So next up is going to be Scorpions, and with this track over here called Still Loving You.

0: मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन?
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Yes, there we go. You guys are back again on the show, Friday Fiesta with me, Dev. And yes, hope you guys and girls are enjoying the show over here. And already, yes, we are getting a lot of messages over here on our WhatsApp number, which is 9868107070. I repeat, 9868107070. That's our WhatsApp number. And yes, we got a nice message from Rahul Sharma from Delhi, Mukherjee Nagar. Alrighty. Says he's a perpetual listener of FM Rainbow and he's coming back from the office, turning to the radio for 7 p.m. shows. And basically, it says he's saying that this has actually become quite a habit, which is unavoidable for him. And yes, he's really appreciating the show over here and wants me to play a nice track by Tom Petty and the Heartbreakers. Let me see what I can do for you, Rahul Sharma from Mukherjee Nagar, Delhi. Up next, we have Guns N' Roses, the legends themselves. And this is a very nice, interesting track over here called Paradise City by Guns N' Roses. Here we go.

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ माचार से फोन पर बात की। उन्होंने इसराइल जा रही फ्लाइट दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन माचार की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। यह प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेशों से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कटरा बनिहाल सेक्शन पर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और वंदे भारत ने चिनाब और अंजी पुलों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपै की नियन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण पदक जीतने पर परवीन हुड्डा, महिलाओं के डिंच इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर नेत्रा कुमानन और पुरुषों की मुक्केबाजी में 80 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अंकुश पंघाल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम को भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अंकिता भाकत, कुमकुम अनिल मोहत और कीर्ति को भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। भारत ने 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदक जीते हैं। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और वह वक्त हो गया है म्यूजिक मस्ती का। नॉन स्टॉप बैक टू बैक म्यूजिकल हिट्स खास आपके लिए, और उनको पेश करने के लिए मैं हूं आपके साथ, आपका म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा।

0: रेनबो पर झिंगार म्यूजिक और मस्ती यूं ही जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार मोर म्यूजिक मोर मस्ती।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो

0: मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मस्ती में ट्विस्ट डांस कर रहे हैं हम और आप, और अब अगली बारी है थोड़ी सी कमर यार खाने की, सो हियर गोज द नेक्स्ट ट्रैक, एंजॉय।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो पर म्यूजिक मस्ती जारी है। मैं हूं आपके साथ आपका म्यूजिकल हम सफर RJ निखिल वर्मा।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं और आप सुनते रहेगा आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि मुझे लेनी होगी आपसे विदा इस वादे के साथ कि मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती, 2 बैक टू बैक म्यूजिकल हिट्स के साथ आपको छोड़कर जाऊंगा और जाऊंगा छोड़कर आपको एक वादे के साथ कि मिल रहा हूं आपसे बहुत बहुत जल्दी। कब ये आपको तब पता चलेगा जब आप सुनते रहेंगे आकाशवाणी रेनबो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो। रात के ठीक 9:40 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा, भारतीय जान नहीं लेते बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। केंद्र सरकार की खनिज नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत खनन मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। ये नीलामी केंद्र शासित प्रदेश में व्यवस्थित खनिज विकास के नए अध्याय की शुरुआत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली सहित देश भर में खादी उत्पादों पर विशेष छूट आज से शुरू हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मेट्रो के 12 स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली स्टेशन और 12 खंबा रोड शामिल हैं। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीना बोरगोहेन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदक जीते हैं। ये थे आकाशवाणी के रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

अरे प्यार होने की चिंता मत कीजिए, बस हंसिए गाइए मुस्कुराइए, क्योंकि आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी याद आती रही, तो फिर मुस्कुराहट कैसे नहीं आएगी आपके चेहरे पर। और वो खास बात इसलिए भी है आज के इस प्रोग्राम में क्योंकि आपके साथ मैं हूँ। मेरा नाम विकास कौशिक है और मैं आपको इस प्रोग्राम में बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया आपके साथ बातें भी करता हूँ, कुछ दिल को छू जाने वाली, कुछ दिल में नश्तर से चुबो देने वाली, लेकिन जो भी बातें आपके साथ करूँगा बहुत कमाल की करूँगा, है ना। और उनको सुनने के बाद आपके दिल से यही आवाज़ आएगी कि आपकी याद आती रही, है ना। तो कहीं जाने का नहीं, बस ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए विकास के साथ सुनते रहने का प्रोग्राम आपकी याद आती रही, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ही था कि प्यार हो जाने की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ हैं तो हम आपको प्यार करवा ना दें तो फिर कहिएगा, और अगर आप ऑलरेडी प्यार में हैं तो आपको प्यार की याद ना दिला दें तो कहिएगा। फिलहाल देखिए, जैसे आपको कभी प्यार हुआ वैसे ही राजा को रानी से प्यार हो गया।

राजा को रानी से प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, दोनों में तकरार हुई और उसके बाद वो अलग हो गए और फिर राजा रानी से कहता रहा आपकी याद आती रही। किस्सा गोई में ना कोई जवाब नहीं है मेरा, लेकिन बात कहूँ मैं आपसे एक शायराना से अंदाज में, बात यह है कि यूं तो एक ठिकाना मेरा भी है ऐ सनम, यूं तो एक ठिकाना मेरा भी है ऐ सनम, पर तेरे बिना मैं गुमशुदा सा महसूस करता हूँ। और सच बताऊँ बस ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी होता है जब मैं आपसे मिल नहीं पाता, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, जब हफ्तों तक मेरी आपसे बात नहीं हो पाती, जब आपसे दिल नहीं जुड़ता और जब आपसे नहीं जुड़ते मेरे दिल के तार, तो यूँ समझ लीजिए कि जब आपसे बिना मिले ही गुजर जाता है कोई शुक्रवार, तो बस दिल आपके बिना बेचैन रहता है ना। पर शुक्रिया है कि आज वो शुक्रवार है जब आपसे मुलाकात हुई है, आज वो शाम आ गई है जब आपसे बात होगी और दिल के तार आपके साथ जुड़ेंगे और मेरा और आपका दिल मिलकर बस यही कहेंगे कि आपसे जब नहीं मिलते तो आपकी याद आती रहती है। और दिल में एक सवाल भी

आता है, बड़ा बड़ा मीठा सा, बड़ा दिल को चुभ जाने वाला भी सवाल है ये, है ना। सवाल ये है कि काश कोई लड़का या काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। अरे दिल तो दिल आपके दिल के तार एकदम छिड़ गए हैं। बड़ा प्यारा गाना है, 90s की पूरी याद आ जाएगी। सुनिए मेरे साथ, विकास के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही आकाशवाणी के रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

एक बड़ी प्यारी बात मन में आई, कह दूं आपके साथ? चलिए कह देता हूं। ऐसा मत कर वैसा मत कर, उससे कहना छोड़ दिया। ऐसा मत कर वैसा मत कर, उससे कहना छोड़ दिया। पता नहीं क्या सूझी मैंने, ये दुख सहना छोड़ दिया। मेरे कहते रहने पर हम साथ रहे, फिर एक दिन मैंने कहना छोड़ दिया, उसने रहना छोड़ दिया। और अब जबकि वो साथ नहीं है और मेरे साथ में सिर्फ उसकी यादों का सवेरा है और उसकी यादों की ही ये सांझ है, तो बस ऐसे में बस मैं उससे इतना ही कहता हूँ कि आपकी याद आती रही। जी हाँ, यही प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है जिसे आप आकाशवाणी के रेनबो पर सुन रहे हैं। विकास आपके साथ है और कह रहा है आपकी याद आती रही, और उसकी यादों के जख्मों को सहलाने के लिए मरहम भी हैं, तो बस उसकी यादें ही हैं जिन्हें और हवा देते हैं। ऐसे कुछ गाने जिन्हें जब हम सुनते हैं तो दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, और दर्द जब हद से गुजर जाए तो गा लेते हैं।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

किसी के प्यार के नाम की उन चुनरियाँ जब ओढ़ ले इंसान, तो फिर बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद तमाम मुश्किलें आती हैं, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ खुशियों का ही नाम तो नहीं है ना। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा गम, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। इसलिए हर बात को मुस्कुरा कर स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम आपके तमाम मैसेजेस को दिल से एकदम नमन करके एकदम स्वीकार करते हैं। जैसे गुन्नौर से आदिल कंवर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कह रहे हैं कि आपकी याद आती रही में प्यार भरा नमस्कार हमारा हो, स्वीकार हो और शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे गाने में जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और हमें इस वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है उनको सुन के। जैसे वीरू जी मेरठ से लिख रही हैं कि वीरू बख्शी हूँ मैं और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया गाने आप बजा रहे हैं, आपको आपका कहने का लहजा भी बहुत प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू जी, आपके इस प्रेम के लिए, सम्मान के लिए धन्यवाद। जवाहर कैंप कीर्ति नगर से राजकुमार राव हमें सुन रहे हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ हमें सुन रहे हैं और बहुत ही बढ़िया शायरी लिखकर भेज रहे हैं। साथ में हमें इस वक्त कहाँ से, अमरावती महाराष्ट्र से कुष्टा बुजुर्ग, ये ग्राउंड का नाम है, वहाँ से प्रवीण हागुणे, योगिता हागुणे, कुमारी प्रियाली और पार्थ और सारा होगा हागुणे परिवार हमको सुन रहा है। बहुत धन्यवाद आपको हमें सुनने के लिए। और हमें इस वक्त सुन रहे हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और कह रहे हैं कि प्रोग्राम आपकी याद आती रही, बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर, बहुत प्रेजेंटेशन बढ़िया है और ऑल टाइम हिट सॉन्ग है 90s के। जी बिल्कुल, यही कोशिश हमारी रहती है कि आपको 90s के गानों का मैजिक वापस से रिक्रिएट किया जाए। और हमें पंकज सुन रहे हैं इस वक्त अमरावती महाराष्ट्र से, और गाना उन्हें बहुत पसंद आया, ये गाना जो हमने बजाया अमरावती, सॉरी प्यार किया तो डरना क्या है, 1998 की फिल्म। अरे वाह, आपकी तो बड़ी अच्छी जनरल नॉलेज है गानों के बारे में। और हमें कौन कौन सुन रहा है नाम आप नहीं बताएंगे, आपको बहुत सारे नाम हमने पढ़ती हैं, बहुत स्क्रीन भरी हुई है, कहाँ तक पढ़ते जाए ना प्यार। लेकिन आप बंद मत कीजिए, इस प्यार को हमारे साथ बेकरार रखिए, बरकरार रखिए। हाँ, जब बेकरार रहेंगे तभी तो बरकरार रहेंगे हमारे साथ। और हम जानते हैं कि आप और हमारा जो संबंध है बड़ा गहरा है ना, और इसकी गहराई कितनी है ये तो न तुम जानो न हम। हाँ, यही है गाना लकीर आ गए, बड़ा प्यारा गाना, बड़ी अच्छी फिल्म, बड़े मज़ेदार गाने थे इसके, उसमें से एक गाना सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी के रेनबो पर। विकास आपके साथ सुनते रहे, प्रोग्राम आपकी याद आती रही।

जॉन एलिया साहब ने कहा है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम, ये काफी है कि दुश्मन नहीं है हम, वफादारी का दावा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम और तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। पर वो क्या है ना जॉन साहब, कह देना आसान है पर अगर किसी ने सिर्फ किसी एक की तमन्ना की हो तो उस तमन्ना की तमन्ना ना करना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिल उस तमन्ना के लिए बस यही कहता है कि आपकी याद आती रही। और फिर इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता कि क्यों आती रही, बस है मोहब्बत है, गहरी है मोहब्बत तो है ना। ऐसे ही तमाम सवाल जिंदगी में चलते रहते हैं और इन तमाम सवालों के साथ हम और आप प्रेम की डगरिया पर ऐसे ही चलते रहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, ये आकाशवाणी का रेनबो, मैं हूँ आपके साथ विकास। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही और अब आपके साथ कुल जमा 6 मिनट जिंदगी के बचे हैं हमारे आपके साथ बिताने के लिए। लेकिन आपको ये बता दें कि ये इसके बाद सिर्फ आपकी और मेरे जो आज की दोस्ती है, आज की जो मुलाकात है, उसमें छोटा सा पॉज है। पॉज यानी रात 10 से 11 बजे आप वेस्टर्न म्यूज़िक का प्रोग्राम सुनेंगे, लेकिन उसके बाद 11 बजे के की जो मुलाकात है आपकी मेरी, वो फिक्स है, तय है। मैं यहीं रहूँगा, आपसे मिलने लौट कर आऊँगा और मैं मिलकर सजाएंगे रंग के महफिल। ठीक है, तब तक बस ये कहिएगा कि याद रखिएगा कि आपको मुझे याद आपको मेरी याद आ रही है और मुझे यह हक है कि मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँ, है ना। तो बस यही कहना है कि आपकी याद आती रही, मैं आपसे कहूँगा, आप मुझसे कहेंगे, और फिर जब हमारी मुलाकात होगी तो गीतों और गज़लों के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आपका इंतज़ार करेंगी। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी के रेनबो के साथ। तब तक बस एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं जब लौट कर आऊँगा, म्यूज़िकल ब्रेक है और उसके बाद एक छोटा सा पॉज है, जैसे मैंने आपको बताया 1 घंटे का, रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक आपको मुझे याद करना है और मुझे तो यह हक है कि मैं आपको याद करता रहूँ। स्टे ट्यून्ड विद आकाशवाणी रेनबो।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Hello and welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
2: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां, जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया, तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next, on to the wrestling mat. And this was a day when India had plenty at stake across 4 weight categories. And one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
3: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत, रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच की प्रकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले सुजीत साल 2026 में अब तक अजय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाईफॉल के जरिए शिकस्त दी जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया

0: मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. Three Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all three emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
0: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की, अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाऊ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया के तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38,

0: There we go. Unsure by Alan Walker and Kylie Control. Alrighty, it's from Alan Walker's album, Walker World. Alrighty, there we go. Time right now is 10:31 p.m. this Friday evening. The show is called Weekender. And yes, we're going to take a very quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: तेरी बोली
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Okie dokie, we guys are back again on the show Weekender with me, Dev. And yes, hope you guys and girls are enjoying the tracks over here that we guys are playing for you tonight. And next up is going to be Marshmello and Thomas Rhett with this track called Where We Go.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। लीजिए आप सुनिए रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर माल तैयार तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रेंज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। यह प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण पदक जीतने पर परवीन हुडा, महिलाओं के डिंगी इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर

मल्होत्रा, कुमानन और पुरुषों की मुक्केबाजी में 80 किलोग्राम वर्ग की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अंकुश पंघाल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम को भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अंकिता भाकत, कुमकुम, अनिल मोहद और कीर्ति को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा है। ये थे आकाशवाणी के रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए AIR आकाशवाणी रेनबो के साथ।

क्या कमाल की बात लिखकर गए हैं रियाज खैराबादी। कहते हैं कि कौन है वो दुनिया में जिसे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। और आखिर में कहते हैं कि कुछ और ही होती हैं बिगड़ने की अदाएं, बनने में सवरने में ये आलम नहीं होता। और बीच में एक बहुत ही बेहतरीन बात कि क्या सुरमा भरी आंखों से आंसू नहीं गिरते, क्या मेहंदी लगे हाथों में मातम नहीं होता। कुछ भी हो रियाज, आंखों में आंसू नहीं आते अब, मुझे तो किसी बात का गम नहीं होता। जिंदगी में ऐसे ही बेफिक्री से रहना चाहिए, क्योंकि सच बात यही है कि ऐसा कोई घर नहीं जिसको गम नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां सिर्फ खुशी हो मातम नहीं, है ना। इसलिए गम, खुशी, तकलीफ, दुख, दर्द और हंसी खुशी भी, ये सब जिंदगी के शामिल किस्से हैं और इनके बिना जिंदगी का कोई रंग भी नहीं है, है ना। इसलिए हर रंग की बात होगी, हर रंग के बारे में आज की ये महफिल सजेगी जिसका नाम है रंगे महफिल। जी हाँ, यही रंगे महफिल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ विकास, और इस रंगे महफिल में जैसे मैंने कहा कि हर रंग की बात होगी, चाहे दुख भी हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, सब की बातें होंगी, है ना। और ऐसे ही एक रंग है गिला रखना भी, जिसके बारे में कहा यह है कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने आईना रखना, क्योंकि हम भी मुकम्मल नहीं होते हैं, दुनिया में कुछ मुकम्मल नहीं होता है, ना परिस्थितियाँ, ना हालात, ना कोई इंसान, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है तो कुछ ना कुछ बुरा भी है, और हम भी तो ऐसे ही होते हैं, है ना। यही कहने हैं सुमन रॉय, सुनिए।

निधा साहब की लाइनें जो हैं जिंदगी की बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि लर्निंग है, सीख है कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना है ना। अगर हम सब इस बात को मान लें, समझ लें, तो फिर मुझे लगता है कि एक दूसरे से तकलीफें, दुख, परेशानियां, इवन अपेक्षाएं भी थोड़ी कम हो जाएंगी। एक बात आपसे कहूँ, वो रूठ कर बोली कि तुम्हें तो सब शिकायतें मुझी से हैं। वो रूठ कर बोली कि तुम्हें तो सब शिकायतें मुझी से हैं। मैंने भी हंस कर कहा, अरे वो इसलिए कि

मुझे सब उम्मीदें भी तो तुम ही से हैं। और ये किस्सा जो है वो मुझे लगता है कि मेरा और आपका भी किस्सा है। अच्छे गीत और गज़ल सुनने की उम्मीद आप मुझसे रखते हैं, तो शिकायतें ना रहें आपको, इसलिए मैं सजाने के लिए आता हूँ यहाँ ऐसे ही बेहतरीन सी रंग महफिल। तो यहाँ गज़लें भी होंगी ऐसे जैसे मैंने अभी आपको दो गज़लें सुनाई, और कुछ पसंदीदा गीत भी होंगे, और साथ में शायरी के कुछ अलग अंदाज भी होंगे। तो बस ऐसे ही जिस तरह से आप हमारे साथ बरकरार हैं, बने रहिएगा, बरकरार रहिए, हम आपको बेकरार करते रहेंगे एक के बाद एक बेहतरीन गज़लों के साथ। जगजीत जी लौट कर आए और कह रहे हैं कि झुकी झुकी सी नज़र आगे सुन लीजिए बस।

0: हेलो भाई, कल क्यों, हम तो आपसे अभी मिलेंगे, यहीं मिलेंगे आकाशवाणी के रेनबो पर। बस एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी का आपका पसंदीदा प्रोग्राम रंगे महफिल। विकास है आपके साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
1: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी तकलीफ है। मॉडर्न ज़माने का ये सबसे बड़ा दर्द है कि हम सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त हमारे होते हैं, लेकिन वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम अकेलेपन के भी शिकार हो जाते हैं, है ना। दुनिया की भीड़ में हम कहीं खो से जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश तो हमें फिर भी करनी चाहिए कि हमें अपने आप को लोगों से जोड़ कर रखना चाहिए, और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, आभासी दुनिया से परे असलियत के मुकाम पर भी हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होने चाहिए जिन्हें हम चाहें, या अगर हम उनसे ना भी बहुत ज़्यादा रابطہ रख पाएँ तब भी वो हमारी एक पुकार पर, या मन से भी अगर हम उन्हें कभी याद कर लें तो इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, या ज़रूरत ना भी पड़ने पर एक दूसरे के साथ

पा सकें। फिर देखिए, जिंदगी आपको लगेगा कि खूबसूरत है और बनी रह सकती है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, एक ईमानदार कोशिश। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ हर वक्त खड़ा हो, आपकी हर ज़रूरत पर खड़ा हो, तो क्या आप किसी के लिए ऐसे हैं कि अगर वो चाहे या उसको अगर ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हों, है ना? एक ईमानदार कोशिश आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, और इस दुनिया को थोड़ा सा बदलने की कोशिश मिलकर करते हैं। फिर देखिए, सब अच्छा अच्छा होगा, है ना? हाथ में लेकर हाथ आगे बढ़ेंगे। शाहिद अख्तर कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सुनिए।

और इस गज़ल में कुछ जोड़ना चाहूँ तो दिल से ख्याल एक बेहतरीन सा कुछ यूँ निकला है कि मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता मेरा काम यही है, मेरा छोड़ो मैं नहीं थकता मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है, और मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर इससे भी आगे जा सकता हूँ मरना क्या होता है।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: करेक्ट, आकाशवाणी का रेनबो आप सुन रहे हैं और रात के 11:55 तकरीबन होने वाले हैं और आपसे मुलाकात का अब जो वक्त है मुट्ठी में रेत की तरह हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन हम आपसे जाते जाते यही कहेंगे कि मत रख हमसे वफा की उम्मीद है सनम, हमने हरदम बेवफाई पाई है। और मत ढूंढ हमारे जिस्म पे जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे ही खाई है। और अच्छी बात यह है कि आज जो आपसे मुलाकात हुई वो हमारे लिए एक मरहम बनकर आई और अब थोड़ा सा सब्र है, थोड़ी हिम्मत मिली है दिल को और हिम्मत मिली है जीने की, हर दर्द को पीने की, ताकि अगली बार हम फिर आपसे मिलें तो बैठें थोड़ा इत्मीनान से और सुनाएं अब कुछ अपनी। और वैसे मुझे लगता है कि जब हम अपनी सुनाएंगे और आप कुछ अपनी गाएंगे तो जब कोई आपको हमारे बारे में पूछेगा तो आप भी कुछ अच्छा ही कहेंगे, और आपके बारे में तो जब कोई पूछता है तो मेरा दिल बस यही कहेगा, कहता रहा है कि यूँ है सब कुछ मेरे पास, बस दवाए दिल नहीं, दूर है मुझसे वो पर मैं उससे खफा नहीं। मालूम है अब भी मोहब्बत करता है वो मुझसे, वो थोड़ा सा ज़िद्दी है पर बेवफा नहीं। बेवफा मत बनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? आप अपना अपना ख्याल रखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरा भी ख्याल रखा है। इसलिए अहद वफा आहिस्ता आहिस्ता निभाते हैं और एक दूसरे के दिल में जगह बनाते हुए आपसे बस कहते हैं टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, लव यू ऑल।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रंगे महफिल। रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी से सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से तैयार माल एवं विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। कल महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज एक अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। यह प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। DRI ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोर गोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा है। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम जीरो आवर शो। अब मुख्य समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। कल महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नारजन रिज के लिए फेज एक अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। यह प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। DRI ने लगभग 12,64,00,000 रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1,09,00,000 रुपए कीमत के 1,168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते और एशियाई खेलों में भारत स्वर्ण रहित कुल 16 स्वर्ण रहित सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा है। समाचार समाप्त हुए।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। We'll be right back.

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहानी रात। इस समय रात्रि के ठीक 2 बजे हैं। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी से सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। कल महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज 1 अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। यह प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। DRI ने लगभग 12,64,00,000 रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1,09,00,000 रुपए कीमत के 1,168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अब आइए सुनते हैं सॉफ्ट मेलोडियस सॉन्ग से भरपूर प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सी तेरी बोली,
1: हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी को की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। कल महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत नॉर्दर्न रिज के लिए फेज वन अधिसूचना को स्वीकृति दे दी है। ये प्राकृतिक विरासत और हरित क्षेत्र को संरक्षित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। DRI ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजित कलकल, मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीन बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रही हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अधिकारी फ्लाई दुबई उड़ान की घटना से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले इस घटना को बहुत आसान न समझा जाए, ना ही कोई अंदाजा लगाया जाए या जल्दबाजी में कोई नतीजा निकाला जाए।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। DRI ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। वे कल भी मिले थे और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में कल शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से ज्यादा स्कूलों को बाधित कर दिया और इस दौरान उनकी दंगारोधी पुलिस से झड़प भी हुई। और खेल जगत की बात करें तो एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजित कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाई और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना।

0: चार बजे से पांच बजे तक।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम चार बजे से पांच बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अधिकारी फ्लाई दुबई उड़ान की घटना से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले इस घटना को बहुत आसान न समझा जाए, ना ही कोई अंदाजा लगाया जाए या जल्दबाजी में कोई नतीजा निकाला जाए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। डीआरआई ने लगभग 12 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का 8 किलोग्राम से ज्यादा 24 कैरेट विदेशी सोना और लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए कीमत के 1168 कैरेट से ज्यादा हीरे जब्त किए हैं। पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के नेताओं के साथ बीच आज फिर बातचीत होगी। वे कल भी मिले थे और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में कल शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से ज्यादा स्कूलों को बाधित किया और इस दौरान उनकी दंगारोधी पुलिस से झड़प भी हुई। और खेल जगत की बात करें तो एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजित कलकल, मुक्केबाज

परवीन हुड्डा, लवलीना बोरगोहाई और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।